हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: फॉरन एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिरी जाने वाला।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: माँ कल क्या खाएंगे?
1: तो भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे। खाओ।
2: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: अगली बार फर्स्ट आना, ठीक है?
1: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण, मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
2: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा श्याम बता हम कहां जाएं।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
6: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा।
7: और क्या, हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी, अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
6: अच्छा
7: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
6: अरे वाह,
7: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
6: शुक्र है डबल इंजन सरकार है।
5: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
8: सुप्रभात, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड में, आप कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुनकर बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ है आप, और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे एफएम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
9: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
8: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
9: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में, हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें, और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
8: बिल्कुल, एग्जैक्टली।
9: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उन पे कभी अवेयर नहीं होते, उन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा, और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
8: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
9: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
8: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
9: टाइम तो होना ही चाहिए।
8: बिल्कुल बिल्कुल।
9: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें। उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
8: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
9: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
8: ठीक है,
9: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है। हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
8: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करूं अपनी वुमेन्स की, अपनी उन घर की महिलाओं की जो सुबह कामकाज में लग जाती हैं, उठते ही अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाती हैं और पूरा दिन बहुत बिजी रहती हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगी? अगर वो उठ रही हैं तो कैसे दिन की शुरुआत एक हेल्दी करें?
9: हाँ, अब जैसे उनका स्कूल बच्चों को भेजने का शेड्यूल होता है
8: जी,
9: तो वो सुबह के टाइम तो थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड्स को भेजने की, ऑफिस भेजने की ड्यूटी हो जाती है।
8: हाँ जी, हाँ जी।
9: तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो 15 मिनट्स प्राणायाम करें सुबह मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर पीकर, तो उनके लिए सफिशियंट रहेगा। उसके बाद वो 40 मिनट्स का अपना वर्कआउट जरूर करें, जैसे फैमिली से फ्री हो गए थोड़ा सा और अपना ऑफिस हस्बैंड चले गए, तो आपका 10 बजे के बाद आपका टाइम फ्री हो जाता है थोड़ी देर के लिए। आपको 40 मिनट जरूर निकालने ही चाहिए अपनी एक्सरसाइज के लिए।
8: क्या बात है। तो लेडीज, अब जो है आपको गाने सुनने के साथ साथ खुद को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आपको रुचि मैम को फॉलो भी करना पड़ेगा ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके, क्योंकि हर चीज, हाँ ये चीज मुझे इसलिए भी याद आ गई क्योंकि ना हमारी एक हैबिट बन गई रुचि मैम कि हम हर चीज को इंटरनेट पे सर्च करते हैं। हमें लगता है यूट्यूब पे इसका कंटेंट होगा, गूगल पे हमें ये मिल जाएगा, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं मिल तो जाता है, बट जो सही डायरेक्शन है, सही फॉर्मेट है, वो नहीं मिल पाता है।
9: सही,
8: एब्सोल्युटली, जब तक हमें सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, हम तो कुछ भी करेंगे और उसके नेगेटिव असर भी होते हैं शायद।
9: सही बात है। अगर आप अंडर गाइडेंस कोई एक्सरसाइज करोगे तो भाई आपको एक देखने वाला, सुपरवाइज करने वाला है, तो आप अच्छे से कर पाओगे।
8: राइट।
9: इन केस आपने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली देखकर, तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है।
8: 100% बिल्कुल। तो इसीलिए
9: आप देखिए, किसी के बैक एक है और उसने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली, तो उसके बैक एक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
8: अच्छा मैम, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। योगा के बारे में हम ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं और ये टॉपिक ऐसा है जिसपे हम शायद जितनी बातें करें वो कम होंगी, करेक्ट? बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, योगा जब हम करते हैं तो इससे कौन कौन सी चीजें जो हमें लगता है कि रिलीव हो सकता है, उसमें हमें आराम मिल सकता है, कुछ चीजें हमारी छूमंतर भी हो सकती हैं?
9: देखिए, जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीजेस हो या हमें बॉडी के बॉडी एक्स होते हैं, बॉडी लेडीज की क्या आदत होती है, जरा सा हमें बैक पेन हुआ या शोल्डर पेन हुआ या नेक पेन हुआ तो फटाफट पेन किलर लिया
8: और बस हमारा
9: हो गया, नेक्स्ट डे उनको वही प्रॉब्लम दोबारा
8: रिपीट होने लगती है। बिल्कुल।
9: अब मेरे यहाँ जितने भी योगा स्टूडियो में लोग आते हैं, कोई भी अब एंटीबायोटिक नहीं लेता, सब लोग पेन फ्री हो गए हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ मेरा जोर रहता है और मैं सभी को इस चीज के लिए मोटिवेट भी करती हूँ, क्योंकि अब किसी को सियाटिका पेन और बैक पेन वगैरह सब सबके रिमूव हो गए हैं।
8: That's very nice. अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है और कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेडिसिन ले लेके परेशान हो रहे हैं और अंदर जाके वो प्रॉब्लम भी कर रही है।
9: और फ्रोजन शोल्डर और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स, तो मैंने फ्रोजन शोल्डर, सियाटिका, स्लिप डिस्क, ये प्रॉब्लम्स तो मैंने सभी लोगों की हील कर दी है।
8: वाह, लवली मैम, बहुत ही बढ़िया, ऐसे लोगों के लिए सल्यूट जाता है, प्लीज मैम।
9: बाकी जैसे हम लोग, मैंने थायराइड के भी 2-3 पेशेंट्स को ठीक किया है।
8: वाह।
9: तो उनका थायराइड बहुत ज्यादा था, तो अब उनका जब वो नॉर्मल, मैं उनसे कहती रहती हूँ, उन्होंने मेडिसिन नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी जब वो मेरे पास आए थे।
8: हाँ जी, हाँ जी।
9: तो मैंने उन्हें मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं बोला था, साथ में उनकी मेडिसिन भी चल रही थी, मैंने उनको डाइट गाइडेंस दी, मैं सबको पर्सनलाइज्ड डाइट गाइडेंस देती हूँ, तो हाँ, तो डाइट गाइडेंस दी, फिर उसके बाद मैंने उनको योगा कराया, तो उससे उनका हील हो गया। काफी चीजें हम हीलिंग भी साथ में कराते हैं, काफी चीजें, खाली एक योगा ही नहीं, काफी चीजें कराते हैं, तो उससे वो लोग हील हो जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं।
8: भाई मैं तो मैम की बातों में खो गया हूँ भाई, मुझे लग रहा है मुझे कोई जगाओ, मेरे को उठाओ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी प्यार से एक्सप्लेन कर रही है ना, आपको सुनने में जितना मजा आ रहा है, मेरे को तो देखने में और उनकी बातें सुनने में उतना ही मजा आ रहा है। एक तो नाम आनंद, ऊपर से बातें आनंदित वाली हो रही है, और जब बात हेल्थ की होती है तो डबल आनंद आता है, क्योंकि हमें, हम कुछ भी करें बट अपनी हेल्थ के लिए ना हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए जब भी आपको टाइम मिले। अच्छा मैम, टाइम से मुझे याद आया एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना रैंडम आते हैं, सॉरी, वो ऑन द स्पॉट चलता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं पूछ रहा था, क्या योगा करने का सिर्फ मॉर्निंग ही है या फिर हम शाम को भी कर सकते?
9: नहीं, हम इवनिंग में भी कर सकते हैं।
8: ओके।
9: हाँ, उसके पहले सिर्फ हमें 2.5 आवर का थोड़ा सा बीच में फूड अवॉइड करके 2.5 आवर का ब्रेक लेना होगा।
8: ब्रेक लेना होगा। हाँ, उसके बाद हम
9: कर सकते हैं।
8: ऑल राइट, मतलब फिर कोई इशू नहीं है।
9: हाँ जी, हाँ जी,
8: परफेक्ट।
9: इवनिंग बैचेस भी चलते हैं, तो सब लोग 2.5 आवर पहले ही लंच कर लेते हैं, उसके बाद मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं।
8: That's very nice. ऑनलाइन
9: और ऑफलाइन दोनों ही सेशन।
8: अब चलिए मैम की ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो कैसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है मुरादाबाद की लेडीज को, और क्या कुछ स्पेशल होता है उनके इस सेशन के अंदर, कितने क्लासेस वो देते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो जो प्रोवाइड कराती हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाह रही है, चाह सिर्फ मेल का है या फीमेल का, ये भी हम जानेंगे। डोंट वरी, आप बने रहो और सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6। योगा एक्सपर्ट रुचि मदान जी मेरे साथ हैं, मेरा नाम आनंद है, और आपको आनंदित करने के लिए, आपकी हेल्थ पर और ढेर सारी बातचीत करने के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ एक फैंटास्टिक मैम को, जिनका नाम रुचि मदान है। सो ग्लैड यार, क्योंकि उनसे मैं बात करता रहता हूँ, उनका मैं जब भी स्टेटस देखता हूँ मुझे भी एक मोटिवेशन आता है, बट हाँ वो बात अलग है, मैं थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूँ, बट अब नहीं भूलूंगा क्योंकि अब मैम मेरे को मंत्र सिखा के जाने वाले हैं यहाँ पे लाइव। अच्छा मैम, ओम चेंडिंग की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वंस अगेन वेलकम बैक, और ओम चेंडिंग की अगर बात करें तो ओम चेंडिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं?
9: देखिए ओम चैंटिंग में रोज अपने स्टूडियो जब हमारे साथ हाँ, योग कराते हैं हाँ, हाँ, हाँ, तो हर बैच में ओम चैंटिंग अलग से होता है
8: ओके.
9: क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल ओमकार मंत्र है जो मतलब हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से ही रिलेटेड है
8: ओके.
9: तो ओम का जाप करने से हमारी 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती
8: है. एक बार रिपीट कर देंगे मैं भूल जाऊंगा दोबारा बता दो आप.
9: 72,72,210
8: नाड़ियाँ
9: एक्टिवेट हो जाती हैं ओम का उच्चारण.
8: अरे वाह कितनी देर तक कर सकते हैं ओम चैंटिंग में.
9: ओम चैंटिंग आप जैसे हम लोग तो 3 times कराते हैं 3, 5, 7 इस तरीके से
8: मतलब odd, अलग अलग कैटेगरी
9: odd figures में ओम चैंटिंग कर सकते हैं.
8: ऑल राइट ठीक है. तो
9: इसको करने का भी तरीका होता है जो हम मतलब मेथड से कराते हैं. ओम चैंटिंग से हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेशन हो जाती है
8: ठीक है.
9: तो अभी क्या कहते हैं हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कराते हैं और इससे ओम चैंटिंग से रिलेटेड हम लोग अपना प्रज्ञा योग भी कराते हैं. तो प्रज्ञा योग इतना पावरफुल है जो कि ओम से ही कनेक्टेड है.
8: ऑल राइट
9: तो प्रज्ञा योग में हम क्या करते हैं उससे हमारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल है वो और हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है उससे हमारा कंसंट्रेशन मेंटल पावर इम्प्रूव होती है प्रज्ञा योग से जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे हमेशा सनातन धर्म में ये माना जाता है कि हमेशा ओम की वाइब्रेशंस होती रहती है। तो उसकी वाइब्रेशंस को प्रज्ञा योग में हम अपने भीतर लेते हैं
8: ओके.
9: तो उसके करने के बाद जब भी वो सब लोग करते हैं उसके बाद सब लोग एक तो उससे बॉडी की टोनिंग तो होती ही है जो प्रज्ञा योग हम करते हैं और उसके साथ हमारी मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और सब लोग इतने हैप्पी हो जाते हैं उसको करने के बाद बहुत सब लोग रिलैक्स और काम फील करते हैं.
8: दैट्स वेरी नाइस. तो मुझे लग रहा है रुचि मैम से एक बार ओम चैंटिंग करा लें क्या. क्या हम अभी लाइव चैंटिंग कर सकते हैं ओम की पॉसिबिलिटी है.
9: कर सकते
8: ठीक है मैं ट्राई करता हूँ. मैं थोड़ी देर के बाद आंखें खोल लूंगा. वेल आंखें मीच के ओम चैंटिंग करते हैं आंखें खोल के पहले ये बताओ.
9: देखिए जब हम प्रेयर करते हैं स्टार्टिंग में
8: ठीक है
9: हमारा सेशन प्रेयर से स्टार्ट होता है.
8: हाँ जी.
9: तो हम जब प्रेयर करते हैं तो हम आईज क्लोज ही रखते हैं
8: ठीक है.
9: आईज नहीं खोल.
8: कुछ लोग कहते हैं जब हम आईज क्लोज करते हैं या जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो बड़ी नेगेटिविटी मन में आने लगती है हमारा मन बहुत भटकता है.
9: एक्चुअली जिनको थोड़ा सा मेंटली जो लोग डिस्टर्ब होते हैं जिनको थोड़ा डिप्रेशन का इश्यू होता है तो वो लोग आईज क्लोज करके नहीं कर पाते. तो उनको मैं अलाउ कर देती हूँ कि आप आईज खोल के ही कर लो क्योंकि उनको हेडेक या ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती है.
8: राइट राइट.
9: लेकिन एक मेरे पास डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं तो उनकी वो अब काफी इम्प्रूव्ड हैं और उनको अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती.
8: अरे वाह ब्यूटीफुल. तो हम भी ट्राई करके देखें मैम एक छोटा सा. कितनी देर तक करना होगा.
9: आज तो हम शॉर्ट करेंगे ना.
8: ठीक है
9: तो
8: ठीक है रुचि मैम मुझे सिखाने वाली है ओम चैंटिंग. आई एक्सक्लूसिवली लाइव रेडियो पे पहली बार आप ओम चैंटिंग सुनोगे. अनबिलीवेबल यार मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है. कैसे करेंगे हम कैसे शुरू करना है आप बताइए. और दोस्तों आप भी हमारे साथ ट्राई करिएगा. जो भी लोग सुन रहे हैं प्लीज ट्राई करिए आपको बहुत आनंद आएगा मैं सच बता रहा हूँ एंड आपको बहुत मजा आएगा. तो मैम शुरू करें. ठीक है सबसे पहले क्या करना होगा आंखें बंद कर दीजिए.
9: सबसे पहले हम लोग आज तो हम लोग चेयर पर बैठे हैं.
8: बिल्कुल.
9: लेकिन जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं.
8: अच्छा अलाउ है ये भी.
9: हाँ जी हाँ.
8: ओके ठीक है
9: चेयर पे बैठ के कर सकते हैं. लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं वो अपने पृथ्वी तत्व से जुड़े और जमीन पर बैठ कर ही करें.
8: ठीक है ठीक है.
9: तो सबसे पहले हम अपनी कमर गर्दन और कंधे सीधे करके बैठ जाते हैं. स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं.
8: ओके.
9: अपनी आईज को क्लोज करते हैं.
8: ठीक है.
9: और सबसे पहले हम 5 breaths लेते हैं.
8: ओके.
9: अपने आप को थोड़ा सा ऊर्जान्वित करने के लिए
8: 5 breaths
9: लेते हैं. लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल.
8: ओके.
9: लॉन्ग एंड डीप इनहेल स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल. लॉन्ग एंड डीप इनहेल स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल. अपने लंग्स में अपने डायफ्राम में अच्छे से प्राण ऊर्जा को भरेंगे और एक्सहेलेशन कर देंगे. हर इनहेलेशन के साथ एक पॉजिटिविटी हमारे भीतर आएगी और हर एक्सहेलेशन के साथ सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी. 5 times लॉन्ग एंड डीप इनहेल करने के बाद हम अपने ध्यान को आईज क्लोज ही रखेंगे. हम अपने ध्यान को अपने आईब्रोज के सिर में आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे जहां पर हम अपना तिलक लगाते हैं वहां पे अपने ध्यान को लेकर 5 times अपने मन को शांत करते हुए आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे. लंबी गहरी श्वास लें छोड़ें. श्वास ले छोड़े, श्वास ले छोड़े। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास ले छोड़े, श्वास ले छोड़े। अपने मन को शांत करेंगे, माथे को रिलैक्स करेंगे, खुद को योग के लिए तैयार करेंगे, अपनी माइंड, अपनी बॉडी और सोल को योग के लिए प्रिपेयर करेंगे। माथे पर ध्यान देते हुए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए ओमकार का जाप करेंगे। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओमकार शब्द, ओम जो शब्द है वो हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। तो इसको उच्चारण करने का सही तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। आ का उच्चारण थोड़ा कम देर के लिए, ओ का उच्चारण उससे थोड़ा ज्यादा, और माँ का उच्चारण थोड़ा डीप करते हैं। सबसे ज्यादा लॉन्ग हम माँ का उच्चारण करते हैं, जिससे हमारे गर्दन से लेके पूरे ऊपर सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर एक चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, वहां तक वाइब्रेशंस आती हैं। तो स्टार्ट करेंगे, पहले लॉन्ग एंड डीप इनहेल।

0: इसके बाद हम गायत्री मंत्र का जाप करवाते हैं 3 बार और इसके बाद हम लोग पामिंग करते हैं, अपने दोनों हाथों को रब करते हैं हमारे दोनों हाथों में, हमारी पूरी बॉडी की तंत्रिकाओं का जाल होता है उसको पामिंग करके अपने सबसे पहले आईज पर, अपने चेहरे पर, माथे पर और कानों पर लगाते हैं, इसको स्पर्श कराते हैं और जो भी पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है वो अपनी बॉडी को प्रदान करते हैं। धीरे अपनी आंखें हाथों में ही खोलते हैं। इसको करने के बाद हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड और काम हो जाती है, एक बॉडी में एनर्जी आ जाती है और हम अपने आगे का योग और एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं।
1: मेरे को तो इतना मजा आया गाइस, लिटरली मतलब नो वर्ड्स, दिस इज अमेजिंग। मैं इतना पॉजिटिव और मैं थोड़ी देर के लिए तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया था मैम, अनबिलीवेबल यार। गाइस आपने रेडियो पे पहली बार कुछ इंटरेस्टिंग सुना है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज मतलब अनबिलीवेबल, बहुत ही अल्टीमेट था ये। रुचि मैम ये क्या करा दिया आपने, मेरे को लग रहा है मुझे लग रहा था मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ, बट इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मकता और जो एनर्जी थी ना बहुत ही अलग थी। मतलब इतना डीपली कैसे आप लोग चले जाते हो?
0: अभी तो ये स्टार्टिंग है ओम चैंट, इसके बाद हम जब गायत्री मंत्र कराते हैं और मेडिटेशन कराते हैं तो सब लोग इतना अच्छा फील करते हैं और सब लोग, जो लोग रिलैक्स इतने हो जाते हैं, जो लोग रात को जिनकी नींद पूरी नहीं होती और जो लोग सो नहीं पाते वो लोग सो भी जाते हैं योग निद्रा में और मेडिटेशन में।
1: वाओ मैम मुझे भी क्लासेस चाहिए। आप मेल्स को नहीं देते ना, प्रॉब्लम ये है शायद।
0: नहीं हाँ। आप मेल्स का ग्रुप बना लीजिए।
1: पक्का
0: पक्का।
1: चलो गाइस जो जो मैम से ये क्लासेस लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर देना या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, डोंट फॉरगेट वहाँ भी फॉलो करिएगा, वहाँ पर भी आपको मैं मिल जाऊंगा। कुछ भी क्वेरीज है मेरे साथ, जितने भी लोग योगा करना चाहते हैं मैम के साथ मिलके सीखना चाहते हैं, सोचो मेरे को 2 मिनट के अंदर इतना आनंद आ गया, जब हम प्रैक्टिकली मैम से सीखेंगे तो कितना मजा आएगा, सच में बता रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप कर देना। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
0: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है
1: प्लीज
0: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
1: वायु मुद्रा,
0: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
1: वाओ क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
0: देखिए स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
1: ओके
0: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
1: जी,
0: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
1: वाओ दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
0: मेडिटेशन तो है ही भाई आपको स्ट्रेस से दूर करने
1: के। कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं है स्थिरता के साथ।
0: देखिए मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
1: ओके,
0: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
1: ओके,
0: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं।
1: क्या बात,
0: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
1: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम, योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
1: क्या बात है,
0: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ ये देखा हुआ है, सभी के प्रति मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशल कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे अच्छे होने लगते।
1: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना इट्स नॉट इजी, है ना। हर किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है। आज आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
0: देखिए मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
1: अरे वाह, क्या नाम है सर?
0: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक हैं वो।
1: अरे वाह,
0: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
1: लवली।
0: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कम्प्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
1: नवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
0: सुबह योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा मतलब
1: कंपनी देती है, सपोर्ट करते हैं। बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं?
0: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
1: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम।
0: हाँ जी,
1: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू गाइस, मुरादाबाद 89.4।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
6: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।
7: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
6: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
7: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
6: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज़ महा

गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी, इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

yes, yes. Say it again. Yeah.

वेलकम बैक है, सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग है जी। अच्छा सा गाना आपने सुन लिया, कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ। तो जीरो को हटाना है, हीरो को साइड में रखना है। वैसे जीरो की जो वैल्यू होती है ना, बहुत पावरफुल होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, हाय, मेरा नाम आनंद है। ट्यून इन कर लिया है आपने आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। आज खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, आज मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, आज 1 जून की तारीख है। 5 महीने कैसे बीत गए हैं 2026 के, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला है। और आज 6वां महीना शुरू हो गया है जून का। ओ माय गॉड, मतलब जो गर्मियां हैं अब और ज्यादा पीक पर रहने वाली। तो ऐसे में आपने जरा अपना ख्याल अच्छे से रखना है, पानी को पीते रहना है। और आज की मंडे की सुबह, एक नया हफ्ता, एक नई तारीख, एक नया दिन, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रांडिंग मॉर्निंग। ये जो ब्रांड न्यू मॉर्निंग है ना, इसकी बाई भी अलग है। तो एक अच्छी थॉट के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत ये दिन है, बहुत ही खूबसूरत ये वीक है, और बहुत ही खूबसूरत ये तारीख है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे मैं आज की सुबह कि देखिए, जिंदगी में ना जब हम कुछ बड़ा शुरू करना चाहते हैं तो हमें एक बेसिकली ना हमें इसको एक बहाना चाहिए होता है। जैसे कोई रेजोल्यूशन लेना है तो नया साल पहली तारीख है ना, कुछ अच्छा करना है, कल करेंगे, वो नहीं करना है यार। कल कुछ नहीं होता है, आज से आपने शुरू करना होता है। जो आज का दिन है ना, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल दिन है ना। तो इस दिन को अगर आपने अच्छा बनाना है तो आज से ही अपनी शुरुआत करनी होगी। अभी के जो 5 महीने में आपने क्या किया है उसके बारे में नहीं सोचना है, अभी जो बाकी आपके पास समय है उसको कैसे आपने पावरफुल और इंपॉर्टेंट बनाना है, ये आपके हाथ में है। एंड वो कहते हैं ना, डोंट बिलीव इन योर लक, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। तो अपने हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए, अपने लक पे मत कीजिए। लक पे करिए, आई नो दैट लकी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये लक हमारा काम करता है तो हमारा लकी चार्म हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हार्ड वर्क, है ना। तो अपने हार्ड वर्क को जो है अपने साथ रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल। अभी लौट कर आते हैं थोड़ी देर में, फिर करेंगे आपसे और ढेर सारी बातचीत इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, आरजे आनंद को ऐसे ही सुनते जाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी 9837896896। अच्छा गाना लगा रहा हूं, इस गाने के बाद कुछ काम की इंफॉर्मेशन, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। आज खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, आज मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, 1 जून 2026, स्पेशल मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, यू आर ट्यूनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, राइट हियर लकी अली विद मी। एंजॉय करते रहिए ऐसे गाने, वॉल्यूम टर्न बढ़ा लो यार, वॉल्यूम टर्न कर लो यार। मिलते हैं जरा सी देर में, गुड मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: क्या मेरी कसम
2: मिस कर दिया तो रीलोड
4: चाय चाय चाय
5: बिंदास मॉर्निंग
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
6: क्या आप सर दर्द कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
5: बिंदास मॉर्निंग।
7: जब मांगते हैं परसों दुआ।
8: ट्यूनिंग किया है आपने आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मंडे के ब्रांड न्यू मॉर्निंग 1 जून 2026 स्पेशल मॉर्निंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय। एक बेहतरीन गाने के साथ कर रहे हैं अपनी एक और ब्यूटीफुल से आर की शुरुआत। और मेरी जान मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो 8 बजे का आर होता है ना, वेरी वेरी प्रोडक्टिविटी से भरा हुआ, वेरी वेरी एनर्जेटिक वाला आर है ना, तो इसमें अच्छे गाने तो बनते ही। गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, आनंद के साथ हैं आप, गुड मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10
3: की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हां श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं। पहले अपना नाम बता देता हूं, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: आरजे रीना।
0: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है।

0: लगने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
1: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए, आखिर यह योजना कैसे काम करेगी?
0: जरूर। देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
1: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
0: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
1: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
0: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
1: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
0: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
1: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
0: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
1: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
0: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
0: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
1: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
0: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
1: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों
0: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
1: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
0: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
1: दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
0: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है, यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
1: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा,
0: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करें, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें, और कैसे ब्रांडिंग करें, और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाए।
1: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
0: बिल्कुल, कल्पना कीजिए, किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाई या स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे, तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

0: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
1: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
0: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
1: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
0: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
1: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
0: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
1: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
0: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
1: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए।
0: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे, तभी सच मायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
1: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
0: तो मैं हूँ आरजे आनंद
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
0: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
2: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
2: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
4: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
5: अजी कुछ बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि मंडे की सुबह है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक है एक अहम और महत्वपूर्ण प्रोग्राम। अभी आपने सुना, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके शहर का सामुदायिक रेडियो लेकर आता रहता है आपके लिए। आप सुन रहे हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो विद मी। और आज पहली तारीख है, आज क्या क्या स्पेशल मनाया जाता है इस पे हम बात करेंगे। आज का दिन क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है आज का दिन, इस पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा थोड़ी सी देर में। लेकिन उससे पहले खूबसूरत गीत आपका इंतजार कर रहा है। इस गीत के बाद जल्दी से लौट कर आता हूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इतिहास के पन्नों के लिए खास है। सब कुछ आपको पता लगेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप ऐसे ही मेरे साथ जो है अपना साथ बनाए रखिए। और हां, अगर आप मुझे मैसेज नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है, फटाक से मैसेज करेंगे आप, मुझे उठाएंगे, अपना फोन टाइप करेंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना बढ़िया सा एक मैसेज, गुड वाला मैसेज हो सकता है, मॉर्निंग से भरा मैसेज हो सकता है, जो भी आपको प्यारी प्यारी बात अपनी मुझ तक पहुंचानी है बिल्कुल पहुंचाइए। हमें इंतजार है आपके मैसेजेस का, ठीक है जी। नंबर हमने आपको बता दिया है, फटाफट आप हमें मैसेज कर दीजिए। आप हमें संदेश पहुंचाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं, एंड फिर भी अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप भी कर दो यार, मजा आ जाएगा। आप मैसेज करोगे तो और भी आनंद आ जाएगा आनंद को। चलो एक काम करते हैं, अभी एक बढ़िया सा गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक निकाल रहा हूं आज की सुबह, और इस बेहतरीन गाने के बाद हम वापस आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM रेडियो। हाँ जी मिलके बोलो, गुनगुनाते नहीं रहना है पाजी, पहले बजाना है आपने। हाँ जी रेडियो बजाते रहिए, अब बोल दीजिए हाँ गुनगुनाते रहिए, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, ये गाना निकाल रहा हूँ बहुत प्यारा, इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने दिन को और भी बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। चलिए पाजी खूबसूरत ट्रैक, इस गाने के बाद जल्दी से लौट कर आएंगे तो फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। हाँ जी आज के दिन के बारे में बात कर रहा हूँ पाजी, आज के दिन के बारे में। चलो गाना सुनते हैं, बहुत प्यारा गाना है, बहुत खूबसूरत गीत है, आपको फ्लैशबैक में ले जाएगा गाना। अब फिलहाल बातें कम करते हैं और गाने को ज्यादा एंजॉय करते हैं, है ना।

0: ब्यूटीफुल नंबर, आई एम श्योर ये गाना आपको फ्लैशबैक में ले गया होगा। बहुत ही प्यारा गाना, ताजा तरीन हो गई है आज की सुबह, सोमवार की मॉर्निंग है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उदित नारायण साहब की आवाज फ्रॉम द फिल्म ये दिल है आशी गाना का अभी आपने गाना सुना है। और अगर आप मुझे मैसेज नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आज की सुबह। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है सुबह के 9:02 और आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहाँ बातें होती है दिल से दिल तक।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: मेरी कसम
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
5: हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा कि आज 1 जून हो गई है, 5 महीने बीत गए सन 2026 के, छठा महीना शुरू हो गया है। अगर आपने कुछ रेजुलेशंस लिए थे, कुछ प्लान बनाए थे अपने, तो उन प्लान को, उन रेजुलेशंस को अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि अब टाइम आ गया है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक अच्छा सा समय होता है, और वो समय बार बार नहीं मिलता, वो समय अभी है आपके पास। तो भैया, हम भी यही कहना चाहते हैं, एक नई सुबह है, एक नया हफ्ता है, और एक नई तारीख है।

मंडे की मॉर्निंग आनंद के साथ हैं आप सुन रहे हैं आपकी शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद वीडियो। और अभी बात कर लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है आज की तारीख 1 जून, क्या स्पेशल लेकर आया है हम सभी के लिए। दोस्तों आपको बताते चलें, आज की तारीख अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1992 में भारत एवं इजराइल के बीच हवाई समझौते हुए थे श्रोताओं, आज ही के दिन। और आपको बताते चलें, आज का दिन अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि अप्पा शेरपा ने माउंटेन एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की थी सन 2005 में आज ही के दिन। और आपको बताते चलें, आज का दिन और भी तमाम सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर खास है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आज का ये दिन। और आज ही के दिन अशोक कुमार, जो भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक थे, उनका जन्म हुआ था 1958 में आज ही के दिन श्रोताओं। आपको बता दें, नरगिस भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ 1929 को। राजेश्वरी, आज ही के दिन जो है जाना माना नाम, इनका भी जन्म हुआ, जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, सन 1991 में आज ही के दिन इनका भी जन्म हुआ था श्रोताओं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस आज मनाया जाता है। इसके अलावा आज वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इस दिन के बारे में, हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज दूध के बारे में तो जरूर बात होगी। आपको उससे पहले बता दें, सन 1819 में बंगाल में समरपुरा कॉलेज की जो है स्थापना हुई थी। जी हाँ, तो ये जो सारमपुरा कॉलेज की स्थापना थी वो आज ही के दिन हुई थी। और आज का दिन और भी तमाम महत्वपूर्ण चीजों को लेके बहुत ज्यादा खास है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और आज के दिन 1964 में भारतीय मुद्रा में एक नया पैसा शब्द हटाकर केवल जो है ना वो पैसा कर दिया गया था श्रोताओं आज ही के दिन। तो ये तमाम सारी महत्वपूर्ण बातें जो आज के दिन को बना रही हैं और भी खास, हमने जिक्र किया है कि आज वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है। तो दूध कितना जरूरी है आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, आपके बुजुर्गों की हेल्थ के लिए, और अगर आप विमेंस हैं तो आपकी हेल्थ के लिए। वैसे दूध तो सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, मिल्क दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को, इस पर बात करेंगे। अगर एक गिलास दूध आप पी के निकल रहे हैं आज की सुबह, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है यार। फिलहाल आज 1 जून है, आज की सुबह बिग शाउट आउट जाता है आप सभी के नाम, लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छे अच्छे मैसेजेस आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एंड अभी मैं आपसे एक खास चीज पूछने वाला हूँ, इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पे एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुझे आप ही देंगे हमारे संदेश के जरिए 9837896896। जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में, हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे संदेशों का, तो मैसेज करिएगा फटाफट से। जी हाँ दोस्तों, नंबर बता देता हूँ 9837896896, ये वो स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिसके जरिए आप मुखातिब हो सकते हैं मेरे साथ सीधा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। ठीक है, फिलहाल एक प्यारा से गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप भी आज की सुबह कुछ स्पेशल कड़क अपडेट देना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। बाकी श्रोताओं, और कुछ खास बातें हैं जो मुरादाबाद के बारे में मुझे आपसे शेयर करनी है, अभी थोड़ी देर में लौट कर आकर इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद के साथ हैं आप, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, मंडे की सुबह है, आज पहली तारीख है, जून की पहली तारीख है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी स्पेशल मॉर्निंग।

0: रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: ये वो गाना है जो आज की सुबह आपको खुद के लिए जीना सिखा देगा। और गाने के बोल भी बहुत ही बढ़िया हैं।
1: मतलब
0: एग्जैक्टली
1: हो जा जरा मतलब
0: दुनिया की
1: सुन
0: क्यों भाई
1: क्यों
0: खुद के लिए जीना है
1: खुद की भी सुन ले
0: एग्जैक्टली एंड दैट इज द वो टाइम जब आप खुद को अप्रिशिएट करो यार।
1: मतलब
0: कितने दिन हो गए खुद की तारीफ नहीं करी आपने, है ना। सो आज का वो दिन है, दिस इज टुडे। आप आईने के सामने जाइए, खुद की जरा तारीफ कीजिए, खुद की पीठ थपथपाइए, खुद को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। और खुद की तारीफ करना, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है यार। ये है मंडे की ब्रांड न्यू मॉर्निंग, आप है आनंद के साथ।

0: क्या बात है यार, ये गाना कसम से ना बहुत ही बढ़िया गाना है, हमको बहुत बेहतरीन लगता है। और ये गाना ना सच बता रहे भैया फ्लैश बैक में ले जाता है, इतना बेहतरीन गाना है। और बेहतरीन तो कल रात का यार मैच भी था, मैं क्या बोलूं। वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे आनंद के साथ। कल रात के मैच के बारे में कुछ कहना है आपने यार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं आ रहे भाई साहब। तालियां यार, सबसे पहले तो मतलब जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए वैसे तो यार, बट मैं क्लैप्स भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड यार। देखो वैसे तो मैच में मेरे को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, लेकिन कल रात का मैच मतलब था कमाल का यार, बहुत ही बढ़िया। और विराट भाई तो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, साथ में अनुष्का भाभी के तो क्या ही कहने यार। वैसे यार कल रात का मैच कसम से बहुत बढ़िया था यार, एंड कंग्रेचुलेशन यार जितने भी लोग वेट कर रहे थे कि भैया अपनी वाली टीम आएगी और ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके जाएगी, उन लोगों को बधाइयां जी, बधाइयां। एंड मतलब कल रात को जो पटाखे शटाखे शुरू हुए ना, जो आतिशबाजी शुरू हुई है मतलब लेट नाइट, मैं क्या भाई क्या ही हो रहा है ये, पता लगा तो ओ भाई आज तो सबके चेहरे पे एक बड्डी वाली खुशी है। बिल्कुल यार होनी भी चाहिए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, देखिए मतलब जो मैच है ना, मतलब हम लोगों का इमोशन है यार, है ना। क्रिकेट से हम लोगों को बहुत प्यार है यार, इंडियंस को तो स्पेशली बहुत प्यार है। चलिए आगे बढ़ते हैं पाजी, और कुछ खास चीजें आपको बता देते हैं भैया। आरसीबी ने कमाल कर दिया, धोती फाल के रुमाल कर दिया, और आरसीबी फैंस का कंग्रेचुलेशन, स्पेशली अनुष्का एंड विराट जी तो भैया इससे छाए हुए हैं, हम क्या ही बताएं। सोशल मीडिया पे जैसे ही स्क्रॉल कर रहे हो आपको तुरंत हर दूसरी रील में विराट एंड अनुष्का भाभी नजर आ रही है, चलो बहुत ही अच्छी बात है यार। और मैं सच बताऊं ना, जब एक खूबसूरत इंसान का आपको साथ मिल जाता है तो आपकी लाइफ और भी खूबसूरत हो जाती है यार। चलिए फिलहाल बहुत बहुत बधाइयां, आईपीएल 2026 का ये बढ़िया सा खिताब विराट भैया ने कर लिया है अपने नाम, एंड आरसीबी के जितने भी फैंस हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां। अब आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हर तारीख जो होती है ना महीने की पहली, उस पर कुछ ना कुछ खास बदलाव होते हैं, हर महीने की पहली तारीख को कुछ चीजें बदलती हैं। तो आज 1 जून को क्या बड़े बदलाव हुए हैं इमिडिएटली मैं आपको बता देता हूँ फटाक से बिना किसी देरी के। तो भैया आज से कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बताते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर, ओ माय गॉड, कंपनियों ने 19 किलो वाली जो कमर्शियल एलपीजी है सिलेंडर उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं, ओ माय गॉड। आपको बता दें भैया अभी तो फिलहाल मैं बात करूंगा नई दिल्ली में, तो वहां पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है वो 42 रुपीज की जो इसमें बढ़ोतरी हो गई है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कैलकटा की, तो वहां पर भी दामों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, वहां पे 53.5 पैसा जो है बढ़ गया है। और अगर मैं बात करूँ यूपीआई ट्रांजेक्शन की, जो अभी आज 1 जून से कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आज की सुबह क्या बड़े बदलाव हुए जो आपके और मेरे जीवन पर, हमारी जेब पर थोड़ा सा तो असर डालेंगे बाबा। अयो बाबा यूपीआई ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो भैया अब आप यूपीआई के जरिए किसी को भी पैसे ट्रांसफर करेंगे तो स्क्रीन पर उस व्यक्ति की बैंक में जो रजिस्टर असली नाम है वो आपको दिखाई देगा। मतलब अगर किसी पर्सन ने आपको बोला कि भैया मेरा नाम ये नहीं है ये है, तो अब उसकी सच्चाई ना आपको पता लग जाएगी। जब आप उसको यूपीआई में पैसे डालेंगे ना, तो स्क्रीन पर उस व्यक्ति के बैंक में जो रजिस्टर नाम है ना असली वाला, वो आपको दिखाई देगा। आपको बता दें एनपीसीआई ने ये कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया है, एंड दैट इज वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, दैट इज वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, आई लाइक इट यार। तो भैया जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हूँ बढ़िया गुड न्यूज। एंड यूपीआई एटीएम पर भी एक नया निगम, नया जो है रूल लागू हुआ है, नया नियम बनाया गया भैया। बैंक ने यूपीआई एटीएम से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सामान्य एटीएम लेने देने से जोड़ दिया है। यह आपकी मुफ्त मासिक लिमिट में गिना जाएगा और सीमा पार होने पर प्रति ट्रांजेक्शन 23 रुपए तक का आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो ये कुछ खास बड़े बदलाव, अगर आप गाड़ी शाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, पाजी वड्डी वाली गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा सुन लो कारें खरीदने हुए थोड़ी सी महंगे, यस भैया, तो अगर आप गाड़ी वाड़ी का प्लान कर रहे हैं तो एक बारी जरा चेक इट आउट कर लेना क्या कुछ चल रहा है ट्रेंड में, और कैसे क्या चीज है जो भैया आपके बजट में हो सकती है रेडी। चलो भैया जून 1 जून 2026 में कुछ बड़े बदलाव जो आम लोगों की जेब पर कुछ ना कुछ फर्क तो डालते हैं, उसी पर हमने बात के लिए क्या हुआ है महंगा, क्या चीज है जिसने हमें और आपको मजबूर कर दिया है आंसू निकलने पर कि भैया ये चीज तो महंगी हो गई है। लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं आज वर्ल्ड मिल्क डे है उस पर भी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक गाना तो होना चाहिए पाजी, लेकिन उससे ही पहले कुछ एड ब्रेक है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं यार।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: यार क्रिकेट की बात हुई है और इतनी बढ़िया हैप्पीनेस की बात हुई, तो एक ये गाना जो हम सभी की सुबह को और भी अल्टीमेट कर देगा सभी क्रिकेट फैंस के लिए, निकाल दिया मैंने आज की सुबह अपने स्टूडियो से एक बेहतरीन ट्रैक। इसी गाने को सुनते हुए सेलिब्रेट करेंगे और आप सभी को बोलेंगे कंग्रेचुलेशन।

0: क्या बात है यार भाई साहब, मजा आ गया है गाना सुन के। और आरसीबी ने कमाल कर दिया पाजी, कल रात को बस वही हम सेलिब्रेट कर रहे थे आपके साथ। वेलकम बैक है जी, गुड मॉर्निंग। ट्यून इन कर रखा है आपने आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो स्टेशन, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और बाजी मैं कह रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं मिल रही तो तुसे टेंशन ना लो, लोड ना लो यार, अपन ना डिजिटल वाले हैं, जाके प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लो, दिल से दिल तक जुड़ जाओ आनंद के साथ। बाकी जो लोग निकल चुके हैं अपनी गड्डियों बीच अपने ऑफिसेस के लिए, मैं क्या जी वाह वाह बधाइयां जी, ऑल द वे बेस्ट पाजी, बहुत बढ़िया से जा रहे हो, आज ऐसे ही स्माइल करते हुए ऑफिस जाओ, लोड नहीं लेनी है ज्यादा, पहली तारीख है यार। मुस्कुराते हुए जो है अपने दिन की शुरुआत कीजिए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। जो लोग आनंद के शो का हिस्सा है, जो लोग आनंद के मॉर्निंग का हिस्सा है, वो तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाते हैं, मुझे सुनते हैं ना। तो भैया मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह आपको ना एनर्जेटिक बनाया जाए, थोड़ा पॉजिटिव बनाया जाए, थोड़ा सा चेंज लाया जाए जिंदगी में, थोड़ा रॉक मचाया जाए, तभी तो लाइफ में मजा आता है काम करने में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9837896896, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। 9:28:12 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में बॉस। ऊपर जाए जी, की हाल चाल है तुम्हारे? चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे पास कुछ मैसेज आए। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपकी आवाज सुन के सच में बहुत ही एनर्जी मिलती है, सुबह सुबह बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। हाय माय नेम इज शिफाली, गुड मॉर्निंग शिफाली जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट यार। आगे बढ़ेंगे, एक और मैसेज आ गया चमनलाल साहब का, लिखते हैं गुड वाली मॉर्निंग आनंद जी, ये मुझे पुतली घर चौराहा से मैसेज करते हैं, और आज की सुबह बहारुल हुसैन सिद्दीकी भी जुड़ गए, अमरोहा से एक मैसेज पहुंच गया, हाय गुड वाली मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ गुड मॉर्निंग जी, आई होप आप भी बढ़िया होंगे। ये मुझे मैसेज आ रहा है, हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज रूबी, हाय रूबी गुड मॉर्निंग। हेलो हाय, मेरा नाम जुल्फी है आनंद जी, क्या हाल चाल है जुल्फी भाई? गुड मॉर्निंग जुल्फी भाई, लिखते हैं आनंद जी, जिंदगी में कभी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए, लाइफ में सफलता हाथ लगे ना लगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा हाथ लग ही जाता है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिल ही जाता है। क्या बात है जुल्फी भाई, कमाल कर रहे हो। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग रिहाना जी मेरे साथ जुड़ी है आज की सुबह रानी नांगल से, एंड ये मैसेज पहुंचा है गायत्री नगर से, इन्होंने नाम लिखा है शुभम, हाय शुभम गुड मॉर्निंग। शुभम ने एक कप चाय मेरे साथ शेयर करी है, क्या बात है यार, बेहतरीन बना दी सुबह मेरी। एक मैसेज पहुंचा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? डीएमआर हॉस्पिटल के पास से मुझे मैसेज कर रहे हैं, ओके हाय गुड मॉर्निंग। यार मैं कल डीएमआर की तरफ से निकला था उधर पीलीकोठी जाने के लिए, भाई उधर क्या इतनी ज्यादा भयंकर वाटर लॉकिंग हो रखी थी ना भाई, इतना पानी भर गया था। आई नो कल बारिश भी थोड़ी ज्यादा ही जमाजम हो गई थी, लेकिन मन प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया कल की बारिश को देख के। कल शाम को जो जमाजम बारिश हुई है ना 4 बजे के समथिंग, भाई मतलब कहना ही क्या, चारों तरफ वाटर लॉकिंग। मैं गायत्री नगर से निकला उधर भी पानी भरा हुआ है, मैं आपके किले की तरफ गया उधर भी ट्रैफिक जाम, पानी पानी। तो ये जो सड़कों में वाटर लॉगिंग हो गई थी ना कल देख के, लग रहा था कि हाँ भाई बहुत जो है समस्या है मुरादाबाद की जनता को यार, जब बारिश पड़ती है ना तो वाटर लॉगिंग अच्छी खासी हो जाती है यार मुरादाबाद में। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? हनुमान मूर्ति से मैसेज कर रहे हैं, मेरा नाम इन्होंने अमनदीप लिखा है, हे हाय गुड मॉर्निंग अमनदीप, लिखते हैं आनंद जी मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा हूं और आपको सुनते हुए जा रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है यार, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, थैंक यू यार।
1: ईद का गेट मुरादाबाद से शफी और अंसारी बोल रहा हूँ,
0: गुड मॉर्निंग सर,
1: गुड मॉर्निंग
0: आपको
1: आनंद जी, क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया सर,
1: आपका शो लाजवाब है, पेशकश भी लाजवाब है, नए नए अपडेट के साथ, आप सब बिंदास मॉर्निंग सुनते रहो, आरजे आनंद के गुण गाते रहो, एफएम मुरादाबाद रेडियो बजाते रहो। कुछ लाइनें बोल रहा हूँ, दौलत के पीछे चाहे जितना दौड़ो, दौलत के पीछे चाहे जितना दौड़ो, लेकिन सच्चाई का दामन न छोड़ो, दौलत आदमी को गुमराह कर देती है, दौलत इंसान को पहचानने से मगरूर कर देती है, थैंक यू।
0: क्या बात है पाजी, इतनी बढ़िया लाइन, गजब की लाइनें थी यार, बहुत ही बेहतरीन, और आप सभी के लिए भी मैसेज, तालियां यार, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल मैसेज कर रहे हो, थैंक यू सो मच, ऐसे ही अच्छे अच्छे मैसेज करते रहो। और अभी आगे बढ़ते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि आज 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है ना, तो इस पर भी हम बात करेंगे, पूरे विस्तार से बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक अच्छे से गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लौट के आते हैं, फटाफट बताऊंगा आपको 1 जून को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, दूध वाला दिन है आज। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं, इस पे बात करेंगे। अदनान साहब साथ में सुनिधि चौहान का धीम ट्रैक नंबर, उसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, और मेरे साथ आप भी डांस करेंगे।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपके शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
9: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
10: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
9: पर पापा।
10: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
11: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वेलकम बैक है यार। देखो वक्त हो गया है 9:44। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आज 1 जून को हर साल हम वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं और इसी के विषय पे हम बात करने के लिए आपके रेडियो पर पहुंच चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। हर साल 1 जून को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे? देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर साल 1 जून को ही मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है लोगों में जो है जागरूकता बढ़ाना, दैनिक आहार में दूध के जो पोषण है वो स्वास्थ्य के लाभ और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और हमें उनको नहीं हम सभी को यूज़ करना चाहिए दूध। हमारे छोटे बच्चे बड़े सभी के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दूध के अंदर जो पोषण होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दूध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। श्रोताओं आपको बता दें दूध पीने के मुख्य बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छे आपको फायदे मिलते हैं अगर आप दूध पीते हैं तो। आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। देखिए मजबूत हड्डियां और दांतों के लिए जो है दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी होता है जो एक कह सकते हैं कि आपकी दांतों के लिए और आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अगर आप दूध को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अपने आहार में शामिल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, जो आपकी हड्डी

होते हैं, तो शरीर के अंदर जो हमारे मुंह के अंदर दांत हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है ना, हमारे बचपन में दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, उसके बाद जो दांत निकल कर आते हैं ना भाई, अगर आप उनको लॉन्ग टाइम हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो ब्रश करने के साथ साथ दूध को भी आपने जो है अपने आहार में शामिल करना है। आपके दांतों के लिए भी दूध बहुत ही अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए भी दूध बहुत अच्छा है, लगातार मैं वही आपको बता रहा हूँ। आपकी स्किन में भी चमक लेकर आता है दूध, एग्जैक्टली आपकी त्वचा में चमक लेकर आता है दूध। में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा को चमकदार बनाते हैं। तो भैया दूध के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप दूध को अपने आहार में शामिल करते हैं तो एक नहीं कई फायदे मैंने आपको गिना दिए हैं। और आज 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। तो भैया देखिए, दूध को जो है अपने आहार में ज़रूर शामिल कीजिए, चाहे आप रात को 1 गिलास गुनगुना दूध अगर आप पीकर सो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, और अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट में 1 गिलास दूध लेके निकल रहे हैं ऑफिस पीते हुए तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। और वैसे भी रोजाना दूध पीना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम का एक बेहतर स्रोत माना जाता है, एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने, ऊर्जा देने के लिए और मांसपेशियों के विकास में काफी मदद करता है। तो भैया दूध का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी और डबल हो जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अभी मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, फटाफट से आपने मेरे को उसका जवाब देना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके रेडियो पर लेकर आने वाला हूँ, अगर आपने इसका जवाब दिया तो आज की सुबह आप बनेंगे मेरे शो के सुपरस्टार। 9:47 हो गए, स्टूडियो की घड़ी में आप आनंद के साथ हैं, ढेर सारे संदेश आपके पहुँच रहे हैं मेरे स्टेशन पर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपके संदेश इतने प्यारे प्यारे हमें मिल रहे हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। भूत बंगला का एक ब्रांड न्यू गाना है जो कि बहुत ही अपने आप में ब्यूटीफुल ट्रैक है, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। बॉयज एंड गर्ल, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, मैं सच बता रहा हूँ ये गाना सुन के आपका अंदर का डांस बाहर आ जाएगा गाड़ी विच। चलो जी, मंडे की सुबह है, 1 जून की तारीख है, भूतों से नहीं डरना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, डरना है तो आपने नेगेटिविटी से डरना है ना। चलो मैं इस गाने पे थोड़ा सा एंजॉय करके आता हूँ, थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ फटाफट से। वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है, फिलहाल 28 हो गया है।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
3: एग्जैक्टली बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल। आने वाली 20 जून को बहुत ही स्पेशल एक चीज होने वाली है मुरादाबाद के अंदर, और ये क्या होने वाला है ये आपको जरूर पता लगेगा होले होले इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल अभी पता लगने वाला है आज का मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कड़क क्वेश्चन। आपने कुछ नहीं करना है, बस आइडेंटिफाई करना है इस गाने को। अभी जो मैं म्यूजिक यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ ये कौन से गाने का है, बस आपने यही मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है। एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग, ये गाना आपने इवन बहुत बारी सुना होगा मेरे स्टेशन पर। अब आपने बस आइडेंटिफाई करना है कि अभी जो म्यूजिक चल रहा है वो कौन से गाने का है। ठीक है जी, तो 3 2 1 गो स्टार्ट। पहचानो जरा। आपने मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है कौन सा गाना है। इसी गाने के बारे में आपने मेरे को बताना है, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896938968968966 पर। बहुत ही बेहतरीन गाना है। यस, पकड़ो इस गाने को, जरा पहचानो यार। अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा जी, अभी आज के लिए सफिशियंट है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब, ठीक है। हमें पता है कि आप जरूर बता दोगे, हमें पूरा विश्वास है अगर नहीं बताए तो गलत हो जाएगा। फिलहाल गलत नहीं होगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े फिल्मी शिल्मी हो यार। पिछले 3 सालों से आपको जो है अच्छी खासी नॉलेज हो गई है गानों की भी, और आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे सवालों की भी। फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन गाना निकाल दिया मैंने, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये ट्रैक सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल नंबर है यार, सुनिधि चौहान की आवाज साथ में कोई और भी देंगी साथ। हाँ, इरशाद कामिल साहब ने लिखा है धोखा कभी हो जाता है आँखों में बहुत ही प्यारा गाना। चलो मैं कुछ और कड़क जानकारी लेकर आता हूँ।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

यही गाना आपने आइडेंटिफाई करके मुझे व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ अपना बढ़िया वाला जवाब 9837896896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, लास्ट मौका है, प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा गाना है। चलो जी फटाफट मैसेज करो 9837896896। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। और अभी मैं आपको बताता हूँ, कल देखिए मन की बात आई, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात साझा करी। आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी, FM मुरादाबाद से भी हमने ब्रॉडकास्ट की थी। और मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार कुछ नया लेकर आते हैं, किसी नई नई चीज़ों पर कुछ खास बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। और इस बार की मन की बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही, बहुत ही खास रही श्रोताओं। और आपको बता दें, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बस जिनको हम सुनते हैं, जिनको हम जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी फील देती है। और ऐसे ही मन की बात है, जब आप ये कार्यक्रम सुनते हैं तो इसमें आपको नई नई चीजों पर चर्चा करते हुए सुनाई देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूपी शर्मा जी जुड़ गए हैं नगर पंचायत पागवाड़ा से आज की सुबह मेरे साथ। और ये कौन सा गाना है यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अभी लौट कर आ रहा हूँ, फटाफट बताता हूँ।

मेरा भी दिल बंजारा हो गया यार। हाय हाय हाय बंजारा उसकी धुन में लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों ने किए हैं एंड मेरे पास सही जवाब पहुंच गया है लक्ष्मी जी का। ये मेरे पास आया है माता मंदिर से, एकदम सही वाला जवाब इन्होंने लिख दिया है कि राइट आंसर है अफसाना बना के भूल ना जाना। दिस इज राइट आंसर, एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट आंसर। कंग्रेचुलेशन लक्ष्मी जी, आज की सुबह आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैंने पूछा था कौन सा गाना है, हिमेश रेशमिया की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके लिए तालियां एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये जो आपने लिखा है ना आनंद जी, आपका शो सुन के मेरे को बहुत मजा आ जाता है, सुबह सुबह बहुत ही प्यारे गाने बजाते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। और फिलहाल लक्ष्मी जी आपको बहुत बहुत बधाइयां। नमस्कार आनंद जी, कैसे हालचाल है सभी सुनने वालों को। आनंद जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भूपी शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और ये मैसेज हमारे पास पहुंच गया है एक और, गुड मॉर्निंग। हाय आनंद जी, गुड मॉर्निंग जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच गाइज। इतने प्यारे प्यारे आप मैसेज करते हैं ना, मतलब एक्चुअली टाइम थोड़ा सा कम है, 10:07 हो रहे हैं। फिलहाल मैं लेता हूं आपसे जाने की अनुमति, इजाजत, मिलूंगा कल सुबह 7 बजे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए, आज 1 तारीख है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए ताकि ये पूरा महीना आपको खुशियां देकर जाए, ठीक है जी। तो फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ निकलिए, घर से बाहर निकल चुके हैं तो ऑल द वे बेस्ट। आज का दिन आपका शुभ रहे, मंगलमय रहे, मंडे है, ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, एक नए हफ्ते की शुरुआत है, तो बस बेहतरीन एनर्जी और पॉजिटिविटी से खुद को भरिए और अच्छे से ताजगी के साथ निकलिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग, बाय।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430। सुबह सुबह रेडियो ऑन न करने से पहले
1: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, मंडे की सुबह है, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है और साल का सिक्स मंथ स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आज जून की पहली तारीख है और मंडे का दिन है। नई तारीख, नया महीना और नई सुबह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी हर दिन एक नया पन्ना लिखने का मौका देती है। तो मुस्कुराइए, सकारात्मक सोचिए और पूरे जोश के साथ कहिए हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप भी अपना मैसेज हमें पहुँचाइएगा आज की सुबह। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और मंडे की सुबह है, क्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं आज आप, हाँ बताइएगा। कुछ ऑफिस पहुंच चुके हैं तो कुछ अभी ऑन द वे कार में हैं। और हमारी जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं वो घर के काम जल्दी से फिनिश कर रही हैं कि चलिए जल्दी से काम को कर लेते हैं। एंड कुछ अभी ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी हैं और कुछ अभी आराम से बैठकर रेडियो का आनंद ले रही हैं, रेडियो सुन रही हैं। तो आप सभी का आरजी खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, एक खूबसूरत से गीत, एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ करते हैं आज शो की शुरुआत। मंडे की सुबह है, इतना आलस अच्छी बात नहीं है, ना ना ना ना, आज तो फुल ऑन एनर्जी होनी चाहिए ना एवरीवन। देखिए, जब आप पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो फिर आलस खुद ही ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो ये प्यारा से गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ फ्रॉम द मूवी केदारनाथ से।
1: टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं,
2: तो हमने तो पंडित जी को बता दिया है।
1: ना लगाया हमने किसी से किससे सुने हैं यूं तो कहीं।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजी खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मंडे की सुबह है दोस्तों और वक्त हुआ है 10:28। ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया है और 1 जून की तारीख है आज। क्या स्पेशल है वो सब आपको पता लगेगा अभी।

और दोस्तों आज 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और कहा भी गया है ना कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता और माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। दोस्तों माता पिता वो अनमोल रिश्ता है जो हमारी पहली मुस्कान पर खुश होते हैं, हमारी पहली जीत पर गर्व करते हैं और हमारी हर परेशानी में सबसे पहले हमारे साथ खड़े नजर आते हैं। उनका प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं होता है, वे अपनी खुशियों का त्याग करके हमारी खुशियों का संसार बनाते हैं। उनकी दुआओं में वे ताकत होती है जो हर मुश्किल राह को आसान बना देती है। और आज का दिन उन सभी माता पिता को समर्पित है जिन्होंने अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए न जाने कितने सपनों और इच्छाओं का त्याग किया है। अगर आपकी माता पिता आपके साथ हैं तो आज उन्हें गले लगाइए, उनका दिल से धन्यवाद कीजिए और दोस्तों उनको ये भी बताइए कि वो आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काम की वजह से, स्टडी की वजह से या फिर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती है जिनकी वजह से फैमिली से दूर रहना पड़ता है। शौक तो नहीं होता पर मजबूरियां होती हैं लाइफ में, बहुत अगर चीज़ें करनी है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक ऐसा रिश्ता मम्मी पापा का होता है कि दूर रहकर भी वो हमारे करीब होते हैं। और अगर आप फैमिली से दूर हैं तो कॉल करके आज उनको थैंक यू तो बोलिएगा स्पेशली। और दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल भी है, बहुत ही खूबसूरत सा है।

दोस्तों, अगर आज आपको अपने पेरेंट्स को सिर्फ एक संदेश देना हो तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, अगर आप आज अपने पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो क्या मैसेज होगा? जल्दी से अपना मैसेज हमें पहुंचाइएगा। नंबर 9837896896। जो हमारी पूरी दुनिया है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो बताइए। जो हमारे सपनों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं उनके लिए आज तो कुछ स्पेशल बनता है ना दोस्तों। तो फटाफट से अपनी मैसेज हमें पहुंचाओ। नंबर है 9837896896। और मंडे की सुबह है, खूबसूरत गीतों के साथ करते हैं शो की शुरुआत। मैं आपसे कहती हूँ कि आप पीछे मत रहिए, फटाफट से अपने मैसेज, अपने प्यारे से बातें हम तक पहुंचाइएगा और मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। एंड उसके बाद आएंगे और भी आपसे बातचीत करेंगे कंटिन्यू। बस आप कहीं मत जाइए, दिल से मुस्कुराइए। और खुशी कहती है, क्या कहती है खुशी? मुस्कुराने में ना कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत ना हमेशा मुस्कुराकर करनी चाहिए। जब हम मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का आरजे खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है दोस्तों आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा से. और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी इस ब्यूटीफुल शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. हमारा मोबाइल नंबर ऑफिशियली आपको मोबाइल नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है. नंबर है 9837896896 इस पर. और दोस्तों आज हमने बहुत ही सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक सवाल पूछा है. अगर आज आपको अपने पेरेंट्स को एक ब्यूटीफुल मैसेज देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे पास नेहा जी का मैसेज आया है और नेहा जी का इतना ब्यूटीफुल मैसेज है कि मैं भी इमोशनल हो गई हूँ और मुझे भी सडनली मम्मा की याद आ गई. और बहुत ही प्यारा सा इन्होंने मैसेज हमें पहुँचाया है लखनऊ से. कहती हैं, हाय मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी नेहा जी. कहती हैं कि मैम आपने जो मैसेज पूछा है, आज क्वेश्चन पूछा है, वो बहुत ही खूबसूरत है. और उसी पर मैं कहना चाहूँगी, ये स्टडी के लिए घर से दूर रहती हैं और कहती हैं कि मम्मी पापा मैं पढ़ाई के लिए घर से दूर हूँ, कभी कभी बहुत मन करता है कि बस आकर आपके पास बैठ जाऊँ, फ़ोन पर आपकी आवाज़ सुनकर ही हिम्मत मिल जाती है. मेरी हर छोटी बड़ी सफलता आपके नाम है, बस आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है. क्या बात है नेहा जी, आपने तो एकदम इमोशनल ही कर दिया. हाँ, सुबह सुबह इतना प्यारा सा मैसेज आपकी मम्मा सुन रही होंगी तो वो भी खुशी से झूम रही होंगी और उनकी आंखें भी खुशी की मारे नम हो गई होंगी. नेहा जी ने इतना प्यारा सा मैसेज अपने पेरेंट्स को पहुंचाया है. और सच में दोस्तों देखिए, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं ना, मम्मा पापा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, वैसे हम बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनको भी लाइफ में हम सारी खुशियां दें, जो खुशियां वो हमें देते हैं और जिन खुशियों के वो हकदार हैं तो उनको भी मिलनी चाहिए ना. मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी कोई ऐसा ब्यूटीफुल सा मैसेज अपने पेरेंट्स के नाम आज करना चाहते हैं, कुछ भेजना चाहते हैं, तो फटाफट से भेजिएगा. और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से. ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी और साथ में मेहराज जहाँ भी हैं. कहते हैं, मैम को हमारा नमस्कार, आप कैसी हैं आरजी खुशी जी? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे ही होंगे. नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है धनूरी तिलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया आयान बाबूजी का. और ये कहते हैं कि मैम आपका तहे दिल से धन्यवाद और आपको नमस्कार, थैंक यू. तो हम भी आपको कहना चाहेंगे सर कि सुबह सुबह आप सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, अपने प्यारे प्यारे संदेश पहुंचाते हैं. आई एम सो हैप्पी. एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर किन का आया है ये भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ बिना किसी देरी के. ये मैसेज हमें हमारे पास यहाँ पर आया है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी का. और ये भी राधे राधे पहुँचाते हैं.

धन्यवाद। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर दीपिका जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं। दोस्तों आप अपना वॉइस नोट भी पहुँचा सकते हैं, अपनी आवाज़ लाखों श्रोताओं तक पहुँचा सकते हैं। चलिए अभी मैं एक खूबसूरत सा गीत आप सभी को यहाँ पर सुनवाती हूँ, और इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें नेहा जी ने भेजी है लखनऊ से। तो अपने मम्मा पापा के लिए स्पेशली ये ट्रैक इन्होंने डेडिकेट किया है, तो बहुत ही खूबसूरत सा है। लौट कर आती हूँ मैं इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाइए और रेडियो की सिंह को बिल्कुल भी मत घुमाइए। और एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सभी का ना रेगुलर सवाल होता है कि आज क्या बनेगा खाने में। कॉमन सा सवाल है और सभी के घर में ये होता है, क्योंकि सभी मालूम करते हैं एवरी डे आज क्या बनेगा खाने में। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और इसी से जुड़ा एक बहुत ही यू नो ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं आपसे मालूम करूंगी और आप उसका जवाब भी दीजिएगा, ठीक है? लेकिन पहले ये गीत सुनिएगा, मैं बस लौट कर आती हूँ।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप

0: स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ। यहाँ मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।

0: उसकी हो।
1: हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ, मैं क्या जी मुस्कुरा भी दो। सुबह सुबह तुसी क्यों मुंह बना के घूम रहे हो? हाँ बताओ मैनू, ऐसे ना किया करो, आप इतने प्यारे हो, सुबह सुबह ऐसे गुस्सा करोगे तो अच्छे नहीं लगते हो। नहीं, ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। अब देखो, मैंने इतने प्यार से बोला है तो अब मुस्कुरा दो। एंड दोस्तों, यहाँ पर चल रहा है शो आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला, और प्यारे प्यारे आपके संदेश भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको भी मैं क्विकली शामिल करूंगी। एंड टाइम की अगर बात करें दोस्तों, तो वक्त हुआ है 10:56, देख लीजिए, आप भी अपनी घड़ियाँ मिला लीजिए। और आप सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड, इतनी जल्दी 10:56 हो गए हैं, मुझे तो बहुत सारा काम अभी बाकी है करना है कंप्लीट। हाँ तो काम भी कर लो एंड फोन को बाद में चलाना, फोन को साइड में रख दो। अगर आप फोन चलाते रहोगे तो काम कैसे करोगे? हाँ तो फोन को थोड़ा सा स्किप करो, साइड में रखो और अपने काम जो कंप्लीट करने हैं वो करो। अगर आप फोन लेकर बैठोगे ना तो कब आपका एक घंटा इसमें निकल जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। ये चीज ही ऐसी है कि जब आप इसको अपने हाथ में रखते हो ना तो आपको भी नहीं पता चलता है। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और जब आप पहली रील्स को स्क्रॉल करते हैं, कब आपको आधा घंटा एक घंटा आपका गुजर जाता है, आपको भी नहीं एहसास होता है। लेकिन जब पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है ना कि मैंने तुम्हें ये काम करने के लिए बोला था, किया तुमने, फिर तो पूछिए मत क्या होता है। हाँ और दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों ने पहली बार गुजरात को 155 रन पर रोक दिया है। इसके बाद टीम ने लक्ष्य हासिल करके ट्रॉफी जीत ली है। विराट कोहली और रसिक सलाम जीत की सबसे बड़ी हीरो बनकर उभरे हैं, और हमारी ओर से जोरदार तालियां जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। एंड हम अपनी टीम्स को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक ट्रैक तो बनता है आज की सुबह, लेकिन उनसे पहले कुछ और संदेश यहाँ पर आए हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि खुशी जी ने हमारा मैसेज अभी तक शामिल नहीं किया है। तो आप दिल थाम के बैठ जाइए, आपके संदेशों की ही बारी है। और एक मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है काशी नगरी बनारस से, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं मौसीम अंसारी जी, और साथ में सरताज अंसारी जी हैं, शाहिद अंसारी जी हैं, कहते हैं मैम कैसे हैं आप? मैडम जी के हालचाल अच्छे हैं। हाँ थोड़ी आवाज़ बैठ गई है लेकिन अभी ठीक हो गई है, पहले से तो ठीक हो गई है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था गले में, बट अभी तो राहत मिल चुकी है, तभी मैं इतना बोल भी रही हूँ। और इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं, बड़ी खूबसूरत सी हैं कि फूल सी नाजुक है वो, फूल सी नाजुक है वो, पर कांटों का दर्द लिए फिरती है, कहती है दिल दुखाती नहीं मेरा, कहती है दिल दुखाती नहीं मेरा, पर मन में सरहद लिए फिरती है, नाज करती है खुद पर जब खुश होती है, कि नाज करती है खुद पर जब खुश होती है, कोसती है खुदा को जब मन में जज्बात लिए फिरती है। कितना कह दूँ उसके बारे में, कि कितना कह दूँ उसके बारे में, लफ्ज़ भी कम पड़ जाते हैं, ज़माना क्या करेगा उसकी परख, इतना समझना कि दिखती तो बारिश की बूंद है, कि दिखती तो बारिश की बूंद है, पर खुद में वो समुंदर लिए फिरती है, पर खुद में वो समंदर लिए फिरती है। क्या बात है जी, सुबह सुबह इतनी प्यारी सी लाइनें आज की मॉर्निंग आपने भेजी हैं, और किन के लिए भेजी हैं ये तो आपने नहीं बताया है, बट कोई बात नहीं है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, ये मैसेज हमारे पास आया है सबरीन का मिलक से, और बस गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसे हैं आप? दुआ करते हैं कि आप अच्छी ही होंगी, और आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है खुशी जी, थैंक यू सो मच। ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं मंजू मिश्रा जी सूर्यनगर से, दिल से धन्यवाद मैम आपका। और अगला मैसेज हमें मिला है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका शो हम अपने दोस्तों के साथ सुन रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद हमने मैसेज किया है। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं सोनू कुमार जी सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से, एंड और मैसेज आए हैं दोस्तों, उनको भी मैं धीरे धीरे शामिल करूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ म्यूजिकल ब्रेक भी ले लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। एंड 11 बज चुके हैं राइट नाउ, कुछ एड ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो दोस्तों मैं कहूँगी आपसे कि आप भी पानी पीते रहो, देखो आलस बिल्कुल भी मत करो। और मौसम कैसा है बाहर का ज़रा बताइएगा फटाफट से मैसेज करके एवरीवन। जब मैं सुबह आई थी तो बहुत ही खूबसूरत सी धूप खिली हुई थी और हवाएं भी चल रही थी हल्की हल्की, लेकिन अभी राइट नाउ कैसा वेदर है वो आप मुझे बताएंगे क्विकली, बाहर का वेदर कैसा है जल्दी से फटाफट मैसेज करो। हाँ, अगर आप रूम में है तो विंडो में विंडो को खोलिए और बाहर का मौसम के बारे में हमको अपडेट दीजिएगा। हम आपको अभी कुछ गाने सुनवाते हैं, इसके बाद लौट कर आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
0: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपने इतने प्यार से बुलाया है तो हम आ चुके हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, जब ये रिश्ता हमारा और आपका दिल से दिल का है, आप इतने प्यार से खुशी को बुलाएंगे तो खुशी कैसे नहीं आएगी। हाँ जी, आ चुके हैं हम।

और आपकी खूबसूरत संदेश भी आ गए हैं, तो उनको भी हम क्विकली शामिल करते हैं। एंड टाइम की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर वक्त हुआ है 11:11, और बहुत ही ब्यूटीफुल मैजिकल टाइम भी है। एंड आपके जो मैसेज आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ, क्या क्या पहुँचाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से श्रोता, क्योंकि आपकी जो बातें होती हैं ना बहुत खूबसूरत होती हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम एकता फ्रॉम मंडी चौक मुरादाबाद से, और ये कहती हैं कि मैम, मैं अपने पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि आपने अपना ध्यान रखें, जो भी होगा सब अच्छा होगा, टेंशन ना लें। अरे वाह, क्या बात है एकता जी, आपने छोटे से मैसेज में बहुत बड़ी बात बोल दी है, और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज अपने पेरेंट्स को आपने दिया है। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है एकता जी कि देखिए, लाइफ में ना चिंता नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो होगा वो अच्छा ही होगा। खुद पर और ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए और अपने कर्म करते रहिए। जब आपको पता है कि हम अच्छे हैं और हमारे कर्म भी अच्छे हैं, तो चिंता, व्यर्थ की चिंता करने से ना अपनी सेहत ही ख़राब होती है। तो व्यर्थ की चिंता ना करें, अपने काम पर फोकस करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जिएगा। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, कहते हैं खुशी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते आपको भी, मैं ठीक हूँ। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है खुशी जी को, नमस्कार राधे राधे, ये राधे राधे हमें पहुँच जाती हैं सपना शर्मा जी, और कहती हैं सम्मान सहित राधे राधे, आपको भी राधे राधे मैम, और सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। हम तो बस यही जानते हैं कि खुशी जी की सब्र रखो, सब होगा, जब भी होगा गजब होगा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सपना जी कहती हैं कि सभी को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सपना भूपी शर्मा नगर पंचायत बागवाड़े से अपना मैसेज पहुँचाती हैं, उनके इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज अपना पहुँचाया है। सपना जी आपने अपनी आवाज़ भी पहुँचाइएगा कभी, देखिए भूपी शर्मा जी तो हमेशा अपना वॉइस नोट पहुंचाते हैं सर, लेकिन आप भी अपनी आवाज़ पहुंचाइए, हम भी सुनना चाहते हैं आपकी मधुर सी आवाज़, जो आप घर में अक्सर गुनगुनाती भी हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, तो किसी दिन आप भी अपनी वॉइस नोट ज़रूर हमें पहुंचाइएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें रुद्रपुर से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, और ये संदेश हमें पहुंचाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं खुशी जी आपको आदाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आपका शो मॉर्निंग मसाला हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए दोस्तों अभी लौट कर आएंगे। हाँ, मैंने आपसे अभी जिक्र किया था ना कि एक सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। एवरी डे सबका क्वेश्चन होता है एवरी मॉर्निंग कि आज क्या बनेगा खाने में, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है जो मैं अभी लौट कर आऊँगी तो पूछने वाली हूँ आप सभी से, क्वेश्चन है एंड आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? और सोचो सोचो कि क्या हो सकता है आज का, थोड़ा सा दिमाग घुमाइए और हमें आंसर पहुँचाइएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन बताऊँगी तब ना, अभी रोको तो सही, थोड़ा सा इंतज़ार करो, पहले ही गाना सुनो, पहले अपने माइंड को ना एकदम चिल करो, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है?

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
6: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
7: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ?
6: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले। तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
8: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरजे खुशी पूरे दिल से आप सभी का वेलकम करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, खूबसूरत गीतों के साथ, खूबसूरत बातों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था। और इस समय मैं आपको बता देती हूँ, 11:26 हो गए हैं। एंड आपको पता है, सुबह उठते ही ना सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, चाय नाश्ता करने के बाद आज खाने में क्या बनेगा। तो चलिए आज मेरी मदद कीजिएगा, मुझे झटपट से 10 सब्जियों के नाम बताइए। हो सकता है आपकी लिस्ट सुनकर मुझे और बाकी श्रोताओं को भी आज के लंच का या फिर डिनर का आइडिया मिल जाए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मुझे 10 सब्जियों के नाम बताने हैं। फटाफट से आप मुझे मैसेज कीजिएगा, नंबर 9837896896। क्योंकि किचन की सबसे बड़ी पहली बात यही होती है कि आज ये क्या बनाऊं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा जादुई हल है तो मुझे 10 सब्जियों के नाम भेजिएगा। देखते हैं किसकी लिस्ट सबसे स्वादिष्ट और सबसे लंबी निकलती है, शायद आज का मेन्यू भी वही तय कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना जवाब मज़ेदार पहुंचाइए, 10 सब्जियों के नाम मुझे बताइएगा। और आपकी सब्जियों के नाम से हमें भी कुछ आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मेरे मन में भी यही सवाल होता है। मैं भी सुबह नाश्ते के बाद मालूम करती हूँ कि आज क्या बनना है लंच में, बताइएगा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता है तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ और उसमें बहुत टाइम भी मेरा चला जाता है। तो प्लीज़ मुझे फटाफट से आप 10 सब्जियों के नाम मेंशन कीजिएगा यहाँ पर, शायद आपकी चॉइस में से कुछ मुझे भी पसंद आ जाए और हमारे श्रोताओं को भी हेल्प हो जाए। तो आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, नंबर 9837896896। और हमारी जो फीमेल सुन रही है ना, वो तो मुस्कुरा रही है, फटाफट से सब्जी के नाम भी टाइप कर भेजने की पूरा प्रयास कर रही है। चलिए कंटिन्यू, लगी रहिए मैम। और हमारे पास यहाँ पर कुछ वॉइस नोट भी आए हैं, तो क्विकली उनको भी हम शामिल कर लेते हैं आज की सुबह। क्या पहुँचाते हैं हमारी प्यारी सी श्रोता, एंड एक बड़ी प्यारी सी बच्ची का मैसेज हमारे पास आया है, उनकी आवाज़ भी सुनते हैं।
1: खुशी मैम, हम भी कार्यक्रम सुन रहे हैं। मेरा नाम ओंकार सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ।
0: थैंक यू, आपने अपना वॉइस नोट पहुँचाया है। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास वॉइस नोट किन का आया है, ये भी सुनते हैं।
2: नमस्कार राधे राधे, माता पिता दिवस की आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं मम्मी और पापा। दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप पूरी दुनिया हो। मुझे एक अच्छा इंसान बनाने और मुझ पर हमेशा भरोसा करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। मंजिलें चाहे कितनी भी दूर हों, जब आपका हाथ मेरे सिर पर होता है तो हर रास्ता आसान बनने लगता है। मेरी हिम्मत और मेरी प्रेरणा बनने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। हैप्पी माता पिता दिवस यानी कि पेरेंट्स डे, मिस यू पापा। भूपी शर्मा, नगर पंचायत बागबड़ा, मुरादाबाद। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और प्रोग्राम है मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ। राधे राधे।
0: आपको भी राधे राधे भूपी शर्मा जी, थैंक यू सो मच। अपना प्यारा सा वॉइस नोट आपने पहुंचाया है और पेरेंट्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सी आपने बातें कही हैं, दिल को छू गई हैं, एंड थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर किन का आया है, ये भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप सब अपने संदेश, अपने दिल की बातें हम तक साझा करते हैं। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, जय श्री राम खुशी जी, कैसे हाल चाल है आपके। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी, ग्राम कल्याणपुर पीतल नगरी से, और कहते हैं आपसे काफ़ी समय के बाद जुड़ रहे हैं मैम। एंड कहते हैं कि खुशी जी, आज हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है और हम लोग तो आम के बगीचे में बैठे हैं, आपका शो सुन रहे हैं। क्या बात है, दोस्तों के साथ आम के बगीचे में आप लुफ्त उठा रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं का, हाँ, और कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। अगला मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद ग्राम धूला उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, शीतल कश्यप जी का, और ये कहते हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है काशी नगरी बनारस से, मैसेज हमें पहुंचाते हैं मौसी मंसारी जी, और ये कहते हैं कि कभी सोचा है जिन माँ बाप ने हमें उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया है, वही एक दिन उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत होती है, और उस वक्त हम इतने व्यस्त हो चुके होते हैं कि उनके लिए दो पल बैठना भी मुश्किल लगने लगता है। फिर एक दिन जब घर में उनकी आवाज़ नहीं गूंजती, तब एहसास होता है कि जिनके लिए हम कभी पूरी दुनिया थे, अब उन्हें हम अपनी दुनिया में जगह नहीं दे पाए। तो इसीलिए दोस्तों, मैं भी आपसे कहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा वक्त ज़रूर गुजारिए, उनके पास बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ अपने दिल की बातें उनसे शेयर कीजिए, कुछ उनकी बातें भी सुनिएगा, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पेरेंट्स के पास टाइम बिताया करो, और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया से भी रियल लाइफ में, रियल्स की दुनिया से रियल लाइफ में भी आप समय बिताया करो। बहुत खूबसूरत है रियल लाइफ भी।

मीडिया से ज़्यादा बेहतर है और सुकून भी मिलता है अपनों के साथ। तो खूबसूरत गीत सुनते हैं और इस प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी एकता जी ने मंडी चौक मुरादाबाद से। अपने पेरेंट्स को ये ब्यूटीफुल ट्रैक डेडिकेट करती हैं, तो एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। और मैंने आपसे पूछा है कि 10 सब्जियों के नाम मुझे बताइए क्विकली।

क्या बात है, हमारे प्यारे श्रोताओं ने तो आज कमाल ही कर दिया। मैंने तो 10 सब्जियों के नाम मालूम किए थे, लेकिन आप लोगों ने तो पूरी सब्जी मंडी स्टूडियो में लगा दी है। मतलब इतने खूबसूरत आपने सब्जियों के नाम बताए हैं, और मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मुझे ना अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी सब्जियों के नाम आपने मुझे बताए हैं यहाँ पर, मैं इनमें क्या चुनूँ आज बनाने के लिए। एंड काफ़ी हेल्दी सब्जियाँ आपने चुनकर भेजी हैं, बहुत प्यारे प्यारे नाम यहाँ पर भेजे हैं, और उनको जल्दी से मैं शामिल कर लेती हूँ, जो जो आपने प्यारे प्यारे से मैसेज यहाँ पर पहुँचाए हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है एकता जी का, मंडी चौक से, और ये कहती हैं, मैंने आपसे पूछा था कि दोस्तों रेगुलर ना सबके माइंड में ये सवाल होता है एवरी डे ब्रेकफास्ट के बाद कि आज क्या बनेगा खाने में, सबसे मालूम किया जाता है और सब बोलते हैं कुछ भी बना लीजिए, आपकी मर्जी है। फिर जब बना लेते हैं लौकी या फिर तोरी, तो फिर बोलते हैं आपने ये क्यों बनाया, मुझे पसंद नहीं है। बच्चों के नखरे बहुत होते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी नखरे होते हैं, लेकिन हरी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए। आप उनको अलग तरीके से बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यू नो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से एक ही रेसिपी को आप कई तरह से बना सकते हैं। और एकता जी ने हमें बताया है भिंडी, लौकी, तोरी, बैंगन, आलू, टमाटर और पालक, मेथी एंड शिमला मिर्च इन्होंने भेजी है, और साथ में इन्होंने भसिंडे की सब्जी कुछ करके नाम लिखा हुआ है। ये सब्जी कौन सी है मुझे पता नहीं है मैम, आई डोंट नो, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी सब्जियां हमें बताई हैं, सब्जियों के नाम आपने मुझे बताए हैं। एंड अगला मैसेज हमारे पास किन का आया है जिन्होंने सब्जियों के नाम बताए हैं, शफी अहमद जी ने अपना जवाब हमें पहुंचाया है, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी, साथ में रईस दूल्हा अंसारी जी भी हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये कहते हैं खुशी मैम, आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है, और आपकी आवाज़, आपके शो जो आप अंदाज जिस अंदाज में आप शो को पेश करती हैं, वो स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कहते हैं कि मैम 10 सब्जियों के नाम हैं आलू, टमाटर, लौकी, और इन्होंने क्या बोला है, मूली, अच्छा, फिर इन्होंने बोला है गाजर, चुकंदर, ओके, पालक और शलगम, गोभी, एंड इन्होंने गोभी के साथ कुछ और भी मिक्स किया है, अच्छा, काशीफल, हाँ काशीफल बहुत टेस्टी लगता है, मैंने भी बनाया है, उसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक नमका भी और एक मीठा भी, है ना, दोनों ही टेस्टी लगते हैं, और उसके साथ में गर्मा गर्म पूरियाँ हो जाए काशीफल के साथ, ओए होए होए, मज़ा ही आ जाता है ना। अब आपके मन में आया होगा कि हाँ चलो आज यही बना लेते हैं, हाँ तो बनाइए और खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये कहते हैं एफएम मुरादाबाद सिर्फ एक रेडियो ही नहीं है बल्कि हर दिल की धड़कन है जैसा एहसास, आरजे खुशी सिस्टर जी, आपके बोलने का अंदाज इतना सहज, इतना अपनापन लिए होता है कि सुनने वाला खुद को उस पल में खो देता है, ऐसा लगता है जैसे हर शब्द सीधे दिल तक पहुंच रहा होता है, बिना किसी बनावटी के बिल्कुल सच्चा, आपकी आवाज़ में मिठास है, एक सुकून है जो दिल जो दिन भर की थकान को पल भर में दूर कर देता है, ऐसे ही अपने अंदाज से लिसनर्स के दिलों में जगह बनाती रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इतने प्यार के लिए। अच्छा, इन्होंने बोला है कि तालाब में पानी होता है, भसिंडी की सब्जी जिस पर कमल का फूल खिलता है, ओके, अच्छा, हाँ अभी मुझे यू नो याद आया सर, वो मार्केट में मैंने देखी है, लकड़ियों की तरह वो देखने में लगते हैं, उसको कोल भी बोलते हैं शायद, आई रिमेम्बर राइट, हमारे यहाँ पर कोल की सब्जी बोलते हैं, और वो जब कट करते हैं उसको टेस्टी लगता है, मतलब खाने में, मैंने एक बार ही खाई है उसकी सब्जी, उसको पहले बॉइल करके बनाते हैं, शायद वही है ना। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग मैम, नईमूल अकरम जी का सिरसवा दोराहा से, और साथ में इनके फैमिली मेंबर्स भी हैं जो इस समय रेडियो का आनंद ले रहे हैं। हाँ, कमल ककड़ी बोलते हैं, एग्जैक्टली राइट, ये तो हमें बताया है एकता जी ने, थैंक यू सो मच मैम। चलिए, इतने प्यारे प्यारे सब्जियों के नाम आपने बता दिए हैं,
तो आज क्या किया जाए, आपकी हर सब्जी को भिजवा दिया जाए या फिर हाँ हाँ बोलो बोलो, सब्जी हम बनाकर आपको खिलाएं। हाँ देखिए, मुझे खाना बनाना आता है पर इतना टेस्टी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप खाएंगे तो खाकर फिर आपको लगेगा। मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, बहुत लाइट खाते हैं हम लोग, ज़्यादा मिर्च वाला स्पाइसी खाना मैं नहीं खा पाती हूँ बिल्कुल भी, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं खा पाता है। तो मैं बहुत सिंपल साधारण सा खाना बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज के, और जब आप खाएंगे तो फिर आप तारीफ करेंगे या ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे क्योंकि खाना मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ। चलो बहुत सारी तारीफ़ें हो गई मेरी खुद की, अभी गाना सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं में जाइएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहो जैसे अभी आप खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे थे, बस ऐसे ही। हाँ मुझे पता है नज़र नहीं लगेगी किसी की, बाबा मुस्कुराया करो।

0: सजाना तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज

0: वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
2: जी हाँ,
3: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
0: कॉल 8826213131।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हाय एवरीवन, अगेन आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और आपके खूबसूरत संदेश यहाँ पर हमें मिले उनके लिए दिल से धन्यवाद। आप हमारे साथ कनेक्टिविटी बनाकर रखते हैं, अपना प्यार बनाए रखते हैं। दिल से हमारी तरफ से भी बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए श्रोताओं। और देखिए यहाँ पर वक्त हुआ है 11:58, कुछ और संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल करती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है लदावली से। और ये कहते हैं, आप हमको याद करना भूल गई। नहीं नहीं नहीं सो, आपको हम कैसे भूल सकते हैं, इतने प्यारे लिसनर आप हमारे हैं। और कहते हैं कि सिस्टर जी, इस टाइम खाना खा रहा हूँ मैं एंड चूल्हे की रोटियाँ, साथ में खीरे का रायता और अरबी की सब्जी। ओए होए होए, क्या बात है। और कहते हैं कि आम की खटाई, आप भी आइएगा, आपका स्वागत है। सो चूल्हे की रोटियाँ खाने का ना स्वाद ही अलग होता है, इतनी टेस्टी रोटियाँ होती हैं ना। जो इंसान एक रोटी खाना चाहेगा ना, वहाँ पर वो इंसान दो रोटी खाएगा, उसमें मिठास होती है और बहुत सॉफ्ट होती है रोटियाँ एंड अलग ही स्वाद होता है। मतलब चूल्हे की रोटी खाने का ना एक अलग ही टेस्ट होता है। और साथ में जब खेतों में बैठे हो, आम की पेड़ की छांव में ठंडी ठंडी हवाएं हो और मटकी का पानी हो, तो बात ही अलग है ना, वो सुकून मिलता है उस जगह पर जाकर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इन्वाइट किया एंड कभी अवसर मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी दीदी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं ग्राम चमोरा जिला संभल से ब्रजेश मिस्त्री जी, साथ में शीशपाल मिस्त्री जी हैं, राजेंद्र मलखान सिंह हैं और सभी लोग काम करते हुए एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड इन्होंने अपना मैसेज हमें पहुँचाया है और कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं और एक खूबसूरत गीत आप हमें सुनवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच अपना मैसेज हमें पहुंचाने के लिए। और जो भी मिस्त्री हमें सुन रहे हैं, जो भी आशियाना तैयार कर रहे हैं इस वक्त, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि इस गर्मी में आप अपना ध्यान रखिएगा। कॉटन का कपड़ा, आप गमछा अपने सर पर ज़रूर रखिए ताकि आपका जो सर है वो गर्मी से बचा रहे, राहत आपको मिले। एंड पानी भी पीते रहिए, नींबू पानी, छाछ, इन सब का आप इस्तेमाल करें। और सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। दोस्तों हमारे जाने का वक्त हो गया है, मिलेंगे आपसे हम फिर 3 से 5, सी यू सून। तब तक के लिए आप बस यूं ही अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए एंड कुछ देर के लिए मैं आपसे विदा ले रही हूँ, लेकिन आपकी बातें, आपके संदेश और आप का प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, खुश रहिए, खुशियां बांटती रहिए।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
1: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
4: वहाँ के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
3: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहते हैं कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है पर समझ का नहीं। पैफवा एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाए। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है। लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स को दी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो टीकन देवी?
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया, जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
0: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो, उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है, यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
2: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सर। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है। फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: स्वागत है साथियों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, और ये कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा शो, अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपका दोस्त RJ आनंद। आज की बात बहुत जरूरी है क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। श्रोताओं, ये एक ऐसा दिन है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी और अपने परिवार की खुशियों को खो देता है। और इस साल का संदेश भी बहुत साफ है, अनमास्किंग द अपील, यानी कि इस दिखावे को हटाना है। तंबाकू और निकोटीन कोई स्टाइल या आधुनिकता की चीज है, असल में ये एक लत है, एक बीमारी है जो खासकर हमारे नौजवानों को अपनी तरफ खींच रही है। और इसी कड़ी में बात करने के लिए एक बार फिर से हमारा साथ दे रही है टीकन देवी, यानी कि हमारी प्यारी टीकन भाभी। तो टीकन भाभी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: और मेरे प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, आज तंबाकू का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ सिगरेट तक सीमित थे, लेकिन आज नए नए रूप आ गए हैं। ई सिगरेट, फ्लेवर्ड, निकोटीन पाउच, ये सब ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे ये सुरक्षित हो, आधुनिक हो, लेकिन सच्चाई ये है सब एक ही चीज है, लत लगने के तरीके। और सबसे दुखद बात तो ये है कि ये खासकर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रहे हैं,
0: जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किसकी तरफ जा रहा है।
1: बिल्कुल यही सच्चाई है, कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती है जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई कर लो, दोस्तों के साथ मजा आएगा, स्टाइलिश लगेगा, लेकिन असल में वही से लत लगनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शरीर निकोटीन की आदत हो जाती है और ये सिर्फ चॉइस नहीं रह जाती है, ये एक जरूरत बन जाती है। इंसान चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता और कोशिश और शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं।
0: ठीक है भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है, क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुनते हैं?
1: हाँ भैया, भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है। करीब हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसे स्मोकर्स और सस्ते तंबाकू उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए ये संख्या कितनी बड़ी है, और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हैं जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वो भी शामिल हैं जो दूसरों के धुएं के संपर्क में आ जाते हैं।
0: मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बच नहीं पाते।
1: इसे हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तंबाकू लेता है तो उसका असर काफी बाकी सभी लोगों पर भी पड़ता है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारी बढ़ जाती है, बार बार खांसी जुखाम होता है। महिलाओं में कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान गंभीर समस्याएं हो सकती है, यानी व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भी भारी पड़ सकती है।
0: भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक गलतफहमी है?
1: नहीं, ये पूरी तरह से एक भ्रम है और बहुत खतरनाक भ्रम है। तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट। हर रूप शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों की खराबी, ये सब सीधे सीधे तंबाकू से जुड़े हुए होते हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी कमजोर कर देता है।
0: मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी जड़ है जिसमें कई खतरनाक बीमारियां निकलती हैं और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करती हैं।
1: बिल्कुल भैया, और यही वजह है कि इसे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियों और सेहत को बचाने का फैसला होता है। इसीलिए आज नहीं तो कल, लेकिन ये कदम उठाना ही होगा।
0: चिकन भाभी, कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक किसी की मतलब असली कहानी से ना जुड़े। ऐसा होता है ना कि जब तक कोई कहानी उनके सामने ना आ जाए तब तक उन्हें वो चीज समझ नहीं आती। क्या आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें और हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे?
1: हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ हमारे ही इलाके के एक आदमी की। उनका नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर थे। सुबह से शाम तक काम करते थे, परिवार चलाते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले उन्होंने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। ऐसे धीरे धीरे एक दिन में 2 बीड़ी पीने से लेकर 10-12 बीड़ी पीने तक पहुँच गयी। उसकी पत्नी अक्सर उन्हें समझाती, ये मत पियो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन रमेश हंसकर टाल दिया करते थे, कुछ नहीं होता, मेरे बाप दादा भी पीते थे। समय बीतता गया और एक दिन रमेश को खांसी शुरू हो गई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और काम करने में मुश्किल होने लगी। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। जांच में पता चला कि उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे और शुरुआती टीवी भी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अभी भी नहीं रुके तो हालात और बढ़ जाएंगे। उस दिन पहली बार रमेश डर गया था। उसने अपने बच्चों को देखा, अपनी पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर बार बार निकोटीन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ दिनों बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूल में जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं और कहते हैं, जो शुरुआत में मजाक लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाता है।
0: सच में भाभी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे उसे वापस भी ला सकता है।
1: बिल्कुल, और यही संदेश हमें सब तक पहुँचाना है।
0: तो भाभी, अगर कोई व्यक्ति सच में ये ठान ले कि उसे आपको छोड़ना है लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो वो क्या करे? क्योंकि कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं।
1: देखिए, सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना, अपने मन में ये ठान लेना कि आज के बाद नहीं। जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर की कोई भी सलाह काम नहीं करेगी। उसके बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीज हटा दें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वो चीज सामने दिखती है उतना ही मन डगमगाएगा। इसके साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को भी बताइए कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ सकें, आपको रोक सकें। जब आपका मन डगमगाए, आगे आगे अगर जरूरत महसूस हो, डॉक्टर या काउंसलिंग की मदद लेना बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकार की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है, जहां मुफ्त में सलाह मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं। बीच बीच में मन करेगा, मन बेचैन होगा, लेकिन अगर हर दिन खुद को संभालते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आदत कमजोर पड़ जाएगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी।
0: भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है? क्योंकि कई बार परिवार या तो बहुत डांटता है या फिर ध्यान ही नहीं देता है।
1: परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है आरजे आनंद। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांटने या ताना देने से इंसान और कमजोर पड़ जाता है। इसके बजाय उसे समझाइए, उसका हौसला बढ़ाइए, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें, घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो सकता है।
0: सच में बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी। साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, तंबाकू कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। बस एक मजबूत इरादा और सही सहारे की जरूरत है, और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना बहुत जरूरी है।
1: याद रखिए, लत से आज़ादी ही असली आज़ादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी जिंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसलिए आज ही सोचिए और पहला कदम उठाइए, तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक कहानी साझा करना चाहूँगी जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके। देखिए, ये कहानी है हमारे ही पास के एक गांव के रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण सा आदमी था, छोटा सा खेत, पत्नी और दो बच्चे। मेहनती था, जिम्मेदार था। एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी, खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे ये आदत रोज की जरूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती थी, बच्चे भी कहते थे बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही था, कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हुई, फिर एक छोटा सा घाव बना जो भरता ही नहीं था। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ गए। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ, और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया मुंह का कैंसर। ये सुनकर जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज बदल गई और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। अपने बच्चे, अपने पिता को उस हालत में देखकर डर जाते थे। जो आदमी कभी उनके लिए ताकत का सहारा था, वही अब खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्च बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ उसकी सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। और आरजे आनंद, सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था, काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है, सेहत, पैसा, परिवार की खुशियाँ, सब कुछ। इसलिए जो आज फैसला ले सकते हैं वो कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उनका असर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है।
0: सच कहूँ टीकन भाभी, ऐसी कहानियाँ सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगियाँ हैं, असली परिवार है और एक ऐसा दर्द जिनकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बताकर नहीं आती।
1: बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है कि हम डरकर नहीं समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं, छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते तो कभी शुरुआत मत कीजिए। साथ ही अपने बच्चों और युवाओं को भी समझाइए कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं बल्कि उसे दूर रहने में है।
0: और साथियों, याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज का होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों की खुशियां और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश, ना स्टाइल में ना ट्रेंड में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में। तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले एक बार फिर हम मिलकर यही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कहीं। तो दोस्तों, मैं था आपका दोस्त आरजे आनंद, अभी लेता हूँ आपसे इजाजत इस प्रोग्राम से। बस जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, यानी कि सेहत सही लाभ कहीं में, एक और नए

0: NICU, ICU, high BP, sugar, heart, kidney, problem वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और मेरा नाम आनंद है और प्रोग्राम है खेती किसानी। आज हम बात करेंगे, अब किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी किसान भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या जो किसानी खेती किसानी नहीं भी करते हैं, आज उनके लिए भी बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस प्रोग्राम के जरिए। तो आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा क्योंकि आज आपको तमाम सारी जानकारियां मिलेंगी। और मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई ऐसा एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में जरूर होना चाहिए जिससे हम ढेर सारी बातचीत करें, कोई तो ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए जिनसे हम अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकें। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं जो हमारे किसान भाई लगातार हमें संदेश पहुंचाते हैं। तो आज हमने आपके सवालों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही खास मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं श्रोताओं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पिराई त्र 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद में गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमने डॉक्टर विनय कुमार सिंह को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद सर।
1: जी सर, मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को आप एक बारी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं।
2: जी बिल्कुल सर, आपके FM मुरादाबाद के समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम और सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला से हूँ। और मैं बेसिकली आज किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज चर्चा करने के लिए आपके स्टूडियो में मौजूद हूँ। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया और अपने स्टूडियो में बोलने का मौका दिया। आज का, जैसे कि आपने अभी विषय में जो है चर्चा किया है कि आज का हमारा विषय क्या है, तो गन्ना सर्वेक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश में और पूरे देश में हालांकि चलता है जहां जहां गन्ना उत्पादक होता है।
1: जी जी।
2: तो गन्ना सर्वेक्षण जो है क्यों जरूरी है और इसमें किसानों की क्या भूमिका है, इस विषय के ऊपर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे।
1: क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जो है बारे में हमारे श्रोताओं को बताया, थैंक यू सो मच। और आपने हमारे टॉपिक का भी जिक्र कर दिया इसी में, जैसे कि आपने कहा कि आज हम गन्ना सर्वेक्षण क्या है इसके विषय में तमाम सारी बातचीत करेंगे। तो श्रोता साथी जितने भी हमें सुन रहे हैं, जो भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए, आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 1 मई से 30 जून तक चल रहा है ना सर?
2: जी जी जी बिल्कुल।
1: तो सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि गन्ना सर्वेक्षण आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे लिसनर्स को बताएं।
2: जी बिल्कुल, किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी होता
1: जी,
2: है
1: जी
2: जी। गन्ना सर्वेक्षण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है
1: जी सर,
2: जिसके माध्यम से किसानों को खेत में बोए गए जितना भी क्षेत्रफल होता है उसकी किस्म क्या लगाई हुई है और फसल की स्थिति क्या है, उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हर वर्ष किया जाता है। यह कार्य गन्ना विभाग और चीनी मिल दोनों के तत्वाधान में किया जाता है ताकि किसानों को सही पर्ची, समय पर पर्ची, भुगतान और अन्य सुविधाएं आदि सभी चीजें मिल सकें। ये है हमारा गन्ना सर्वेक्षण का उद्देश्य।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है चर्चा करी विस्तार से। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि गन्ना सर्वेक्षण किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
2: जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा पॉइंट, क्योंकि सही सर्वेक्षण से किसानों का वास्तविक गन्ना क्षेत्र दर्ज होता है
1: जी,
2: जिसे उन्हें समय पर गन्ना पर्ची मिलती है और डाले गए या कह सकते हैं कि आपूर्ति किए हुए गन्ने का उचित मूल्य उनको मिलता है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। गलत सर्वेक्षण से किसान का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
1: अच्छा सर, किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो आपको लगता है कि छोटी छोटी सावधानियां अक्सर किसान भाई भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो क्या रखनी चाहिए?
2: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाई जो है सर्वेक्षण के समय बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करवाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आधारशिला अगर है तो हमारा सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण अगर गलत हो जाएगा तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कुछ जो है सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला है हमारा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें, जैसे वो लोग क्या करते हैं कि स्वयं ना होकर के किसी को भेज देते हैं कि आप चले जाइए, जिसको उस गन्ने

0: की किस्म, उस गन्ने की जो है कितना क्षेत्रफल है इत्यादि जो है जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में वो गलत सूचनाएं वहां पे दर्ज करा देते हैं, जिसका उनको नुकसान आगे चल करके उठाना पड़ता है। तो मेरा अपील ये रहेगा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें और दूसरा है गन्ने का सही क्षेत्रफल बताएं। हालांकि वो सर्वे अपने आप ही करते हैं, एक्चुअल जितना भी उनका एरिया आएगा वो उनको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसी जानकारी वो मांगते हैं तो क्षेत्रफल ना सही बताएं। और तीसरा है हमारा गन्ने की सही किस्म एवं बुआई की जानकारी अवश्य दें, क्योंकि गन्ना अभी हमारा बढ़वार के समय पे है। गन्ने की जो आइडेंटिफिकेशन होती है तो उनके कई सारे चरण होते हैं, कुछ की पौध पे निर्भर करती है, कुछ की उसके गन्ने की रंग पे निर्भर करता है, कुछ उसकी गांठों से उसकी जो है पहचान होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनको पहचानना अभी इस समय पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो जो भी किस्म आपने बोई हुई है तो वो सटीक और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। और अगला पॉइंट हमारा है कि किसी भी गलती को तुरंत जो है संबंधित अधिकारी को अवश्य बताएं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने अधिकारी को जो वहां पे मौजूद है सर्वेक्षण के समय, तो उसको आप अवश्य बताएं। सर्वेक्षण होने के उपरांत रिकॉर्ड की जांच अवश्य करें। जितना भी रिकॉर्ड आपको स्लिप मिलता है स्लिप में एक बार चेक कर लें। अगर उसमें कोई भी आपको त्रुटि लग रही है जिसमें या संशोधन की आवश्यकता है तो उस चीज का आप जांच करें और तुरंत संबंधित अधिकारी या कार्यालय में संपर्क करके उसको संशोधित अवश्य कराएं।
1: किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे थे अभी। बहुत अच्छे से डॉक्टर विनय कुमार जी ने इस पे चर्चा करी। सर, अगर मैं आपसे वहीं दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ूं, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि गन्ना सर्वेक्षण की पर्ची वितरण से क्या संबंध है, इसके विषय में अगर थोड़ा आप बताएं तो।
0: जी बिल्कुल, देखिए आधारशिला हमारा सर्वेक्षण होता है
1: जी।
0: गन्ना पर्ची सर्वेक्षण के आधार पर ही जारी होती है। यदि सर्वेक्षण सही होगा तो किसान को उसकी उपज के अनुसार समय पर पर्ची प्राप्त होगी। गलत सर्वेक्षण से पर्ची कम या देरी से मिल सकती है, जिससे किसान भाई को आगामी गन्ना आपूर्ति बाधित हो सकती है
1: जी। ओके, गन्ना सर्वेक्षण में किसानों की भूमिका क्या रहती है सर, क्या है मतलब सबसे ज्यादा उनकी भूमिका?
0: जी बिल्कुल, देखिए किसानों की सक्रिय भागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है
1: जी।
0: किसान सही जानकारी देकर सर्वेक्षण टीम का सहयोग करके तथा रिकॉर्ड की पुष्टि करके पूरी प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। एक जागरूक और सफल गन्ना उत्पादक किसान सर्वेक्षण के दौरान गहनता से और बड़ी ही सूझबूझ से कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है उसकी आगामी गन्ना आपूर्ति इसी सर्वेक्षण पर निर्भर करती है। तो सर्वेक्षण में किसानों की अहम और बहुत ही सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों पर जो है हमारे साथ बातचीत करी और आगे भी हम आपसे करते रहेंगे। एक सवाल है, आधुनिक तकनीकी से गन्ना सर्वेक्षण में क्या लाभ हो रहा है, इस विषय में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को।
0: जी बिल्कुल, देखिए आधुनिकता दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जा रही है और जैसे कि डिजिटल इंडिया हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है और सभी लोग फॉलो भी कर रहे हैं और हमारा देश अग्रसर भी है डिजिटल इंडिया की।
1: जी जी जी,
0: आजकल क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, डिजिटल प्रणालियां फॉलो हो रही हैं, तो हर क्षेत्र में एक जो है एक क्रांति सी आई है जब से ये डिजिटल इंडिया चला है। तो इस गन्ना सर्वेक्षण में भी आजकल मोबाइल ऐप और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षण हो रहा है, जो कि अधिक पारदर्शी है, सुगम है और तेज है। इससे गलतियों की संभावना कम होती है तथा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हमारा क्या है कि जैसे कि अभी जानकारी के अनुसार जैसे सभी लोग पहले क्या होता था कि पर्चियां कार्यालय में जाके पूछते थे कब आएगी और कब हमारा भुगतान आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है गन्ना विभाग ने एक ई गन्ना ऐप लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी आप जो है ई गन्ना ऐप से उपलब्ध रहती है। इस ई गन्ना ऐप में किसान भाई अपनी कुल सर्वे जो कि उनका सर्वेक्षण हुआ है, तो कुल कितना सर्वेक्षण हुआ है इसकी भी जानकारी मिल सकती है, कितने उनके सर्वेक्षण में प्लॉट शामिल हुए हैं उसकी भी जानकारी रहती है और प्रत्येक प्लॉट का एरिया कितना है वो भी उनको पता चल जाता है। कुल पर्चियां उनकी कितनी बनी है, उनका बेसी कोटा क्या है, बेसी कोटा असल में पिछले 5 वर्षों की आपूर्ति के आधार पे बनता है। इसमें रेशियो रहता है पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड, फिर पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड, और फिर पिछले 5 वर्षों का, इनमें से जो भी वैसी कोटा टोटल आपूर्ति जोड़ी जाती है, फिर उनको जितने ही भी वर्ष होते हैं, जैसे 2 साल है तो 2 से डिवाइड करना, 3 साल का लिया तो 3 साल से डिवाइड करना, और अगर 5 साल का लिया है तो 5 से डिवाइड करना। इनमें से जो भी जैसे मात्रा में ज्यादा होगा, जितने कुंटल उसमें ज्यादा होगा, तो उसी को ही बेस मान करके उनकी पर्चियां बनाई जाती हैं। तो इसमें बेसी कोटा की भी जानकारी मिल जाती है, कुल सप्लाई पिछले 5 वर्षों की, ये भी किसान भाई अपने आप स्वयं में ही ई गन्ना ऐप पे देख सकते हैं। तो इत्यादि जो है अनेकों प्रकार की जानकारी हमारी ई गन्ना ऐप में मिल जाती है, जिसमें उनको भुगतान, आपूर्ति और जो है सारी किस किस डेट पे निकली है, अगर उन्होंने कोई पर्ची नहीं लगा पाए, गन्ने की छिलाई किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो वो अगर उनकी मिस हो जाती है पर्ची, तो उसकी भी जानकारी उनको मिलती रहती है। तो ई गन्ना ऐप बहुत ही सुगम और आसान और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हमारे लिए यूजफुल होता है, किसान भाइयों के लिए भी।
1: जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, यदि किसी किसान की फसल सर्वेक्षण में छूट जाए तो वो क्या करना चाहिए, वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में?
0: जी बिल्कुल, देखिए अहम मुद्दा है
1: जी।
0: ऐसी स्थिति में किसान तुरंत अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग
1: जी
0: अथवा संबंधित चीनी मिल कार्यालय में संपर्क करें तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके संशोधन करवा सकते हैं। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के उपरांत कृषकों को एक स्लिप, जिसको कच्चा कैलेंडर भी कह सकते हैं, ये अत्यधि उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसमें उनको प्रत्येक जो है कह सकते हैं कि प्लॉट का जिक्र उसमें रहता है, एरिया कितना है, किस्म क्या लगाई है, तो सब कुछ उसमें रहता है। यदि किसी किसान भाई का कोई प्लॉट छूट जाता है अथवा गन्ना प्रजाति का चयन गलत हो जाता है आदि का संशोधन 15 कार्य दिवस के अंदर अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग में संपर्क करके उसको करा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, गन्ना सर्वेक्षण का चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में थोड़ा बताएं।
0: जी बिल्कुल, देखिए गन्ना सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सही सर्वेक्षण से चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता का सही अनुमान लगता है, क्योंकि उनके पास में क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, कई सारे गाँव रहते हैं, कई सारी गन्ना समितियाँ होती है, उन समितियों में कई सारे किसान होते हैं, तो क्षेत्र में कितनी गन्ने की उपलब्धता होती है इससे उनको अनुमान मिल जाता है। दूसरा चीज है गन्ने की पर्चियों का निर्धारण और पर्चियों को जारी करना यानी कि निर्गत करने की योजना वो आसानी से बना सकते हैं, जिससे मिल संचालन और उत्पादन योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है।
1: जी बहुत ही बढ़िया। श्रोताओं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खेती किसानी और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विनय जी मौजूद हैं स्टूडियो में और आज हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं गन्ने के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पेराई सत्र 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल, गन्ना सर्वेक्षण में सामान्य गलतियां कौन कौन सी होती हैं, इस पर अगर हम एक नजर डालें तो?
0: जी बिल्कुल, देखिए सावधानी ही हमारी जो है जागरूकता की ओर अग्रसर करती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: देखिए अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो गलतियों की संभावना नहीं रहेगी।
1: जी
0: इसमें अगर फिर भी अगर सामान्य गलतियां कौन कौन सी अक्सर किसान कर देते हैं तो उनका हम जिक्र करेंगे। जैसे पहला गलत क्षेत्रफल दर्ज हो जाना।
1: जी जी।
0: दूसरा है हमारा गलत किस्म दर्ज हो जाना या गलत किस्म उन्होंने उसमें दर्ज कर लिया है।
1: जी जी।
0: तीसरा हमारा है फसल छूट जाना, जैसे फसल का मतलब यहाँ पे है हमारा कि जैसे कोई फसल लगी हुई है और उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया है तो वो प्लाट छूट जाता है, तो प्लाट आप ऐड करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह सकते हैं कि फसल प्रकार, जैसे कि कोई किसान है उसके यहाँ पेड़ी है तो पेड़ी की जगह पे पौधा हो गया है, या पौधा है पौधे में भी जो है कैटेगरीज होती हैं, एक शरदकालीन होता है जिसको ऑटम प्लांटिंग कहते हैं और एक वसंतकालीन पौधा होता है जिसको हम लोग स्प्रिंग प्लांटिंग कहते हैं।
1: जी।
0: तो जैसे पौधा है किसान ने बोया हुआ है शरदकालीन, जिसकी पर्चियां जो है अमूनता चीनी मिल पहले जो है निर्गत करती है, लेकिन अगर धोखे से वो वसंतकालीन हो जाएगा तो किसानों को वो पर्ची विलंब से मिलेगी, तो इससे किसानों को दिक्कत हो सकती है और उनका जो है प्लॉट देरी से उसकी सप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या गलती होती है, जैसे किसान द्वारा जैसे सही जानकारी नहीं देना, जैसे जो भी उनसे पूछा जाता है तो वो अगर सही और सटीक जानकारी नहीं देंगे तो उसमें भी जो है गलतियां हो सकती हैं। और अगला हमारा जो है सामान्यतः गलती कौन सी करते हैं, जैसे रिकॉर्ड की जांच नहीं करना, जैसे उनको स्लिप मिलता है, उन्होंने सर्वे करवा दिया स्लिप लेकर के अपने घर पे रख लिया,
1: हाँ जी।
0: वो गलत है। आप स्लिप लीजिए, उसको आप पढ़िए। आप नहीं अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपका घर में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आप उसके माध्यम से अपने रिकॉर्ड की जो है जांच अवश्य करें, ताकि आपका कोई प्लॉट तो नहीं छूटा। प्लॉट छूटा तो किसी उस पर्टिकुलर प्लॉट का कोई हमारा जो है क्षेत्रफल कम या ज्यादा तो नहीं हुआ, या गन्ने की प्रजाति गलत तो नहीं हुई, या गन्ने की किस्म पेड़ी अथवा पौधा या पौधे से पेड़ी ये तो नहीं हो गया। तो इत्यादि तरीके की ये गलतियां मुमता होती हैं। इनको विशेषतः किसानों को ध्यान में रख करके अपना जो है ये सर्वेक्षण कार्य पूरा कराना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमारा विषय था गन्ना सर्वेक्षण का महत्व एवं किसानों की भूमिका, और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर विनय कुमार साहब से। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, जो भी किसान भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको तमाम जानकारियां जो आपके द्वारा दी गई हैं वो उनको जरूर काम में आएंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है आरजे आनंद और एफएम मुरादाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, प्रोग्राम है खेती किसानी। डॉक्टर साहब, तमाम चर्चाएं हमने कर ली आपके साथ मिलकर गन्ने के ऊपर, अब मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा जो हमारे तमाम श्रोता साथी किसान भाई आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जाते जाते इस प्रोग्राम में?
0: जी बिल्कुल, देखिए आपने जैसे ही शुरुआत में आपने जिक्र किया था गन्ना सर्वेक्षण के ऊपर,
1: जी जी,
0: तो अपने जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक जनपद में, जो कि हर बार हर साल होता है, ऐसे ही इस साल भी जो हमारा आगामी गन्ना पेराई सत्र है, यानी कि जो आगे आने वाला पेराई सत्र है 2026-27, इसके लिए गन्ने का सर्वेक्षण का कार्य अभी से प्रारंभ हो गया है, जो कि 1 मई से 30 जून तक होना सुनिश्चित हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे 1 मई से 30 जून तक होता है, इसमें अभी क्या है टेम्परेचर ज्यादा है, धूप तेज है, तो अमूमतः क्या है कि कृषि विभाग और ये चीनी मिल दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये धूप की वजह से ये प्रातःकाल जो है अतिशीघ्र कह सकते हैं कि जल्दी सुबह इसको जो है किया जाता है, ताकि धूप से बचा जा सके, और बचना भी जरूरी है। तो देखिए ये कार्यक्रम हमारा 1 मई से 30 जून 2026 तक चलेगा
1: जी।
0: प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है, यानी कि प्रत्येक जिले में समितियां होती हैं, गन्ना समितियां, किसान भाई सभी लोग जानते होंगे, तो प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है, और प्रत्येक समिति में गन्ना पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, इन काम को बहुत ही जो है लगन से कर रहे हैं इतनी धूप और इसकी वजह से। लेकिन फिर भी क्या है कि जो है गलतियां वगैरह होती रहती हैं, तो इन सभी चीजों को हम लोगों को अच्छी तरीके से करना है, और दूसरा क्या है कि अपने क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क बना के रखना है। जो भी किसान भाई हैं, क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक प्रत्येक गांव के होते हैं, उनसे संपर्क में रहना है। सभी किसान भाई गन्ना सर्वेक्षण को गंभीरता से लें। प्रत्येक गन्ना समिति में अनेक गांव होते हैं, तथा प्रत्येक गांव में अनेकों किसान भी होते हैं, अतः जिस दिन आपके गांव में सर्वे का कार्य हो रहा हो, तो आप सभी किसान भाई अपने प्लाट पर स्वयं उपस्थित हों, किसी और को ना भेज करके स्वयं उपस्थित हों, ताकि आप सही उनको जानकारी दें, सही सर्वेक्षण ही, समय पर पर्ची, उचित भुगतान और किसान हितों की सुरक्षा का आधार होता है।
1: डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको तमाम जानकारियां मिली हैं आपके द्वारा, और मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और तमाम चर्चा आपने करी, इतनी खूबसूरती के साथ आपने जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतना समय हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में आते रहें।
0: जी बिल्कुल
1: जी सर, कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है आप कहना चाह रहे हैं हमारे किसान भाइयों से?
0: देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि सही गन्ना सर्वेक्षण न केवल किसान की आय को सुरक्षित करता है,
1: जी बिल्कुल,
0: बल्कि चीनी उद्योग एवं कृषि व्यवस्था को भी मजबूत बनाता है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: इसलिए सभी किसान भाई सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण सहयोग करें एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, ताकि आपकी पर्चियों की कैलेंडरिंग सही से हो सके और आपकी आपूर्ति सुचारू रूप से चल सके। आपकी आपूर्ति ही आपकी आय का आधार होती है।
1: सर आपने ये जो लास्ट में बात बताई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी,
0: ये जो है क्योंकि आपकी जो भी आपूर्ति रहेगी यही आपकी आय का आधार है। आपकी पर्चियां, आपका खेत, आपका गन्ना कितना भी हो, अगर समय पर पर्ची आपको नहीं मिलेगी तो आपकी आपूर्ति बाधित होगी, क्योंकि आपूर्ति अगर आपकी बाधित हो जाएगी तो आपको भुगतान भी बाधित ही मिलेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसान भाइयों थैंक यू सो मच, आपने भी इसको बहुत ध्यान से सुना है, मुझे पता है आपको भी बहुत जानकारियां मिली होंगी। तो ऐसी जानकारियों से भरे प्रोग्राम्स आपके लिए आते रहेंगे, आप बस ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जहां बातें वही होती जो आपका दिल चाहता है। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा हमारे ऑफिस में आके हमारे साथ ये संवाद करके, बातचीत करके, वार्ता करके?
0: जी बिल्कुल, देखिए आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया
1: जी,
0: मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह अपनी तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपके स्टूडियो की भी तरफ से समस्त श्रोतागणों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों से जुड़ने का एक अवसर हमको मिला
1: जी।
0: और इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने यहाँ पे अवसर के लिए मुझे आमंत्रित किया है।
1: सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको रेडियो में आके, पहली बार आए?
0: जी नहीं, मैं जो है AIR
1: आकाशवाणी में जाते रहते हूँ
0: जी, आकाशवाणी कोटा में मैंने एक दो बार मैंने
1: प्रोग्राम्स किए
0: जी, प्रोग्राम किए हैं खेती किसानी से संबंधित। हाँ, आपके स्टूडियो में मैं
1: पहली बार मुरादाबाद में पहली
0: जी,
1: बार।
0: जी,
1: मुरादा। अच्छा तो आप मुरादाबाद से हैं सर?
0: जी नहीं जी, मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी जी, उत्तर प्रदेश से ही।
1: ओके,
0: बट अभी मैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कृषि विभाग में अभी जो कार्यरत हूँ।
1: क्या बात है सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा सर, और थोड़ा सा आपके बारे में जान लिया मैंने, क्योंकि वो जब हम बातचीत करते हैं तो संवाद के दौरान हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा जो है ना वो झलकती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आपकी लैंग्वेज में वो लग रहा था मुझे कि आप थोड़ा सा उस साइड से ही बिलोंग करते हैं शायद। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे आप दोबारा भी जरूर आएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमें अवसर देंगे तो जरूर
1: सर, जरूर, अरे जरूर सर, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ और नए खास मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।

0: आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं, अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
6: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
5: थैंक यू सर,
6: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
5: वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
6: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
5: क्या बात है।
6: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
5: जी जी, प्लीज।
6: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
5: ब्यूटीफुल।
6: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
5: वाओ।
6: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
5: क्या बात है।
6: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
5: जी,
6: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
5: हाँ जी।
6: इसमें हम

0: बर्थ से वन मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 इयर्स।
1: हाँ जी,
0: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
1: Alright.
0: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
1: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है,
0: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं, कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
1: जी, जी,
0: जी। ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
1: ओके।
0: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवरली, इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं, हाँ जी,
0: उनको नहीं पता
1: नहीं
0: होता
1: पता
0: है
1: होता
0: वो क्या
1: है।
0: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरी एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके।
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदद अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं, तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
1: बहुत ही बढ़िया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ, तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोस ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है, तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है। कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है। मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक
1: जी,
0: है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो। डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहनाने हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg मतलब 1.5-2 kg इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 kg या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप एक क्या संदेश जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत,
1: हाँ जी,
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को मानें।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 94122।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी,
9: नई सुबह की नई कहानी,
10: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद। और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन? मेरी प्यारी दोस्त
11: आरजे रीना।
10: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
11: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
10: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
11: दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात स्वाद बदल जाते हैं।
10: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
11: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
10: दोस्तों इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
11: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
10: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए आखिर यह योजना कैसे काम करेगी।
11: जरूर, देखिए दोस्तों इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
10: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
11: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
10: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
11: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
10: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
11: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
10: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
11: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
10: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो ये भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
11: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
10: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
11: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
10: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
11: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
10: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों,
11: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
10: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
11: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
10: दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गाँव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
11: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है, यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
10: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
11: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करें, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें और कैसे ब्रांडिंग करें और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाएं।
10: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
11: बिल्कुल, कल्पना कीजिए, किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाइयां, स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
10: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
11: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
10: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी,
11: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
10: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
11: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
10: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
11: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
10: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
11: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद
4: 1,000 करोड़ रुपए से अधिक
11: मंच तक पहुंचाने
4: में पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमरीका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
12: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
13: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने

0: सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
3: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
5: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
7: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मनीषा बोस। सत श्री अकाल और सभी लिसनर्स का स्वागत करती हूं कार्यक्रम में, क्योंकि आज का सफर तय होगा आप सभी का मेरे साथ। तो साथियों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हम बात करेंगे एक नहीं दो कलाकारों की, एक सुरों की सादगी से ढली हुई उस आवाज की जिन्होंने अपनी सादगी भरी सुरीली आवाज से हिंदी सिनेमा को आबाद किया, और दूसरी वो कलाकार जिन्होंने अपनी सादगी और सजीव अभिनय से हिंदी सिनेमा को 4 चांद लगाए। लेकिन पहले बात उनकी जिनकी आवाज ने भारतीय सिनेमा को सुरीली पहचान दी और जो कल 31 मई 2026 को ही हमसे विदा ले गईं। हम उन्हें अपनी पूरी टीम की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: एक नए इतिहास के।
7: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा।
8: और क्या, हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी, अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
7: अच्छा
8: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
7: अरे वाह,
8: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
7: शुक्र है डबल इंजन सरकार है।
6: विश्वास के, एक नए इतिहास के।
9: आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। सो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए शो महिला मंच, जहाँ हम बात करने वाले हैं बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ के बारे में। तो श्रोताओ, हमारे समाज में ना लंबे समय तक बेटियों को बोझ समझा जा रहा था। कई परिवारों में बेटी को जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। इसी सोच के साथ शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका अभियान सीधा एक संदेश देता है, बेटी को बचाना जरूरी है और उसे पढ़ाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तभी सब परिवार आगे बढ़ता है और समाज मजबूत बनता है। और कहते हैं ना श्रोताओं, जब बेटी शिक्षित होती है तो वो सिर्फ एक परिवार को रोशन नहीं करती है, बल्कि वो तीन पीढ़ी को रोशन करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तीन पीढ़ी को कैसे रोशन करती है। तो पहले तो अपने माता पिता का घर, दूसरा ससुराल, तीसरा अपने बच्चों को वो खुद पढ़ा सकती है। तो देखा, बेटी एक परिवार को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ियों को रोशन करती है। तो इसीलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। और बेटियों के प्रति ना हमारा सोच हमें बदलना होगा, हमें उनका साथ देना होगा, बल्कि उन्हें गिराना नहीं होगा, डिमोटिवेट नहीं करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना है ताकि वो आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर चले और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। सो यूं ही ढेर सारी आज हम बेटियों के ऊपर बात करते रहेंगे। बस आप आरजरीना के साथ महिला मंच में यूं ही कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार और कनेक्ट हो गई हूँ आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि कुछ साल पहले देश के कई राज्यों में लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। इसका मुख्य कारण था लड़कियों के जन्म को महत्व ना देना। कई जगहों पर बेटियों को पढ़ाई का मौका भी नहीं दिया जाता था। यही वजह कि सरकार को एक ऐसा अभियान शुरू करना पड़ा जो लोगों की सोच बदल सके। इस अभियान का मकसद था बेटी को जन्म देने का अधिकार, बेटियों को शिक्षा देना और समाज में बेटियों को बराबरी का सम्मान देना। पहले के टाइम में होता था कि जैसे बेटी जन्म होती थी ना, उसको वहीं पर मार दिया जाता था। कानो कान किसी को खबर भी नहीं होने दिया जाता था। ये कहा जाता था कि ये हमारे लिए बोझ है, हमारे लिए खर्चा बनाएगी, यानी कि पहले हम इसको पालेंगे, फिर ये बड़ी होगी, फिर शादी में खर्चा। तो बहुत सी ऐसी सोच थी जो लड़कियों को हम आगे नहीं बढ़ने देते थे, बल्कि उनके जन्म पर ही उनकी जिंदगी हम छीन लेते थे। लेकिन ये जैसे जैसे सरकार ने इनिशिएटिव चलाया, हम सबकी सोच बदली और आज यही दिन है कि लड़कियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सो ढेर सारी बातें हम आप सभी के साथ करते रहेंगे। बस आप यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। जब समाज की सोच बदलेगी तभी असली बदलाव आएगा। आज रीना के साथ आप कनेक्ट हैं महिला मंच शो में और यूं ही हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, सुनना बिल्कुल ना भूले अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में बेटियां ही नहीं होती तो क्या होता? ना घर में बहन की हंसी होगी, ना माँ की ममता, ना राखी का त्योहार होगा। बेटियां सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होती बल्कि पूरे समाज की ताकत होती हैं। जब बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खेल, पढ़ाई, सेना, विज्ञान, हर जगह अब बेटियां आगे बढ़ रही है। बस जरूरत है उन्हें सही मौका देने का, और जब मौका मिलता है तो बेटियां दुनिया जीत लेती है। तो दोस्तों याद रखिए, बेटी बोझ नहीं, बेटी गर्व है। और सुनते रहिए एक और शानदार गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे हम, और हमारी देश की बेटियों के लिए गाना है। सो यू ही आज रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी

और किसी ने सच ही कहा है, जब बेटियां होती है तभी घर में रौनक होती है। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और सच ना है कि अगर बेटियां नहीं होती, और सच तो ये है कि अगर बेटियां नहीं होती तो ये समाज आगे नहीं बढ़ता। कहते हैं ना, जिस कोख से हम जन्म लेते हैं उसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसी को जन्म लेने के लिए मना करते हैं। आखिरकार बेटियां जननी होती हैं, जिसने इस दुनिया को रचाया आज उसी को जीने का और उसी से जीने का अधिकार आज हम छीन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जननी है उसको जीने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहन, बेटी, माँ, मित्र है आप सभी के लिए, जो घर को स्वर्ग बना देती है। और जब वो घर में होती है ना तो घर का रौनक ही अलग होता है। आपने देखा होगा ना कि हम बचपन में जब भी स्कूल से घर आते थे तो सबसे पहले हमारे मन में ना एक ही ख्याल आता था, माँ। माँ कहाँ है? अगर आपको पूरे घर में माँ की झलक ना दिखे तो पूरा घर को ना हम सर पर उठा लेते थे। तो सोचिए, जब माँ घर पर नहीं दिखती है तो हम पूरा घर को सर पर उठा लेते हैं, और उसी जननी को हम जन्म देने से डरते हैं। तो डरिए मत, बेटी है, जननी है, माता है, और जब जननी आगे बढ़ती है तो हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। सो और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ, बस बने रहिए आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आर्जेरीना के साथ।

जब एक बेटी पढ़ती है तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे शिक्षा देती है और समाज को आगे बढ़ाती है। इसीलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बेटी को जरूर पढ़ाए और उन्हें आगे जरूर भेजे, उनका साथ दे। और आप भी मेरे साथ यूं ही बने रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आरजे रीना के साथ।

आपके साथ आपकी आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओ, अब हम बात करने वाले हैं, जिस बेटी को हम पढ़ने से मना करते थे, वही बेटी आज पढ़कर हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। वही बेटियां आज डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पुलिस ऑफिसर बन रही हैं। समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। आज कई परिवार बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनके सपनों को उड़ान देते हैं। यही बदलाव हमें आगे भी जारी रखना है और अपनी बेटियों को डीमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करना है। उन्हें बोलना है कि तुम ही हो देश की नारी और तुम ही हो देश की बेटी और हमें तुम पर गर्व है। तुम आगे बढ़ो, तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, जब एक परिवार अपनी बेटी का साथ देता है ना, तो उसकी देखा देख हर किसी की सोच बदलती है और हर किसी के दिमाग में यही आता है कि हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और हमारी बेटी भी आगे बढ़ेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। तो श्रोताओं, बने रहिए यूं ही आरजे रीना के साथ और भी हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, जब बेटियां पढ़ती है ना, आगे बढ़ती है ना, तो अपने देश का नाम रोशन करती है। तो उनमें से अगर बेटियों की बात करूं तो पीवी सिंधु, कल्पना चावला, साक्षी मलिक, ये हमारी बेटियां देश की शान हैं, जिन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां किसी लड़के से कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकती है। बस एक ही बात चाहिए कि आप उनके साथ रहें। तो जब बेटियां आगे बढ़ती है ना, तो हमें भी देखकर गर्व होता है कि अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सोच बदल रही है। तो इसी सोच के साथ आप अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उन्हें बोझ ना समझे। और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहे जी। अगला गाना भी बहुत ही प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करिए। लौट कर आती हूँ आरजे रीना के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूं आप सभी का फेवरेट शो हेलो फरमाइश। आज दिल किसी गाने पर अगर अटका हुआ है, कौन सी धुन है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है और कौन सा वो गाना है जिसे सुनते ही किसी खास की याद आ जाती है? अगर कोई ट्रैक आपने सोचा है तो फिर देर किस बात की है, आप अभी फ़ोन उठाइए और हमारा मोबाइल नंबर डायल कीजिएगा 9837896896 और 2 घंटे हम आपके साथ रहने वाले हैं। अभी करेंगे इंटरेस्टिंग बातें, खूबसूरत गीतों का यहाँ पर सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट गाना आप मेरी पसंद का सुनिएगा और बाकी हम आप सभी की पसंद के गाने यहाँ पर इंजॉय करने वाले हैं। तो फटाफट से आप कॉल कीजिएगा, नंबर मैं अगेन आपको बताती हूँ 9837896896। और दोस्तों, बाहर का जो वेदर है ना, कभी धूप हो जाती है तो कभी बादल आ जाते हैं, है ना, होते हैं ना ऐसा। तो मैं बोलना चाहूंगी आपसे कि आप, मौसम बदल रहा है लेकिन आप अपने दिल की जज्बात मत बदलिए, फटाफट से हमें कॉल कीजिए। और ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, कुमार सानू साथ में उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की आवाज में, प्यारा सा ट्रैक, आप सब इंजॉय कीजिएगा।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना, दिल है तुम्हारा। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी फोन लगाइए, क्यों इतना पीछे हैं। हाँ, कॉल लगाइए फटाफट से, नंबर है 9837896896। और समय हुआ है 3:16, और अभी बात करते हैं अपने फरमाइश कर्ता जी के साथ। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: मैम, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो फरमाइश।
1: आवाज नहीं आ रही।
0: हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, क्या नाम है आपका बताइए।
1: मैं रफत बात कर रही हूँ।
0: रफत बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं रफत?
1: मैं रामपुर
0: से बात कर रहे हैं। बताइएगा कैसे हैं आप?
1: कुछ नहीं, बस फ्री हैं, टाइम ले रहे थे और आपका तो सुन रहे हैं।
0: अच्छा, आराम फरमा रही हैं आप?
1: जी,
0: चलिए अच्छी बात है, आराम करना भी चाहिए। सुबह से इतने सारे काम होते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त खुद के लिए भी होना चाहिए जिसमें हम रिलैक्स कर पाए।
1: जी,
0: तो आप बताइएगा रफत, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: राजा भैया का गाना।
0: अच्छा, राजा भैया का गाना सुनना चाहती हैं आप, मधुश तेरी आंखें। किन के लिए सुनना चाहती हो ये भी प्यारा सा गाना आप? हाँ,
1: किसी के लिए नहीं, बस अपने।
0: ओहो हो, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप।
1: मुस्कुराते रहते हैं
0: मैम। अच्छी बात है, मुस्कुराते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए मैम, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं मैम की पसंद का, मधुश तेरी आंखें। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप ना हमें कॉल लगाओ, और अगर कोई गाना आपका सुनने का बहुत मन है या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। और इस मौके को बिल्कुल भी मिस ना करें आप। उदित नारायण जी की आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक आप सब सुनिएगा। मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से गाने के इस पास।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
1: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
0: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
2: टायर लो, सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
8: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
7: पर पापा।
8: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
9: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
10: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
0: हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और देखिए, मंडे का खूबसूरत सा दिन है आज एंड 1 जून की तारीख है। साल का 6 मंथ का पहला दिन है आज। और कैसे, मतलब 6 मंथ कंप्लीट हो, मतलब स्टार्ट हो गया है, पता नहीं चल रहा है साल का, है ना। और 5 कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों।
3: आपको पता है साल कैसे गुजरते जाते हैं पता ही नहीं चलता है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने हर एक पल को ना, हर एक टाइम को आप यूटिलाइज करो, क्योंकि वक्त गुजरता रहता है और यही समय है जो हमें आगे लाइफ में हमारी लाइफ को और ज्यादा इनहेंस करता है। तो उसके लिए आपको अपने समय को ना व्यर्थ नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है। और अभी अगर आप बैठे हैं फ्री तो मैं कहती हूँ कि बैठिए मत, आप हमें कॉल लगाइए। हाँ, उसके लिए आपको अपना मोबाइल जो भी चला रहे हैं ना आप, हाँ उसी को आपको क्या करना है, बस उसी नंबर, उसी मोबाइल से हमें फ़ोन लगाना है। मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
11: हेलो फरमाइश।
3: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर?
11: आदाब।
3: आपको भी आदाब, नाम बताइएगा अपना।
11: मैं जिला रामपुर ग्राम से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ
3: आपसे। जी बताइएगा, कैसे हैं वसीम जी आप?
11: एकदम अच्छे हैं। लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बात हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है।
3: जी हाँ, लंबे अंतराल की बात तो बातचीत हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बताइएगा कहाँ पर है आप सर?
11: मैम अभी तो इस समय यहाँ पर गुरुग्राम में है और गुरुग्राम में काफी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 45 है
3: मैंने। ओह माय गॉड, 45, फिर तो बहुत गर्मी है वहाँ।
11: जी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और ऐसे में सभी लोगों से निवेदन है कि अपना ख्याल रखें, जरूरत के मुताबिक घर से निकले।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि बिना वजह बाहर ना जाएं, अगर जरूरत है तो ही जाइए, वरना तो अपने घर पर ही आराम कीजिए।
11: जी
3: जी, तो बताइएगा वसीम जी आज आपकी क्या फरमाइश है?
11: लेकिन मैम जब जिला रामपुर से कॉल शामिल हो रही है तो मूवी रहेगी मोरा।
3: जी,
11: और रहेगा सुबह से शाम तक।
3: अच्छा, सुबह से शाम। और ये खूबसूरत सा गीत आप किन के लिए सुनना चाहते हैं?
11: जी मैं कहना चाहूँ कि आपकी मुस्कान मेरी ताकत बन जाती है। आपकी मुस्कान मेरी ताकत बन जाती है, आपकी बात से दिल को सुकून दे जाती है। आप हो तो लगता है सब कुछ पास है, आपके बिना हर खुशी अधूरी सी रह जाती है।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइएगा अपने दोस्तों की नाम।
11: डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम 6 से मोहम्मद कामिल। हाँ। जितने भी एफएम मुरादाबाद 89.2 रहे हैं मैम।
3: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत आपको, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सो मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी मोहरा से, और आवाज़ है उदित नारायण जी की, बहुत ही खूबसूरत सी, एंड साथ में साधना सरगम जी दे रही हैं साथ। तो सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक आप भी प्रयास कीजिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 98 300

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और साथियों, यहाँ पर समय हुआ है 3:37 और हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा आप सर।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका निम्न सोना मोहम्मद इशरत आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा इशरत जी, कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छी है, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छा हो जाते हैं मैम। जिस प्रोग्राम में आप आती मैम छा जाती हो।
0: अच्छा, थैंक यू सो मच। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो रहा है क्या आपको?
1: मैम मुझे 4-5 दिन हो गए तबीयत ठीक नहीं है, सही पहचाना आपने।
0: हाँ, आपकी आवाज से लग रहा है, मुझे भी हो रहा है ना जुकाम, इसीलिए, क्योंकि जो दर्द हमें खुद को हो रहा है वो हम समझ जाते हैं।
1: जी मैम, मौसम में चेंजिंग हो रही है ना काफी,
0: हाँ
1: कभी
0: जी,
1: गर्मी
0: हाँ
1: कभी
0: जी,
1: सर्दी कभी बारिश, मैम सब रंग का मौसम हो रहा।
0: बिल्कुल
1: तो ठंडा
0: बिल्कुल।
1: पानी मार रहे थे मैम।
0: अच्छा, तो इसलिए आपको जुकाम हो गया है? हाँ
1: जी मैम बिल्कुल।
0: जी। तो अभी तबीयत
1: और
0: कैसी
1: मैम
0: है
1: मौसम
0: आपकी?
1: कैसा मुरादाबाद का?
0: हमारे मुरादाबाद का मौसम अभी 31 डिग्री सेल्सियस है वेदर, अभी टेम्परेचर हमारे मुरादाबाद का।
1: बारिश नहीं हुई मैम?
0: बारिश नहीं हुई है लेकिन
1: इधर
0: बादल
1: तो हुई
0: है,
1: थी मैम
0: आ जाते हैं
1: परसों रात
0: बादल। हाँ जी,
1: मैम, इधर तो हुई थी बारिश।
0: हाँ, नहीं बारिश तो हुई थी लेकिन मैंने कहा अभी नहीं है, करंटली बारिश नहीं है।
1: चलो मैम, मौसम काफी सुहाना हो रहा है, बारिश हो या नहीं हो।
0: हाँ जी, मौसम ठीक है। आप बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम मैं गाना चेंज करना चाहता
0: हाँ
1: हूँ
0: हाँ श्योर, बिल्कुल बताइएगा।
1: मैम। आज मूवी का नाम है फरेब मैम, उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है मैम। आज शेर फरमाइश में यारो सॉन्ग प्ले कर देना
0: जी, किन के लिए सुनना चाहते हैं, किनके साथ सुनना चाहते हैं?
1: मैम। सबसे पहले यारो सॉन्ग में आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, और स्वार्थ है विजय राठौर, ग्राम बीवीपुर से मकसूद भाई, सातनापुरम।
0: अच्छा ठीक है, ये खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं।
1: जी मैम थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा, हमें पूरा उम्मीद है और पूरा यकीन भी है कि आपका कॉल ज़रूर शामिल होगा। एंड बस आप कंटिन्यू ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप कोशिश भी ना करें और आप चाहेंगे कि आपका कॉल लग जाए तो ये इतना आसान नहीं है। और कोई चीज़ अगर हम पाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है ना, और जब आप मेहनत करेंगे तभी तो आपको कामयाबी भी मिलेगी ना दोस्तों। तो चलिएगा, ये खूबसूरत सा गीत सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के इस पार। आप कहीं मचाइएगा, रेडियो के सुन को बिल्कुल भी मत घुमाइएगा, और खुशी कहती है दिल से मुस्कुराइएगा, क्योंकि खुशी चाहती है कि अगर वो खुश है ना तो आप सब भी खुश रहें, और आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो चलिएगा, सुनिएगा ये शानदार सा गीत, मैं लौट कर आती हूँ।
2: I love you too, Suman.

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
3: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
4: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
3: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
4: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
3: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
5: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और देखिए एवरीवन, मेरा भी जो गला है ना वो अभी साथ नहीं दे रहा है। मेरा थोड़ा सा अभी भी खराब है। कोशिश में हम पूरे लगे हुए हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। रेगुलर हम काढ़ा भी पी रहे हैं, गुनगुना पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन भी लिया है। और ठंडी चीज़ें तो मैं खाती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गला है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट हमने भी कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने श्रोताओं का साथ नहीं छोड़ेंगे। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार सर।

ठीक है, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा गाना सुनते हैं और फिर के वाली तो कल फिर आना, और हम तो रेगुलर ही आते हैं। बस आप हमें कॉल लगाइएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9883789689।

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना, ओ फिरकी वाली, ओ खिड़की वाली, तो कर फिर आना, नहीं फिर जाना। फिरकी वाली या खिड़की वाली?
1: फिरकी वाली।
0: फिरकी क्या होता है?
1: गोल गोल घुमाना।
0: खिड़की वाला तो सुना है मैंने भाई, विंडो
1: होता है इंसान का, फिरकी लेना, उसे बातों में उलझाना।
0: अच्छा, ओके, मुझे पता नहीं था, थैंक यू बताने के लिए डियर। चलो अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश, हाय जी।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके, बताइएगा।
2: जी हम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हाँ मैं भी ठीक हूँ, क्या नाम है आपका?
2: जिला मुरादाबाद से रुकैया फातिमा आपसे बात कर रही।
0: रुकैया फातिमा जी बात कर रही हैं, बताइए कैसे हाल चाल है रुकैया आपके?
2: हमारे हाल चाल बहुत अच्छे हैं जी।
0: ओके जी, कैसे रही आपकी ईद?
2: ईद तो अच्छी रही जी,
0: ओके,
2: दोस्त के साथ गुजरी है, बहुत अच्छा लगा।
0: चलिए अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि आपकी हर फेस्टिवल ऐसे खुशी खुशी आप सेलिब्रेट करें। और बताइएगा आज क्या सुनने का मन है आपका?
2: जी आज मैं सॉन्ग आपकी भी सुनकर सुनना चाहती हूँ।
0: अच्छा, और
2: दरख्शा फातिमा के लिए।
0: अच्छा, दरख्शा फातिमा के लिए आप मेरी पसंद का गाना सुनना चाहती हैं, राइट?
2: जी।
0: और कुछ कहना चाहती हो आप?
2: और जी मेरी आपकी है
0: हाँ।
2: अफरोज फातिमा और आसिया फातिमा, लाइबा आपकी, नजमा आपकी और राबिया आपकी और आप।
0: ओके, तो चलिए खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं आपको, कॉल करने के लिए शुक्रिया, बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में, खैरियत पूछो। हम भी आपसे कह रहे हैं, आप भी हमें कॉल करके अपने हालचाल भी बताओ और हमारे हालचाल भी जानो। उसके लिए आपको कॉल तो करना होगा ना, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, आप कॉल करो फटाफट से, नंबर है 9837 8986 8986। और सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत, लौट कर आती हूँ मैं।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: टायर लो सोना जीतो।
0: क्या?
1: जी हाँ,
2: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो तैयार हो जाइए, चाय की चुस्की हो या ऑफिस का काम या हो घर की भागदौड़, हम साथ हैं आपके और साथ रहेंगे। बेहतरीन संगीतों का यहाँ पर कारवा शुरू है और आप भी इस ब्यूटीफुल सेशन में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर है 98-378-96-896 और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सोनू कुमार, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से बोल रहा हूँ।
0: सोनू कुमार जी बात कर रहे हैं सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से, कैसे हैं आप बताइएगा। हाँ मैं भी ठीक हूँ सर, आप बताइएगा। आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी? ओके, और ये गीत आप किन के लिए सुनना चाहते हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सोनू जी? आप मुझे सुन पा रहे हो जी? हाँ जी, हाँ जी सोनू जी बताइएगा। अच्छा, हमें डेडिकेट करना चाहते हैं आप ये खूबसूरत सा गीत? धन्यवाद, चलिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत आपको। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और देखिए, बहुत ही मैं कहना चाहूँगी आपसे कि कुछ गीत होते हैं जो दिल को बड़ा सुकून दे जाते हैं, दिल को राहत दे जाते हैं, और कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो हमें डांस करने पर मजबूर कर देते हैं। तो आपके जहन में अगर कोई गाना चल रहा है तो आप सोचिए मत, हमें कॉल लगाइए। नंबर है 9837-8968-96। मैं लौट कर आती हूँ इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना यहाँ पर, यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ना बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप कॉल लगाएंगे ना तो जल्दी लग जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे ना कि बहुत बिजी आएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप ना लग तो आजमाइए, कॉल तो लगाइए, शायद लग जाए यार। देखो, अगर हम सोचे ना, ऐसा सोचेंगे कि बिजी आएगा, हमने ट्राई करते तो कभी नंबर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो यकीन कीजिए आपका कॉल जल्दी से लग जाएगा। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाय, क्या नाम है आपका? आदाब, आपको भी सना। कैसी हैं आप? ईद का चांद बन गई हो भाई आप तो।
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और बताइएगा कैसे हो सना?
1: मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। इतने दिनों के बाद आप हमसे बातचीत कर रहे हो, क्यों, कहाँ चली गई थी आप? हाँ, अच्छा यूं ही। ओके, थोड़ा ब्रेक ले लिया आपने, कुछ ज्यादा ही ब्रेक ले लिया। हाँ हाँ और बताओ सना, अभी तो बड़ा मुस्कुरा रही थी आप, अब एकदम से शांत हो गई हो?
1: मैं बहुत खुश हूँ, मैं बस बैठी हुई है, फिर सोचा कि आपको कॉल लगानी चाहिए। 6-7 महीने के बाद मैं आपसे बात हो रही हूँ, तो काफी
0: हाँ
1: अच्छा लग रहा है
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपके जहन में कैसा है कि चलो आज कॉल कर लेते हैं?
1: बस ऐसी बैठी हुई थी, फोन चला रही थी।
0: अच्छा, तो आज याद आ गया आपको एफ एम मुरादाबाद? हाँ
1: मैम आपकी याद तो हर रोज 3 बजे से और 10 बजे से आती रहती है, लेकिन क्या करें मैम, थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से ना।
0: कॉल नहीं कर पा रहे थे आप? हाँ
1: जी मैम।
0: चलिए कोई बात नहीं, अब वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है। आप बताइएगा आज इतने दिनों के बाद आपने कॉल किया है, कैसा लग रहा है आपको सना?
1: मैम आपकी आवाज के लिए उतनी श्रोताओं की आवाज के लिए कान तरस गए थे हमारी।
0: हम भी, हमारे कान भी तरस गए थे यार। देखो, अब हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बातचीत करके।
1: लेकिन खुदा का शुक्र है आप पहले से ज्यादा।
0: चलिए अच्छी
1: मैम
0: बात है।
1: आपकी सभी श्रोताओं की दुआएं यूं ही बनी रहे, तो और भी थोड़ी प्रॉब्लम और भी
0: हाँ, जो भी परेशानियां हैं वो जल्दी से दूर हो जाएंगी, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। और जब सच्चे दिल से किसी के लिए हम दुआएं करते हैं तो कबूल भी होती हैं। तो ये बताओ सना, आज क्या सुनने का मन है? इतने दिनों के बाद आप कार्यक्रम में जुड़े हो, आज शो में जुड़े हो, बताओ।
1: इतने दिनों के बाद जब कॉल लगी है तो मैम, फिल्म का नाम है आंदोलन,
0: हाँ
1: और उसमें बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है कि कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे कितने दिन तुम कहाँ रहे।
0: हाँ यही तो क्वेश्चन हमें आपसे मालूम करना था, बताओ बताओ।
1: मैम बस कुछ नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पापा की तबीयत खराब थी,
0: अच्छा
1: इसी वजह से नहीं थे।
0: ओके, अभी ठीक है आपकी फादर साहब?
1: हाँ मैम अभी तो थोड़े बहुत इंशाल्लाह काफी
0: चलिए
1: बेहतर है।
0: हम दुआ करते हैं और जल्दी से ठीक हो जाएं। और ये खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाते हैं, किसी का नाम लेना चाहती हैं आप?
1: जी मैम, दोस्तों के बिना तो कॉल अधूरी है,
0: हाँ वो तो पूरी अधूरी है फिर।
1: पूरी अधूरी है, लेकिन मेरी दोस्त है सुषमा द्रा से सना, वो जब भी कॉल करती थी कि मुझे जरूर बताना, मुझे जरूर बता, अभी मैंने कॉल की तो उन्होंने उठाई नहीं।
0: अरे शायद हो सकता है वो बिजी हो, ऐसा भी होता है ना।
1: हाँ
0: हाँ
1: लेकिन मैम जब इधम पाता है मदुरई से है सना रिहाना, और ये है रामपुर से मेरे भाई,
0: हाँ
1: और रामपुर से है शमा, और जितने भी लोग से सभी सुन रहे हैं सभी को दे दिखे रहे हैं मेरी तरफ से, सना की तरफ से ये सॉन्ग।
0: ओके सना, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम, बाय।
0: बाय बाय बाय। तो चलिए सना जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, कितने दिनों के बाद मिले हो। हम तो आपसे रेगुलर मिलते हैं लेकिन आप हैं कि फोन ही नहीं करते हैं, कितनी गलत बात है। हाँ

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

Hey, hello, hi everyone. This is me, RJ Khushi, listening to FM Muradabad 89.6. मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी. और दोस्तों, यहाँ पर अभी वक्त हुआ है 4:26, और हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं. हेलो फरमाइश. हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी, अपना नाम बताइएगा सर. जाकिर ताहिर. ओके, सॉरी सर, आपकी जो आवाज़ है ना, वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है हमें. शायद नेटवर्क इशू है, इसीलिए आपका नाम मुझे समझ में नहीं आया था. बताइएगा, आप क्या सुनना चाहते हैं आज? ठीक है सर, आज हम अपनी पसंद का एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं. आपने कॉल किया, धन्यवाद. तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी तेरे नाम, और ट्रैक है ओढ़नी ओढ़ के नाचूं. तो आज हमारा डांस करने का मन है, तो हमने कहा चलिए मैं खुद अकेली क्यों डांस करूं, अपनी श्रोताओं को भी डांस करवा देती हूं. हाँ अभी, लेकिन अगर आप चाय पी रहे हैं ना, तो चाय आराम से पीजिए, उसके बाद डांस करना. पता चला चाय पीते पीते आप डांस कर रहे हो, चाय गिर गई, पर ब्लेम आप मुझ पर लगाएंगे. खुशी जी ने तो बोला था डांस करने के लिए. तो मैं कहती हूँ, अगर आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, तो आराम से चाय को पीजिएगा और इस गाने का लुत्फ उठाइए.

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी तेरे नाम ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। और हमारी जो सखियां इस समय में सुन रही हैं, उन्होंने बहुत सारा डांस किया है अपनी चुन्नी को ओढ़ कर। और ये गाना मतलब ना ऑल टाइम माई फेवरेट ट्रैक। और स्कूल टाइम में हम बहुत ज़्यादा इस ट्रैक पर डांस किया करते थे। और जैसे ही कोई भी स्कूल में इवेंट होता था या फिर कॉलेज में पार्टिसिपेट करना होता था, तो हम लोग पहले से ही प्रैक्टिस करते थे। और घर में मम्मी की जो सूट की चुन्नी होती थी, वो लेकर हम दोपहर में गर्मियों में छुप छुप के रूम में डांस किया करते थे। और वो पल बड़ा मिस करते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद चीज़ें बहुत सारी हैं जो हम मिस करते हैं। और समय के साथ बदलाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है। लेकिन अपने फैमिली के साथ जो आपका टाइम है, उसको आप कभी मत चेंज कीजिए। आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो उनके लिए कुछ वक्त तो होना चाहिए ना एवरीवन। अभी जैसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही बस मुस्कुराते रहो। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से
0: जी,
1: आज ये गफार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके परिवार में और आपके स्टूडियो में क्या हाल है?
0: जी बहुत ही अच्छे हैं सब, स्टूडियो में भी और फैमिली में भी। आप बताइएगा, रामपुर का मौसम कैसा है सर?
1: रामपुर का बड़ा खुशमिजाज मौसम है।
0: अरे वाह, तो इस सुहाने से मौसम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज आप?
1: आज आपके स्टूडियो में कुछ देर से आमद हुई है।
0: जी क्या कहा आपने?
1: मैं कह रही हूँ आज स्टूडियो में आज कुछ देर से आए थे आप?
0: नहीं सर, देर से तो नहीं आए, अपने राइट टाइम ही आए हैं।
1: जॉब बता
0: रहा था,
1: मैं कॉल लगा रहा था।
0: नहीं नहीं एक्चुअली ना कभी कभी ऐसा होता है सर कि नेटवर्क इशू हो जाता है। जी जी तो आप बताइएगा।
1: एक मुसाफिर एक हसीना का
0: जी,
1: मोहम्मद रफी साहब की और आशा भोसले की आवाज है और गाने के बोल है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बताइएगा सर।
1: गाजिया खान है, सिमरन खान है, ईशान भारती, शहनाज बाबू अंसारी, मिराज अंसारी, शकी अहमद अंसारी, रईस भूला अंसारी, शानूर अंसारी, मसूद हुसैन, शारिक अली, इरशाद अली, शमा परवीन, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, आपके सभी साथियों के साथ सुनवाते हैं गीत। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत। चलिए दोस्तों, हम भी आपसे कहेंगे कि आप भी हमें कॉल लगाइएगा और अपनी पसंद का गाना सुनते जाइएगा। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, ओल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और शो का नाम है हेलो फरमाइश। मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ, क्या फरमाइश है, उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। अपना नाम बताइएगा। निखत फातिमा जी का कॉल लग चुका है, बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके परिवार में सब लोगों के। अच्छा जी, क्या कर रही हैं इस समय आप? अच्छा, बैठे हुए शो सुन रहे हैं आप, तो बताइएगा आज कौन सा गाना सुनेंगी आप? ओहो, क्या बात है, आज कैसे जहन में आया कि ये गीत सुनना है मुझे? अच्छा जी, ये बात है। ओके, वैसे बहुत ही प्यारा गाना आपने चुना है निखत, और कुछ कहना चाहते हो आप?
1: यही कहना चाहते हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है, अपना और अपने का ख्याल रखें।
0: हाँ, और पानी भी पीते रहें।
1: हाँ, पानी भी पीते रहें जी, वैसे तो आज थोड़ी कम है गर्मी।
0: हाँ सही कह रहे हो आप, आज थोड़ा सा मौसम मतलब हवाओं में कूलनेस है, ठंडक है
1: हाँ जी,
0: जी।
1: बहुत सुकून है आज
0: हाँ,
1: गर्मी से।
0: इतना एहसास नहीं हो रहा है गर्मी का
1: हाँ
0: जी। तो चलिए आपको प्यारा सा गाना सुनवाते हैं, कॉल करने के लिए शुक्रिया,
1: ओके, थैंक यू जी,
0: मोस्ट
1: बाय।
0: वेलकम, बाय। तो चलिए एवरीवन, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको और लौट कर आते हैं। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हो तो फटाफट से कॉल करो, नंबर है 9837896896।

0: नो डाउट एवरीवन, आप सब श्रोता बहुत ही प्यारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है, क्योंकि आप जो प्यार करते हैं ना एफएम मुरादाबाद से, भर भर के दिल से शुक्रिया और बहुत सारा प्यार हमारी ओर से भी आप सभी को। तो एवरीवन, आपने अभी बहुत ही प्यारा से ट्रैक सुना आशा भोसले जी साथ में कुमार सानू जी की खूबसूरत सी आवाज में, और अभी बात करते हैं हम अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं जानते हैं उन्हें से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से आपका नियमित श्रोता भाई रफत साहब बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी बताएगा कैसे हैं सर आप?
1: मैम अच्छे हैं, बढ़िया है, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, आपका शो सुन रहे थे, मजा आ रहा है
0: जी।
1: और सभी श्रोता जितने भी हैं इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जो कॉल लगा कर गीत सुन रहे हैं, खासतौर से उनके गीत हमें बहुत पसंद आ रहे हैं।
0: शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतने ध्यान से रेडियो को सुनते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं।
1: और सबसे बड़ी खास वजह तो यह है मैम, कोई भी श्रोता हो, सभी श्रोताओं से आप बहुत दिलचस्प तरीके से बात करती हैं, अच्छे से बात करती हैं, बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: थैंक यू सो मच सर। और आप बताइएगा आपकी फैमिली में सब खैरियत से हैं?
1: हाँ बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे हैं मैम। और आकाशवाणी मुरादाबाद में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी, यहाँ पर भी सब बहुत ही अच्छे हैं, आप सबकी दुआएं हैं। आप बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: हेलो फरमाइश, मेरी कॉल लगी थी फिल्म है शिकार।
0: हाँ जी,
1: उसी फिल्म का एक गीत है, आपको समझा है जब से जिंदगी।
0: अच्छा, और ये उदित नारायण जी की आवाज में है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। किन के लिए सुनना चाहते हैं आप ये गीत?
1: तो मैम ये सबसे पहले मेरी वाइफ है नगमा नाज मंसूरी, रिस्पेक्ट करना चाहूंगा, और ये घर के लोग हैं सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन है फिरोज मुस्तान और शाइना काजल।
0: ठीक है सर, आपकी पूरी फैमिली के साथ सुनवाते हैं ये गीत, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, और इस गीत ही के साथ, इस प्यारे से ट्रैक के साथ मैं आपसे जाने की अनुमति भी लेना चाहूंगी, लेकिन जाते जाते कहना चाहूंगी आपसे कि आपका कॉल अगर आज नहीं लगा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि मौका आपके पास एवरी डे है, मंडे टू सैटरडे। तो आज मंडे में नहीं लगा है तो आप ट्यूजडे से फ्राइडे तक कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं लगा है तो कल आपका नंबर ज़रूर लगेगा। बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और अपनी मेहनत ना जारी रखिएगा। बाकी मैं तो मिलने वाली हूँ आपको कल सुबह मॉर्निंग में 10 से 12, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब मुस्कुराते हैं ना आप सब बहुत ही प्यारे लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: 33 यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
4: इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
6: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
5: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: This is Akashvani, the news read by Anucha Kumar.
8: टायर लो, सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
10: अपोजिट
8: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
10: कॉल 8826213131
11: नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज मैं कर रहा हूं आपसे बात और जैसा कि आपको पता है कि जब मैं आता हूं तो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात तो लेकर आता हूं तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में जब आपको सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्या सच में वो सस्ता ऑफर है या फिर आपके लिए एक महंगी गलती तो दोस्तों आज का ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे पर हमारे लिए खतरा भी है तो चलिए जानते हैं श्रोताओं आज हम कपड़े मोबाइल टीवी दवा टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ इसमें दो लोग हैं पहले हैं राहुल और दूसरा है राज राहुल कहता है अरे वाह ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रूपए में दे रही है
12: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रूपए का है
11: अब राज कहता है इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं फिर राहुल कहता है नहीं नहीं वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है तभी लो कार्ड से पेमेंट हो गया अब राहुल जो है चिंता में है क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है असली ब्रांड की नकल की जाती है बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं पेमेंट होते ही सामान नहीं आता आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं श्रोताओं ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा स्टॉक लिमिटेड है सिर्फ मिनट में खरीदें जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं याद रखिए अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें ये जानना भी जरूरी है ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें स्पेलिंग गलत हो सकती है HTTPS और लॉक का निशान देखें बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा श्रोताओं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले छात्र और गृहणियाँ होती हैं इसलिए परिवार में सबको समझाइए बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें फ्रॉड हो जाए तो क्या करें ये जानना भी जरूरी है अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर जितनी जल्दी शिकायत उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी जल्दबाजी नुकसान जानकारी साझा करना गलती सावधानी सुरक्षा जाते जाते श्रोताओं मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है स्मार्ट खरीदारी करें सुरक्षित खरीदार करें यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें सुरक्षित रहें आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 MHz आपके शहर रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेन तो करता ही है साथ में काम की बात भी बताता है तो दोस्तों अभी के लिए ईश्वर से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना वो जितने शातिर है ना आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप सबसे, करूंगा और भी बात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ। हेलो इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 5:12 हो चुके हैं, जहाँ श्रोताओं हम ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि आज मंडे का दिन है। और समय की बात करूँ तो 5:12 और आज की तारीख यानी कि 1 जून, यानी कि हम जून के महीने में एंट्री कर चुके हैं। सो अभी तक आपने जो भी डिले किया है, जो भी डिसीजन लेने में आपने डिले किया है, कोई बात नहीं, जो पीछे छूट चुका है उसको छोड़ दीजिए। कभी पिछली बातों को याद करके हमें रिग्रेट नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि जो हो चुका वो फाइनली उसको कट कर दीजिए और अपने आगे के ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि हम इंडियंस की ना एक बहुत मतलब एक आदत होती है कि हम जो भी कुछ काम करते हैं, या फिर दुकान से हमें राशन लेना हो, किसी से दूध लेना हो, तो हम क्या कहते हैं, नहीं भैया हम तो 1 तारीख से ही शुरू करेंगे, इसे हिसाब करने में सही रहता है। तो हम हर चीज़ 1 तारीख के पीछे पड़े रहते हैं कि 1 तारीख जब शुरू होगी तभी अपने काम शुरुआत करेंगे। सो आज फाइनली कल 31 और आज 1 जून, तो बहुतों की सैलरी भी आ गई होगी। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आने में तो बहुत टाइम लगता है लेकिन जाते समय टाइम नहीं लगता है, वो है हमारी सैलरी। जैसे सैलरी आती है हर बिल एकदम भरने लग जाते हैं, रूम रेंट, बिजली बिल, राशन लेकर आना है, मतलब ऑल हर एक चीज़ 1 तारीख को ही हम कंप्लीट करते हैं। सो आपने देखिए कभी भी ज़िंदगी में कोई शुरुआत कर रहे हैं ना, उसके लिए कभी 1 तारीख का इंतज़ार मत करिए कि हम 1 तारीख से जाएंगे या फिर कहीं चल रहे हैं। देखिए जो कुछ शुरुआत करनी है आपको, कल के भरोसे पर तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो भी शुरुआत करनी है आज ही शुरुआत करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और यूं ही आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फाइनली एक बहुत ही प्यारा गाना, और इस सफ़र में हैं तो आप सभी को ये गाना डेडिकेट है, हम तो दीवाने हुए यार, बहुत ही खूबसूरत गाना है।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। इवनिंग मस्ती शो में और समय की बात करूँ तो 5:19 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। यानी कि आप इंजॉय कर रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे। और देखिए, इस टाइम मुझे पता है कि आई नो कि आप ट्रैफिक में हैं, ऑफिस से निकल चुके हैं और बहुत से तैयारियां करेंगे कि हाँ भैया ऑफिस से घर निकलना है। और बहुत से सामाने हैं जो कि चार्जर है, लैपटॉप है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं, जल्दी जल्दबाजी में ना हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो कुछ भी नहीं भूलना है। देखिए, 5:00 ना, सच बताऊँ तो बॉडी काम करने की एनर्जी में होती नहीं है। बस ऐसा मन करता है कुछ भी हो जाए, बस यहाँ से निकल लो यार, घर की तरफ चल लो। सो आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप घर की तरफ निकल चुके हैं तो अपना ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मूड ऑफ है तो ठीक हो जाएगा। बस आपने आर्जेरीना को ट्यूनिंग करके रखना है। और यहाँ पर ढेर सारी बातें और आप सभी के लिए प्यारे से गाने। अरे अरे, ये सामने वाले हैं जो आपके जो साइड में बैठे हुए हैं, इनका इनको लग रहा है कि भैया ये थोड़ा परेशान हो रहे हैं ना। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, ज़िंदगी है और ज़िंदगी में तो ये चीज़ें चलती रहती है। सो आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ट्रैफिक में हैं तो हेलमेट, सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये लगाना आपकी सेफ्टी है और आप सेफ रहते हैं। और साथ ही साथ आपसे यही अनुरोध करना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मैं कल की बात करूँ तो कल भाई बारिश जमकर हुई, एकदम मज़ा आया ना कि पूछो मत। साथ ही साथ जब बारिश आई तो ऊपर से हमारी जो सड़कें हैं ना, वो गंगा यानी कि समुंदर बन गई थी। एक 4-5 यानी कि 1-2 घंटे के अंदर ना समुंदर वाली फीलिंग आ रही थी। और उस समुंदर में ना ई रिक्शा, स्कूटी, कार, तो हम कार वाले भैया से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जब सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप उस टाइम ना थोड़ा गाड़ियों की स्पीड है ना धीमी कर लीजिए, क्योंकि जो आपके आजू बाजू जो निकल रहे हैं, आप गाड़ी तेज चलाकर जाते तो पानी की जो बौछार है ना इतनी दूर तक जाती। भैया सोचो, जिसने वाइट कलर का कपड़ा पहना हो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती है, यानी कि कपड़े सच में ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मौसम जब ख़राब है वहाँ थोड़ा सा संभल के अपनी गाड़ी चलाना है। बाय द वे, बारिश तो बताई रखी थी आज के दिन भी, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि बस एक ही दिन है जो खुश हो गया, तो अब नहीं, अब फिर हम मिलेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे को बारिश बताया जा रहा है कि फ्राइडे को बारिश आ सकती है। साथ ही साथ आज की टेम्परेचर की बात करूँ तो 21 डिग्री सेल्सियस है, और मौसम आज का जो है वो नमी वाला है, सुनहरा मौसम है, हवाओं में नमी है, ठंडक है। सो यूं ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और मौसम का, हर मौसम का आनंद लेते रहें। फिलहाल एक गाना बहुत प्यारा,

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया। पर आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:31 हो चुके हैं। और एक बेहद खुशी वाली बात ये है कि देखिए, हम सभी ना जब भी एग्ज़ाम देने जाते थे, गवर्नमेंट यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया या कोई भी एग्ज़ाम्स देने जाते थे हम, तो क्या होता था कि आप कलावा बांध कर जा रहे हो, बालों में पिन लगा कर जा रहे हो, यानी कि या रिंग्स पहन के जा रहे हो, तो हर चीज़ यानी कि उतरवा लिया जाता है। यानी कि इनफैक्ट एक काला धागा भी पैर में बंधा हुआ होता था ना, उसको भी उतार लिया जाता था कि नहीं, ये अलाउड नहीं है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे, तो आप ये चीज़ें उतार कर जाएंगे। छोटा सा पिन भी अगर आपने लगा रखा है तो उसको भी उतरवा लेते थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, मंगलसूत्र यानी कि नहीं उतरवाया जाएगा, और साथ ही साथ आपके हाथ में जो रक्षा कवच यानी कि जो कलावा बंधा हुआ होता है उसको भी नहीं हटाया जाएगा। बाकी और चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं आपको कि हटाने के लिए, लेकिन ये जो मंगलसूत्र और जो कलावा है वो नहीं हटाया जाएगा अब। तो भाई, जिन जो शादीशुदा है वो वैसे भी मंगलसूत्र नहीं उतारती हैं, यानी कि पति बोलते हैं कि पति की लंबी उम्र बढ़ती है इससे, तो वो चीज़ नहीं हटाया जाता है कभी भी। तो अब ये चीज़ अच्छा हो गया है तो आप सब थोड़ा खुश हो जाइए, क्योंकि कलावा तो आप बांध ही सकते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है। और जब भगवान हमारे साथ रहते हैं तो कोई बड़े से बड़े एग्ज़ाम भी हम पास आउट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जब ही आप कोई भी एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाते हैं जी। चलिए, और भी ढेर सारी बातें करेंगे, फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ। इवनिंग मस्ती शो में और समय की बात करूँ तो 5:42 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और शाम तो हो ही गई है, लेकिन जो बाहर का वेदर देखने के बाद भी नहीं लग रहा है भैया कि शाम हो गई है, यानी कि भरी दोपहर ही लग रही है, क्योंकि कितनी तेज़ धूप और धूप पे ठंडी ठंडी नमी वाली हवा हो, मतलब थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। सो, इस गर्मी में ना हम क्या करते हैं, और कॉमन बात है, प्यास तो हमें लगती है, और इतनी तेज़ प्यास लगती है कि हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो पानी पीने का तरीका है हम भूल जाते हैं। हम कहीं से आते हैं, बॉटल उठा और गट गट गट कर पानी पी लिया, है ना। और साथ ही साथ कभी कभी तो हम फ्रीज का इतना ठंडा पानी पी लेते हैं कि गला ख़राब होने लग जाता है। जब हम शुरू शुरू में गर्म पानी, ठंडा पानी पीते हैं ना, तो हमें फील नहीं होता है कि हमारी बॉडी में क्या कमियां शुरू हो गई है। बस हम उस टाइम तो रहता है कि भैया प्यास लगी है, ठंडा से ठंडा चिल्ड पानी पी लो, लेकिन आपको नहीं पता है वो आपकी बॉडी को अंदर अंदर से ही ना नुकसान पहुंचा रही है। यानी कि क्या हो सकता है, आपको गले में दर्द शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा आप जब पियेंगे तो, और जो खाना है वो डाइजेस्ट होना स्लो हो जाएगा, साथ ही साथ सर दर्द, बॉडी पेन होने लग जाएगा, बोन्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाएंगी। आजकल आप बहुतों के सुनते होंगे कि बॉडी पेन कर रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है। पहले के जो इंसान होते थे उनके इतने दर्द नहीं होते, वो अभी भी इतने ज़्यादा स्ट्रोंग है कि आपसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन आप उनके मुकाबले हाफ भी काम नहीं कर सकते हो। क्यों? वो अपनी बॉडी का ध्यान रखते थे और पहले मटके का ठंडा पानी पीते थे, और अब क्या है, हर घर में फ्रीज है, पानी पी लेते हैं। ऊपर से पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए, उखड़ू बैठ कर पानी पीना चाहिए ताकि आपके लिए अच्छा रहे। और साथ ही साथ अगर आप पानी पी भी रहे हैं ना, तो एकदम नहीं पीना है, सिप सिप करके आपको पानी पीना है ताकि आपको बॉडी के लिए सही रहे। और साथ ही साथ आप बैठ कर धीरे धीरे पानी पीते हैं, और तो आपकी इससे प्यास बुझती है, आपकी बॉडी को पता चलता है कि हाँ अब पानी बॉडी में आ रहा है, तो फिर काम करना मशीनें जो होती है वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे आप ठंडा पानी एकदम एक सांस में पी लेते हो, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए आगे से जब आप पानी पिए तो ज़्यादा ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं पीना है। वो बस कुछ देर के लिए होता है, फिर भी उससे प्यास नहीं बुझती है, आपको प्यास लगती जाएगी। लेकिन आप घड़े का पानी, मटके का पानी पीते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए सही रहता है। और पानी हमें, यानी कि दिन में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 30-30 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं ताकि आपके बॉडी के लिए सही रहे, और जो सर दर्द बोलते हैं वो नहीं होएगा। और साथ ही साथ आप आजकल हम स्क्रीन फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, और फ़ोन ज़्यादा चलाने की वजह से यही होता है कि आपकी जो नींद एक तो पूरी नहीं हो पाती है, ऊपर से सर में दर्द रहता है, और ऊपर से ये ठंडा पानी। तो इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत है तभी आप कोई आगे काम कर पाएंगे। श्रोताओं, चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और फिर लौट कर आते हैं आप सभी के लिए ढेर सारी बातें लेकर। सो अभी के लिए आपने किथे नहीं जाना है, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल एक मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये मैसेज आता है हमारे पास, रीना दी नमस्कार, ग्राम चमुआ जिला संबल से ब्रिजेस मिस्त्री कनेक्ट होते हैं, शशिपाल मिस्त्री, अनुज भाई, इनके साथ सभी कनेक्ट होते हैं, और ये मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच जी मैसेज करने के लिए, शुक्रिया। चलिए फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ती शो में आरजे जीना के साथ अब कनेक्ट है। और समय की बात करूँ तो 5:53 हो चुके हैं श्रोताओं। और आज की तारीख यानी कि 1 जून, 1 जून से कई सारे नियम है ना वो बदल चुके हैं। कुछ चीज़ें महंगी हो गई है। अब वो चीज़ें कौन कौन सी है चलिए हम बताते हैं आपको। यानी कि LPG सिलेंडर है उसकी जो भैया भाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही साथ बात करूँ UPI ट्रांजेक्शन, यानी कि अब आप UPI के जरिए किसी भी पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो स्क्रीन पर उसकी जो डिटेल है, जो अकाउंट में उसका नाम है, वो आपको अब शो करेगा। साथ ही साथ UPI ATM निकासी पर नया नियम, यानी कि बैंक ने UPI ATM से पैसे निकालने पर प्रक्रिया को सामान्य ATM लेन देन से जोड़ दिया है। यानी कि यही आपके मुफ्त मासिक लिमिट में गिना जाएगा और सीमा पार होने पर यानी कि आपके ट्रांजेक्शन से 23 रुपये तक का चार्ज लग सकता है। और साथ ही बैंक नियमों में सख्त कार्रवाई कर दी गई है। यानी कि कुछ बैंकों ने करंट अकाउंट चालू खातों पर अन्य खातों में कैश डिपॉजिट यानी कि नकद जमा में नियमों में सख्त कार्रवाई की है, जिसके तहत यानी कि आप सीमा से लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। और साथ ही साथ 1 जून से यानी कि जो आप कार लेने की सोच रहे हैं, बाइक लेने की सोच रहे हैं, स्कूटी लेने की सोच रहे हैं, वो हर एक चीज़ अब महंगी हो गई है। आप मारुति सुजुकी लेना चाहते हो तो 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है भैया। मोटरसाइकिल बाइक लेना चाहते हैं वो 12,800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है उसमें। और साथ ही साथ आप कोई किस्त लेते हैं तो उसकी जमा करने की तारीख 15 जून, यानी कि हर महीने की 15 दिन के बाद अगर आप अपना किस्त जमा कर पाते हैं तो उसके लिए आपको प्लान्टी देनी पड़ेगी, डबल देना पड़ेगा।

तो कुछ चीजें हैं यानी कि भैया गैस ने तो हाँ भाई हर चीज महंगी होती जा रही है, ऊपर से गैस मुझे लगता है कि आप इनफ कर देनी चाहिए, इतनी नहीं महंगाई करनी चाहिए। बताओ जो बच्चे बाहर रहते हैं वो कैसे मैनेज कर पाएंगे एक टाइम के लिए, क्योंकि घर पर तो ये है कि हाँ ठीक है हम सिलेंडर बुक कर देते हैं वो थोड़ा मतलब सस्ता आ जाएगा, लेकिन जो बाहर रहते हैं अपने घर से बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? क्यों, क्योंकि उनके लिए अगर बात करूँ तो सिलेंडर भरवाने जाते हैं जो पहले वही सिलेंडर अगर 3 किलो भरवाने जा रहे तो 270 रुपये लगते थे, लेकिन हाल फिलहाल में वही यानी कि 600 के भरा यानी कि 600 रुपये भरे जा रहे हैं। तो सोचिए कितना महंगाई हो चुका है। तो बस सिलेंडर के लिए तो हम भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि बस अब इनफ कर देना चाहिए, यानी कि हर चीज़ आप महंगे कर रहे हो तो मिडिल क्लास वाले क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वही है कि बच्चे जब जो बाहर रहते हैं वो ब्रेड से करी खाएंगे, फिर वही है कि बीमार होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उन चीज़ों में बढ़ाओ जिसके रोज़मर्रा में यानी कि डेली में रूटीन में नहीं है, वो चीज़ें आप बढ़ाओ तो ठीक भी लगेगा। लेकिन जिस चीज़ के जिसके प्रति हम डेली निर्भर है उस पर वही चीज़ महंगी हो जाएगी, तो सोचिए आगे होएगा क्या। चलिए फिलहाल एक कुछ कमर्शियल छोटा एड ब्रेक, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं श्रोता और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: कि कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
4: Of our shared future.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lai held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence.
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ तो 6:12 हो चुके हैं, और ये आपने गाना अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में एंजॉय किया है, और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और शो में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, क्योंकि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। और कभी कभी ना जब हमें चेस्ट में पेन होता है तो हम समझ नहीं पाते कि ये कौन सा वाला दर्द है ना। सो आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अचानक छाती में दर्द होता है, समझ नहीं आता कि गैस है या फिर कोई सीरियस दर्द है। हर छाती का दर्द सेम नहीं होता है। गैस का पेन और हार्ट अटैक का पेन दोनों अलग तरीके से सिग्नल भेजते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ना हम मोस्टली पहचान ही नहीं पाते कि आखिर का ये दर्द क्यों हो रहा है, और इसका सिग्नल हमें क्या देना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है ये। तो खाने के बाद यानी कि डकार लेने से कम हो जाए, पेट फूलना या हैवीनेस भी हो, तो ये ज़्यादातर गैस की समस्या हो सकती है कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पेट फूलने लग जाता है, तो वहाँ समझिए कि ये गैस की प्रॉब्लम है, गैस की वजह से दर्द हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको दबाव टाइटनेस जैसा हो, और बाएं हाथ गर्दन या जबड़े तक फैले या पसीना, घबराहट या सांस फूलना हो, तो समझ जाइए कि हार्ट अटैक का ये सिग्नल भेज रहा है आपको। तो इस समय ना हमें घबराना नहीं है, और बहुत ये नहीं कि हम घबरा जाते कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं करना है, बस अपने डॉक्टर के से कांटेक्ट करिए। और इसे, ये जो हार्ट अटैक वाली बीमारी होती है ना, इसे हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, और वैसे भी इस गर्मी में जो तला भुना खाना है उससे आप जितना हो सके बचिए, और आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। साथ ही साथ आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी को, क्योंकि 1 जून है, और 1 जून को कौन कौन से स्पेसिफिक डे मनाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो जी, हेलो। इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए। और समय की बात करूँ तो 6:25 हो चुके हैं और आज की तारीख 1 जून। तो 1 जून को मनाया जाता है बहुत ही खास डे, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि महंगी हो चुकी हैं। और हर 1 जून को आज पूरी दुनिया में विश्व मिल्क डे मनाया जाता है, यानी कि दूध केवल एक पीने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण एक आधार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कई ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और इस अवसर पर यानी कि हमें क्या करना है, जो किसान और दूध उद्योग से जुड़े हुए सभी लोगों को बस एक ही कहना है कि देखिए, आप इस भाग दौड़ में अपनी सेहत का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हम दूध नहीं पियेंगे, तो दूध पीना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, ताकि आपको कैल्शियम मिलता रहता है, प्रोटीन मिलती रहती है, तो इसीलिए दूध ज़रूर पीना है। और साथ ही साथ आज के तारीख में, यानी कि आज मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी कि 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस भी मनाया जाता है। माता पिता हमारे जीवन की पहली पाठशाला होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्यार, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन देते हैं। उनके त्याग और समर्पण का कोई मोल नहीं होता। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने माता पिता के प्रति समान प्रेम और आधार व्यक्त रखें। अगर आप मौका मिले तो उन्हें एक मुस्कान, एक धन्यवाद और थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा उपहार और आप ही हैं। जिसमें हम क्या है, इस भागदौड़ की दुनिया में ना इतने बिजी हो गए हैं कि आजकल अपने, एक तो पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत कम समय दे पाते, ऊपर से जो बच्चे बाहर रहते हैं वो भी अपने पेरेंट्स को बहुत कम समय देते हैं। तो ये ज़िंदगी अनमोल है हमारे लिए, एक दूसरे के लिए हमेशा हमें टाइम निकालना चाहिए। साथ ही साथ आज मनाया जाता है इंटरनेशनल चाइल्ड डे, यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जाता है। उन नन्हे सपनों को सलाम करते हैं जो हमारे भविष्य की नींव है। यह दिन बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हर बच्चे को सुरक्षा, वातावरण, बेहतर शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। और हम सब मिलकर एक ऐसा समाज का संकल्प लीजिए कि हर बच्चा मुस्कुरा सके, सीख सके, आगे बढ़ सके और अपने फैसले ज़रूर ले सके। बहुत से बच्चे हैं कि जिनको करना तो होता है भैया PhD, लेकिन वो कर लेते हैं कुछ और, फिर उनको पूरी ज़िंदगी कोसना पड़ जाता है कि यार क्या कर लिया, क्या कर लिया। इसीलिए अपना ध्यान रखिए और आप जो करना चाहते हैं वो करिए, जिसको आप अच्छे से कर पाए। चलिए जी श्रोताओ, अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, करेंगे ढेर सारी बातें, बस आपने किथे नहीं जाना है जी।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:36 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी के बीच लेकर आ गई हुई कड़क सवाल। और कड़क सवाल आज का क्या होने वाला है सुनने के बाद ही पता चलेगा, वो तो मेरी जान। तो चलिए, आज की कड़क सवाल बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान वाला है, जो कि हम डेली खाते भी हैं और गर्मियों में तो सबसे ज्यादा खाया जाता है। आप समझ गए होंगे कि क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हरी उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया। हाँ जी, हमें आपने मैसेज करना है, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है, जो कि बहुत ही प्यारा है क्वेश्चन। और आपने आंसर भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप यूं ही चुटकियों में आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि आप भैया इतने तेज़ हो ना कि क्या ही कह सकते। हमारे जो श्रोता है बहुत प्यारे प्यारे, बहुत तेज है। तो एक बार और वन सेकेंड में रिपीट करती हूँ, हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। एक बार और, हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। फिलहाल के लिए गाना बहुत ही प्यारा।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:43 हो चुके हैं श्रोताओं, और कल की तारीख यानी कि 2 जून, तो 2 जून को ये बताया जा रहा है कि 21 से यानी कि 17 घंटे यानी कि 17 राज्यों में बारिश आंधी तूफान का अलर्ट दिया जा रहा है। यानी कि आंधी तूफान की अगर बात करूँ तो 80 की रफ्तार में आंधी तूफान आने वाली है, और ये 17 जिलों में यानी कि आंधी तूफान बारिश बताया जा रहा है, और तारीख यानी कि 2 जून कल। तो आपने क्या करना है श्रोताओं, आपको भी पता है कि जब आंधी तूफान बहुत तेज आती हैं तो खुले एरिया में जाने से बचे, और बहुत सी जगह ये भी बताया जा रहा है कि ओले बरसने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में आप बाहर कम निकले, और सबसे ज्यादा ये पहाड़ी इलाकों में बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपने बच कर रहना है, और अपने आसपास एरिया में कोशिश करें कि आप बाहर है तो थोड़ा बच कर रहे। और साथ ही साथ ये जो तारीख, ये मौसम है यानी कि ख़राब रहेगा, यानी कि 5 जून तक बताया जा रहा है। और कहीं कहीं पर तो इतनी तेज़ गर्मी है कि समझो इस गर्मी से राहत पाने के लिए वो सोच रहे कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यानी कि ये बिन मौसम बारिश है। जब बारिश की ज़रूरत पड़ेगी तब बारिश बिल्कुल नहीं आएगा, और जब हमें नीड, इस टाइम तो वैसे नीड बहुत है, लेकिन जब खेतों में फसलें उगने शुरू हो जाते हैं, धान लगने शुरू हो जाते हैं, तब ये कहा जाता है कि उस टाइम बारिश की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो उस टाइम नहीं आएंगे। लेकिन अभी आंधी तूफान, मैं कहती हूँ आंधी तूफान क्यों आना है, बस बारिश आ जाए, बारिश में मज़े ही अलग होते हैं। ठंडक जो मिलती है प्रकृति की, धरती ठंडी हो जाती है, जिससे हमें गर्मी बहुत कम लगती है। चलिए फिलहाल एक और गाना, और उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और फिर यहाँ से लेंगे जाने की इजाज़त। और आज का कड़क सवाल भी आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपने सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गूगल पर भी आप, गूगल पर सर्च देखिए, समझ नहीं आ रहा तो वो तो कर ही लेते हैं, मैं तो अब तक तो कर लेती हूँ गूगल पर सर्च। मैं तो ऐसी हूँ सच बताऊँ तो आज का क्वेश्चन ये है कि हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया। सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन से पहले स्टार्टिंग से समझिए कि क्या कह रहा है। हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान है समाया। सोचिए और फटाफट हमें मैसेज करिए, नंबर है 9837896896 पर मैसेज करके, राइट मैसेज करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज के ही होंगे श्रोता। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: मैं करके ना जान।
1: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने हरियाणवी ट्रैक एंजॉय किया है आर्जरीना के साथ। और अब आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जी श्रोताओ, क्योंकि ये समय आप सभी के मैसेज की तरफ है, यानी कि प्यारे प्यारे जो मैसेज है वो अब शामिल करने वाली हूँ। लेकिन शामिल करने से पहले आज की कड़क सवाल ये है कि हरी उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान है समाया। सोचिए, और अभी एक और गाना उसके बाद कनेक्ट होंगे जी।

क्या बात है जी, लैंग्वेज हमें प्यार की ही बोलनी चाहिए, है ना श्रोताओं। और इसी के साथ आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। समय की बात करूँ तो 6:56 हो चुके हैं और अब आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि बहुत ही प्यारा आज का कड़क सवाल मैंने आप सभी से पूछा है, जहां आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। यानी कि हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान है समाया। तो चलिए देखते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है हमारे लिए। चलिए, यानी कि साबिया का मैसेज आता है और उनका कहना है कि तरबूज है। ओके जी, अगले मैसेज की बात करूँ तो ये दीपक जी कनेक्ट होते हैं दिल्ली से और इनका कहना है कि तरबूज है मैडम जी।

0: जो कि सच बताऊं मेरा तो ये फेवरेट वाला फ्रूट है। जब भी गर्मी स्टार्ट होती है ना तो मैं डेली मतलब खाता ही खाता हूँ। दोपहर के समय तो मुझे तरबूज चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है। अगले मैसेज की बात करूँ तो रीचा जी कनेक्ट होती हैं, ये पीएससी की तरफ से हैं और इनका कहना है कि आज मैं यानी कि ट्रैफिक में हूँ और रेडियो सुन रही हूँ। तो देखिए मैडम जी, आप सिर्फ ट्रैफिक में हैं तभी नहीं सुन सकती, बल्कि हमारा रेडियो आप घर भी बैठे सुन सकती है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपने सर्च करना है FM मुरादाबाद 89.6। जब सर्च करेंगे तो आपको रेड कलर का लोगो दिखेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे भी सुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप गाड़ी में ही सुने। और इनका कहना है कि इसका राइट आंसर होता है तरबूज, और मैं अभी भी खा ही रही हूँ। इन्होंने फोटो भी भेजा है। क्या बात है जी, कमाल है कमाल है। साथ ही अगले मैसेज की बात करूँ तो मैम जी सभी गीत अच्छे चल रहे हैं और ये सलमान अख्तर जी बिजनौर से कनेक्ट होते हैं। क्या बात है। अनुष्का जी कनेक्ट होती हैं, ये रामलीला ग्राउंड के पास से ही है और इनका कहना है कि मैं आपका रेडियो डेली सुनती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक यानी कि 8 बजे तक तो मोस्टली सुनती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं ग्राउंड में घूमने चली जाती हूँ तो फिर नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ही अच्छा है, ये है तरबूज, और हमें गर्मियों में तरबूज खाने भी चाहिए। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है और इसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है, हालांकि इसमें बीज होते हैं। इसको तो काला शैतान बोलते हैं। बिल्कुल जी, सही बताओ मुझे, बीज के मतलब ऐसा लगता है कि बीज कोई छुड़ा कर दे देना तो मैं खा लूँ। ओए होए क्या बात है जी, मतलब मैडम को बीज कोई छुड़ा कर दे तब ये खाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है यानी ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं राकेश जी, ये मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि तरबूज है मैडम जी जो आपने पूछा है। और अभी यानी कि जस्ट 6:30 बजे मेरे बच्चों का ही फोन आया था कि पापा तरबूज जरूर लेकर आइएगा। क्या बात है, यानी कि मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि मैं इतना मतलब जूस ही पी पाता हूँ, इसका खा नहीं पाता इसमें, क्योंकि इसमें बीज बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो सही बात कही है सर आपने। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास। हेलो गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हो आप। और इनका कहना है कि उत्तर है तरबूज। ओके जी, ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी मुरादाबाद से। और इनका कहना है कि कभी बारिश कभी गर्मी, मौसम कैसा लग रहा है रीना जी आपको। अजी सर, हर मौसम में सिचुएशन में हमें ढल जाना चाहिए, हालांकि ये ठीक नहीं है। कभी मौसम कभी गर्म हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, इसमें बीमार होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए बारिश में भीगे नहीं और बच कर रहे, और क्योंकि ये जो मौसम है सर्द गर्म वाला मौसम होता है, इसीलिए हमें बच कर रहना चाहिए। और इस बारिश में तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इसमें भीगिए मत, नहाइए मत। बच्चों को बहुत ज़्यादा चुल मची रहती है कि भैया अब तो हम नहाएंगे, मज़ा आएगा, लेकिन उनको बचाइए क्योंकि ये बारिश आता जाता, बारिश बीमार करके जाता है इस मौसम का। और इसी के साथ मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त, लेकिन सबसे पहले साबिया का मैसेज आता है बाकी और करेक्ट आंसर के साथ मैसेज आता है उनका, तो आप बनती है मेरे शो के विनर। और आप सभी ने राइट आंसर पहुँचाया है, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया जी। और इसी के साथ बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, और एक प्यारा सा न्यूज़, उसको इंजॉय करिए। और मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। कल मिलेंगे जी, कल तो नहीं, रात को 9 बजे भी मिलने वाले हैं श्रोताओं, जहाँ पर ढेर सारी बातें करेंगे हेलो मुरादाबाद शो में। अगर आपको गाना सुना है तो ज़रूर कॉल करिए और गाना एंजॉय करिए।
1: सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमार संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
7: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: हाय दयाल जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
9: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
10: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
9: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से
1: नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रबड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात तो स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला, इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग

0: रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं, बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वादों की नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नानखटाई। नानखटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बुरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप को और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज़ सहायता देती है, चीज़ करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाय डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नानखटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो मंगा उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोली एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नानखटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों,
4: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
9: और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
7: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
9: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
10: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
9: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
11: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे, उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले, पर्व, त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए, इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
9: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये

0: कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रूपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

नमस्ते आदाब, वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम विशेष बातचीत में। दोस्तों, इस दिन को मनाने की खास वजह लोगों के बीच ब्रेन ट्यूमर को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिससे कि लोगों को इस बीमारी की पहचान हो सके और समय रहते वो अपना इलाज करा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिवस की मनाने की शुरुआत जो है वो साल 2000 में जर्मन ब्रेन

0: ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और आज के इस स्पेशल डे पर आगे की बातचीत हम जारी करेंगे ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी के साथ।
1: मैं डॉक्टर मोनित अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और इस समय बीएमसी हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग जापान से हुई है और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मेदांता गुड़गांव में, मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूँ और अब मैं बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि अगर ऑपरेशंस में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरीज, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी, इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
1: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना, अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरामेय बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है वो।
0: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
1: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती हैं। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
0: अच्छा, सर इसका कोई विशेष कारण?
1: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशन के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
0: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है और इस पर हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है?
1: अगर हम पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये अमूमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप सोचें कि पूरा हमारा शरीर जो है वो, हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है, अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो अपना खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
0: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके, बस ऐसी हमारी कोशिश है और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
1: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्तल, हाँ, टाइप्स ऑफ ट्यूमर चेंज हो जाते हैं, जैसे मेनिन्जियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज।
0: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
1: जैसे मैंने बताया, मेनिन्जियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरेंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसे ही पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
0: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या है, लोग पहचाने कैसे।
1: देखिए, इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है। आपको सर दर्द होता है, रोज होता है लोगों को सर दर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सर दर्द है। उल्टियां आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मूड का टेढ़ा होना है। इस तरह कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर से भी देखते हैं और ये हमें कई और बीमारी में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियां, अगर सर में दर्द उल्टियां बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
0: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और लक्षण तो आपने बताए। हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जांच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
1: देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूंगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज। रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है तो ये सब चीजें, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
0: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है।
1: देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, और उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचे हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है। जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें, तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक से कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
0: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं।
1: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और इस चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयूज, ओटी, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: सर, इस बीमारी को लेके एक छोटा सा मैसेज जो हमारे पब्लिक को देना चाहते हैं आप।
1: मैं अपनी जनता को कहना चाहूंगा कि जब भी उनको सर में दर्द हो, उल्टी लगे, या उनमें जरा भी घबराहट हो और उनको लगे कि कुछ अमूमन अलग चीज हो रही है, उनसे जो रूटीन करते हैं उससे कुछ अलग हो रहा है, वह हाथ पर काम कम कर रहे हैं या आंखों से दिखना कुछ कम हुआ है, तो तुरंत उसको कभी भी देर ना करें, उसे फर्स्ट वार्निंग साइन समझें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अमूमन कहते हैं कि एक सर में दर्द हुआ, हमने गोली खा ली, दर्द की गोली खा ली, दर्द निवारक दवा ले ली, दर्द ठीक हो गया, उल्टी गोली खा ली, ठीक हो गया वो चीज, पर अंदर अंदर वो पनप रहा होता है और आप समझिए बहुत खतरनाक बीमारी है। जब 28,000 लोग साल के इससे ग्रसित होते हैं और 24,000 मर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। और इसे जितनी जल्दी रोकेंगे उतने जल्दी फायदा होगा मरीज को, सर्जन को भी ऑपरेशन करने में आसानी है और ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लेट करेंगे तो ऑपरेट के बाद ही ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इसका। और ऐसी बीमारी और कई ट्यूमर्स तो जो बेनाइन होते हैं, अगर हमने निकाल दिया पूरा तो आपकी लाइफ नॉर्मल है। तो जितनी जल्दी उसे करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जरा भी आपको सिम्टम लगे या एक साइन दिखे आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी बचाई जा सके।
0: ये थे हमारे साथ बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी। बहुत ही कीमती वक्त निकाला इन्होंने हमारे पब्लिक को, ये एक छोटा मैसेज दिया जिससे लोग जागरूक हो सके और समय रहते अपना इलाज करा सके।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए। दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दी। इससे पंजीकृत लगभग 1,832 प्रवासी परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2015 से लागू 20,000 रुपए प्रति एकड़ की पुरानी दर में वृद्धि की गई है। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसके अंतर्गत अगस्त सितंबर 2025 की अतिवृष्टि से ग्रसित किसानों को 75,000 रुपए हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे लगभग 10,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ये निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसलें भारी वर्षा और उसके कारण खेतों में हुए जल भराव से क्षतिग्रस्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहायता भूमि के अभिलेखित स्वामी को दी जाएगी। इसके अलावा कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा में निहित भूमि और पक्की चार दीवारी वाले प्लॉट स्वरूप के फार्म हाउस इस सहायता के दायरे में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह सहायता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अगली फसल की तैयारी में सक्षम बनाएगी और कृषि गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अन्नदाताओं के साथ सदैव खड़ी है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
3: परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि परिवहन विभाग ने सिर्फ 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए जा चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि ये केवल निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा नहीं बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और डिजिटल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है।
5: मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग, हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में हमारे सारे अधिकारी ने मिलकर 10 लाख प्लस हमने पिंक सहेली कार्ड बनाए हैं और हमारी दिल्ली की माता बहनों को उसका लाभ मिले और एक वो प्राउड फील करे कि हमारे पास डिजिटल कार्ड है। जो सपना सोचा था वो सपने की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसका जितना लाभ मिलना मिले मैं उसी की प्रयास में हूं कि ये कार्ड नहीं है, इसको बहुत चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, रिचार्ज करके।
3: उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान श्री सिंह ने वहां के उद्योग संघ, फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों के साथ बैठक की और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को एक मजबूत जल निकासी प्रणाली बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया है कि यहां की आंतरिक सड़कों का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
6: PSIDC में जो भी सड़कें बनने वाली हैं, उनका 36 करोड़ रुपए का टेंडर मेरा हो चुका है। जो अंदर की सड़कें हैं और नाला है, उसका काम तो हम अभी शुरू करा देंगे। जो बाहर की एक बड़ी रोड है और बड़ा नाला है, उसके लिए भी हमने अलग से पैसा मांगा है। सड़कों के लिए, पिछले सड़कों के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए हमने पैसे दे दिए हैं। और ये आपका जो पानी भरता है, इसके लिए मैं आज या कल दो दिन में जैसे भी होगा बैठक करूंगा और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल के दूंगा।
3: लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज देवली विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री के साथ दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्व, वन, दिल्ली पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जनहित से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: और तैयारी अच्छी चली रही थी, तो बहुत मेहनत करने के बाद तो लगता है कि अच्छा रैंक या अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो पहले से उम्मीद तो थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट अब ऑल इंडिया रैंक बनना है तो अच्छा तो लग ही रहा।
1: उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। राजधानी के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में आज स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन किया गया। ये 15 दिनों का स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान है, जिससे इस महीने की 15 तारीख तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन और मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के दूरदर्शिता के अनुरूप स्वच्छता, पर्यावरण की देखभाल, टिकाऊ जीवन शैली और संरक्षण प्रयासों में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को प्रदान की जाने वाली एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय से दिल्ली सरकार के साथ पंजीकृत लगभग 1832 जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। ये योजना केवल उन पंजीकृत जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों पर लागू होगी जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक राहत प्राप्त की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आय संबंधी पात्रता की शर्त को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के सुचारू संचालन के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पात्र जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवार को राहत प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के समान सुरक्षा, पुनर्वास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रवासी परिवार की आय कितनी भी हो या उनके पास कोई अचल संपत्ति हो, इससे राहत प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि एक परिवार में अधिकतम 4 सदस्यों तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत प्रवासी परिवारों को अपने परिवार के मौजूदा सदस्यों की सही जानकारी और उनके आधार विवरण को अपडेट करने का एक और अवसर मिलेगा। इसके अलावा एडहॉक मंथली रिलीफ की बकाया राशि के भुगतान से संबंधित व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले 30 सितंबर 2025 तक की बकाया राहत राशि के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जन सेवा सदन में ककरोला गांव के निवासियों से बातचीत की। द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर द्वारका ककरोला किए जाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर ग्रामवासियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे मार दे।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं और सभी बच्चों को सुरक्षित वातावरण, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समुचित पोषण प्रदान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है।

0: होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 42 रुपए बढ़कर अब 3,113 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज दिल्ली में लगी आग स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में लगी थी, न कि शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में। मंत्रालय का कार्यालय नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में स्थित है, जबकि आग लगने की घटना आईटीओ नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के परिसर में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वीं एशियाई अंडर 20 प्रतियोगिता चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शानदार प्रदर्शन भारत के युवा खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में उनके आवास पर हुआ। वे 89 वर्ष की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक शामिल होंगी। दिल्ली में आज सुबह के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए। दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दी। इससे पंजीकृत लगभग 1,832 प्रवासी परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नई कार

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।

0: गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हेलो जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है आपके? हाय, कैसे हाल चाल है? दोबारा से बोल रहा हूँ यार। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, आनंद के साथ है। वेलकम बैक है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और इस वक्त आज की जो शाम है बहुत ही खूबसूरत है यार। जब ये बारिश हो जाती है ना तो शाम अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। वैसे तो शाम होते होते सिटी की लाइटें ऑन हो जाती है। मुरादाबाद शहर स्मार्ट सिटी में अब जो है बदल गया है। और अगर आप दिल्ली रोड निकलो या आप कांठ रोड निकलो, आपको नजारे ओए होए वाले लगेंगे। लेकिन अब मजे की बात यह है कि आज की शाम ना हमारे रेडियो पे भी ओए होए वाली बातें होने वाली हैं। आज की शाम हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है यार। मतलब ये जो बंदा है ना, अपने आप में रॉकिंग है यार। मतलब देखने में लगता है बच्चा, लेकिन इसका काम है सबसे अच्छा। क्या टैगलाइन बनाई है मैंने, वेरी नाइस। वेल, आज की जो शाम है, मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग ना अपनी सीट बेल्ट जरा बांध लो, मतलब कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज आप ना हंसते हंसते पागल हो जाओगे। आज की शाम आपको शेर व शायरी मिले ना मिले, लेकिन आज आपको ना बड़ा तगड़ा कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर मिलने वाला है। किसी इंसान का जो दिमाग है ना, बहुत ही बारीकी से वो यूज करके लोगों को कैसे हंसाता है, उस क्रिएटिविटी पे आज बात करेंगे। और आज की हमारे शो में जो जान डालने के लिए एक लड़का है ना यार, वो मेरे जैसा यंग है, यंगस्टर है, आज के जमाने का लड़का है, आज का जेंजी से हम बोल सकते हैं, बट इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। तो मैंने बहुत सारी बातें कर दी है, बिना किसी देरी के इनको जो है आपसे रूबरू कराते हैं, मतलब इनसे आपको मिलवाते हैं। एंड वैसे तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में सुना, तो मैं बड़ा शॉक था, मुझे एकदम झटका लगा। मैं क्या भाई ये क्या सुन रहे हैं, क्योंकि इनका नाम है अंधेरा। मतलब आपको भी लग रहा होगा यार ये कैसा नाम है, बट वो तो वही बताएगा कि क्यों रखा गया उसका नाम ये, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या है उसके पीछे की यूएसपी, वो तो वही बताएगा। फिलहाल वेलकम टू एफएम मुरादाबाद मिस्टर अंधेरा, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: हाय,
1: हाय, हाउ आर यू?
2: How are you?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। देख के तेरे को लगता नहीं है तेरी आवाज है, ये दूसरी आवाज है क्या तेरी बॉडी के अंदर? पहले तो मुझे ये बता यार,
2: नहीं, नहीं,
1: क्योंकि हम भी आवाजों की दुनिया में काम करते हैं भाई, बट तेरी आवाज सुन के ऐसा लगता है ये अंदर से कैसी वोकल यूज कर रहा है, क्या कहां, क्या क्या लगा के रखा है गले में तूने, पहले ये बता भाई।
2: भाई कुछ नहीं लगा के रखा है, बस बाय बर्थ ही है आवाज।
1: अच्छा,
2: एक्चुअली ऐसा है कि आवाज बड़ी हो गई।
1: अच्छा, तेरे को पता कैसे चला कि यार मतलब मेरे को आवाज की दुनिया में आना चाहिए या मेरी आवाज इतनी अच्छी है? कभी किसी ने बोला है ऐसा कुछ?
2: नहीं, किसी ने बोला ही नहीं, तभी तो आ गया मैं।
1: वाह, वेरी गुड। कोई बोलता तो फिर नहीं आता।
2: और क्या, वो पता लग जाती ना कि लायक नहीं है।
1: ओ भाई क्या बात है, आप समझ रहे गाइस। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस्टर अंधेरा, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद, एंड आई होप आप अच्छे होंगे भाई। बहुत टाइम के बाद अपन गुफ्तगू कर रहे हैं आज, और मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताया यार, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर अपने बारे में हमारी मुरादाबाद को।
2: या हाय गाइस, आई एम मिस्टर अंधेरा एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। और मैं लगभग 2 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ दिल्ली में, मुरादाबाद में। और मेरा द हैप्पी क्लब करके एक ओपन माइक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे काफी टैलेंटेड लोग आगे परफॉर्म करते हैं, लाइक शायरी, सिंगिंग, रैपिंग, स्टैंड अप कॉमेडी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है और भी लोग करेंगे,
1: और भी लोग करेंगे ऑफकोर्स। सो यार, ये तो बहुत अच्छा बता दिया तूने। आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे यहाँ जा चुके होंगे, जो सुन रहे होंगे उनको लग रहा है अरे यार आज तो भाई आया है, कुछ मजा होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है यार, तुमने बहुत अच्छा अपना तारुफ कराया मेरी मुरादाबाद की जनता से अपने आप को। सबसे पहले जो मुझे लगता है, मैं हर किसी से पूछता हूँ, ये बताओ मुरादाबाद में रेडियो आया है, रेडियो में तुम पहली बार आए हो, तो कैसा लग रहा है?
2: मेरे को तो सही बहुत बढ़िया लग रहा है।
1: कैसा लग रहा है स्टूडियो, लाइट, ये सब? जो लोग सुन रहे जो यहाँ आए नहीं, उनको भी तो फील होना चाहिए ना यार।
2: इट्स वेरी प्रोफेशनल। मैं जब आपसे मिला, मेरे को काफी बहुत बढ़िया वाइब आई यहाँ पे एंटर होती, बहुत पॉजिटिव वाइब आई।
1: थैंक यू सो मच यार, और अंदर आके भी लग रहा है ना कि कहीं बढ़िया जगह बैठे हैं। चलो, वैसे गाइस मजे की बात है कि ये जो कॉन्वर्सेशन आप रेडियो पे सुन रहे हो ना, ये आप देख भी सकते हो डिजिटली, कैसे बताएंगे लास्ट में। वेल, अभी जो है भाई का इंटरव्यू हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी बीच एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट के आते हैं। तो एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर, सुन रही है एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू, और साथ में हमारे हैं मिस्टर अंधेरा। भैया अंधेरा कायम रहे, वो शक्तिमान याद आ रहा है मेरे को।

0: शाम आपकी फैबुलस बना रहा हूँ मैं आर्जियानंद, और साथ में है मिस्टर अंधेरा मेरे साथ हैं। मेरे को नाम लेने में भी घबराहट हो रही है, मेरी जुबान फिसल रही है यार, क्योंकि अंधेरे से ना मेरे को बहुत डर लगता है। और आज मेरे साथ साक्षात अंधेरा बैठा है। आई नो रोशनियां है मेरे स्टूडियो में, बट इसके नाम से मेरे को डर लग रहा है भाई। इस नाम के पीछे कोई यूएसपी है या कोई कुछ, मतलब क्या कैसे पड़ा ये नाम? आई नो तू ये भंडा नहीं फोड़ता है भाई, ये मेरे को अच्छे से पता है, लेकिन कुछ तो मोटा मोटा बता सकता है यार।
1: एक्चुअली बस ये बचपन से ही मैं एक्चुअली क्या डार्क रहा हूँ बाय स्किन, सो दैट्स व्हाई मेरे को बहुत चढ़ाती थी बचपन में कि कालिया कलू कालिया ऐसे करके नाम रख रखा था।
0: अरे तो वो मोटू पतलू में भी आता है, हेलो हेलो मैं हूँ तुम्हारा दोस्त कालिया और मेरे अंदर का कालिया बाहर आ रहा है। नहीं भाई मैं वापस पॉइंट टू आता हूँ। जी भाई टेल मी भाई।
1: सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि चलो इस नाम से थोड़ी फेम मिली रही है तो क्यों ना रख ही लिया जाए।
0: क्या बात है। और तूने इसको अपनी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करके अपना प्रोफेशन में आ गया।
1: जब ये नाम रखा था मैंने तो तब डार्क कॉमेडी करना स्टार्ट ही किया था मैंने।
0: ऑलराइट।
1: फिर जब पता लगा कि जेल भी हो जाती है तो मैंने डार्क कॉमेडी तो छोड़ दी लेकिन नाम रह गया।
0: वेरी नाइस। और वही नाम तुम्हें आगे भी लिया है ना यार, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया यार, वेरी वेरी अमेजिंग। और आज जो है मिस्टर अंधेरा जी हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, तो आपके बारे में बहुत सारी बातें हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। थोड़ा सा अब जो है मैं चाहूँगा कि तुम्हारी कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा तुम्हें खुद को अच्छी लगती है और तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मैं करता हूँ तो मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है?
1: बेसिकली मेरा यही स्टैंड अप कॉमेडी, जो भी मैं हंसाता हूँ लोगों को तो सबसे
0: ये तुम लोग पकड़ते कहाँ से हो? जैसे यार हम जब भी हम किसी कॉमेडियन को देखते हैं, किसी बड़े जैसे कपिल शर्मा देखते हैं या कुछ भी, तो उनके जो पंचेस होते हैं, उनकी जो लाइनें होती हैं बड़ी यूनिक होती है और वो सब पब्लिक से ही लेकर आते हैं। तो यार हम भी पब्लिक में जाते हैं एज अ बीइंग आर जे, हमें भी वो चीज करनी पड़ती है निकालना कॉन्टेंट ये सब, लेकिन तुम लोग इतनी बारीकी से घुस जाते हो उसमें, वो कैसे कर लेते हो यार? मतलब करते करते आ जाता है
1: दिमाग है तो डेट्स हो जाता है।
0: जब आप उस प्रोफेशन में होते हो तो आपके लिए बड़ा इजी होने लगता है।
1: हाँ मतलब आप हमारा क्या है ना, हम हर एक चीज में जोक ढूंढने लगते हैं। हम जैसे भी अगर हमारे किनारे पे भी मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल ही रहा होगा।
0: मैं चाह रहा हूँ ना वो जो चल रहा है उसको बाहर निकाल के हमारी ऑडियंस पे भाई चेप दे। अब तू मेरी जनता वेट कर रही है, बस कोशिश करना कि शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल हो और बस वो वाला है ना, दिस इज वेरी डिफरेंट प्लेस यू नो, इट्स नॉट योर कॉमेडी शो। या सो थैंक यू वेरी मच यार। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मुरादाबाद की जनता को थोड़ा सा हंसाया जाए, कुछ नया और बेहतरीन हो जाए। मिस्टर अंधेरा
1: हमारे घर वाले अगर हमसे कुछ कह दें तो उन्हें तो यही नहीं पता होता कि एआई क्या होता है। आई क्या है
0: यार, ये तो तूने बिल्कुल सही बोला है भाई। मिस्टर अंधेरा ये जो एआई आई है ना, जब से मतलब इसने हमारे काम को बहुत इजी कर दिया, लेकिन हमारे घर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया, क्योंकि वो बेचारे समझ ही नहीं पाते, उनको वो ऋतिक रोशन वाला एआई वो लकी अली साहब याद आ जाते हैं। वेल यार कोई नहीं, होता है यार कभी कभी। वेल मैं चाह रहा था यार मिस्टर अंधेरा, तुम्हारे जब सेशन में हम जाते हैं तो हम हंस हंस के पागल हो जाते हैं, और आज हमारे लिसनर को हमने जो है ये एक प्रॉमिस दिया है कि आज की शाम आप जो है लोट पोट के हंसने वाले हो, तो कुछ तो बढ़िया सा यार आज जो है आपने सुनाना है, क्योंकि आज जनता आपको सुन रही है भाई।
1: लाइक यू नो कि अगर कोई बाहर पीएम या कुछ कहता है कि आपको रिसोर्सेज बचाने हैं या फ्यूल को ऐसे सारे हैं कुछ आ रहा है, तो बाहर के लोग आराम से उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वही चीज हमारे मोदी जी इंडिया में कह रहे हैं, सो देखा है ना कि जैसे मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल बचाओ, तो अगले दिन साइकिल वाला पेट्रोल बवारा होता है घर की टंकी में।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: अभी मैंने एक हफ्ते पहले मिला भी कि भाई तू कहां डाल के पेट्रोल साइकिल चलाता है, तेरे क्या साइकिल की पेट्रोल चूसती है
0: एब्सोल्युटली मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, ये बात सच। अच्छा जब कोई इस तरह की चीजें आती है ना भाई, तो जोक्स और मीम्स तो तुरंत बन जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और जो लोग मतलब साइकिल को भूल चुके थे, जब से ये वाला ट्रेंड आया वापस आ गए सब लोग साइकिल पे आ गए, उसके बाद साइकिल से फिर वापस स्कूटी और अपनी बाइक पे आ गए।
1: ट्रेंड तो आते ही रहते हैं, लाइक यू नो कि एक गिबली ट्रेंड आया था उस टाइम पहले, एआई का ही आया था आई थिंक, एआई के साथ गिबली वाला, मैंने भी डाला था कि
0: उसमें फोटोज चेंज कर रहे थे अपन ना,
1: कर सकते थे। मैंने भी सोचा कि
0: गिबली था क्या था वो,
1: गिबली था,
0: गिबली ओके ओके।
1: मैंने सोचा था कि अपनी एक्स को जलाने के लिए मैंने डाला कि प्रॉम्प्ट मेक माय फोटो विद एनी गर्ल एंड मेक मी मस्कुलर, क्योंकि मैं पतला हूं, तो उसने गर्ल तो ले आया वो, बट मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया
0: भाई साहब। ये तो कुछ ज्यादा ही अलग हो गया है। अच्छा यार मैंने एक चीज और सुनी थी मिस्टर अंधेरा कि तुम ना थोड़ी लड़कियों वाली वॉइस भी करते हो, आई थिंक अभी ये बंद हो गया या अभी भी कंटिन्यू है, ये तुमने बिल्कुल खत्म कर दिया है? टेल मी यार, यार रिव्यू पे मैं चाह रहा था थोड़ा अगर कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि मुझे आई रिमेम्बर याद है हम लोग एक वर्कशॉप करने गए थे, मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, उस स्कूल के अंदर ये बंदा भी वहां बैठ के परफॉर्म कर रहा था और हम वहां पे इनकी वर्कशॉप ले रहे थे बैठ के, तो तब ये तूने आई थिंक किया था है ना, तो वो क्या हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं? नहीं अब आवाज में बेस बन गया तो अब पॉसिबल नहीं है
1: नहीं, बेस तो तभी तो ट्राई कर सकते हैं, डेढ़ साल हो गया कभी तो किया नहीं है
0: ओके okay, इसीलिए कहते हैं अपने टैलेंट को भी बोलना नहीं चाहिए, उसे पकड़ के रखना चाहिए, वो कभी भी काम आ जाता है भाई,
1: कर सकते हैं ट्राई, कोई इशू
0: चलो कोई नहीं, फिर एक गाना सुनते हैं उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे। मैं और मिस्टर अंधेरा यहीं पर है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फटाफट डीएम कर सकते हैं, दिस इज माई इंस्टाग्राम, वेरी वेरी सिंपल, फॉलो कर लो यार, रेडियो वाला आना 95 के नाम से मिलता हूँ, या फिर हमारा ऑफिशियल आईडी फॉलो करो एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिलता है, वहां पे आके फटाक से आप डीएम करो, कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज है तो यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अभी लौट कर आते हैं अमेजिंग गाने के बाद।

0: सरकार रेडियो की कसम खा के कह रहा हूँ, आज की शाम ना मैं हंसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन मिस्टर अंधेरा ने हंसाने की जगह डाला मुझे। मतलब एक तो इन्होंने मेलेडी इतनी वायरल करा दी कि मैं क्या बोलूँ। हाय वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां पर आनंद आपके साथ है और हमारे साथ है मिस्टर अंधेरा। आज की शाम को जो है हम अंधेरे से नहीं रोशनी से भरपूर कर रहे हैं अच्छी बातों के साथ, और थोड़ी सी इसमें चार चांद लगाने के लिए साथ दे रहे हैं मेरा अंधेरा जी। अच्छा मिस्टर अंधेरा, तुम्हारा नाम ही है या कुछ और भी नाम है जो तुम शायद बताते नहीं हो, या कुछ और नाम फैमिली में? यार कोई तो नाम होता है, निकनेम भी होता है, कुछ तो ऐसा होगा तुम्हारा, या अंधेरा ही बचपन से
1: लग गया है? अंधेरा ही है, मतलब निकनेम क्या, मेरा रियल नेम तो कुछ और है पर मैं बताता नहीं किसी को।
0: अच्छा अच्छा, तो क्यों मतलब नाम ना बताने के पीछे कोई स्पेशल रीजन है, कोई स्पेसिफिक कारण, या फिर क्या मतलब, या घर वालों ने मना किया है, किसी ज्योतिष ने किया है मना, बेटा अगर बताया नाम तो सत्यानाश हो जाएगा करियर का, ऐसा तो नहीं?
1: रियल नाम से यार कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था तो डेट्स व्हाई मैंने सोचा अंधेरा।
0: यार एक बात बताऊं, लेकिन इस चीज का ना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, मैंने सुना है जब आप अपना नाम बदलते हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी भी बदल जाती है, ये सच है ना? तो मैं भी सोच रहा हूँ आनंद से आनंदी रख लूं, शायद कोई अच्छी सी जीवन में बाहर आ जाए। वेल आनंदी से मुझे आया याद आया, बैक टू पॉइंट, अभी हम बात कर रहे थे मिस्टर अंधेरा से कि यार तुम कुछ लड़कियों वाला भी मिमिक्री करते हो, आई नो दैट, आज ये मल्टी टैलेंटेड इंसान मेरे साथ है तो क्यों ना इससे फिर सुन लेते हैं कुछ स्पेशल, देखते हैं। चलो भाई कुछ सुनाओ यार, क्या है, तुमने क्या किया था लास्ट टाइम परफॉर्म?
1: शनाया है।
0: शनाया, शनाया क्या कर रही है? वो आलिया भट्ट तो नहीं है ये?
1: नहीं नहीं,
0: स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शनाया,
1: कभी वही हो? नहीं, ओके, अंधेरा की शनाया।
0: ऑल राइट, ठीक है।
2: हाय, हाउ आर यू आनंद?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ मैम।
2: कैसे हो आप और कहाँ रहते हो आप?
0: मैं धरती पे रहता हूँ शनाया जी, आप इतनी अच्छी आवाज में बात करोगी तो मैं भाग जाऊंगा स्टूडियो छोड़ के।
2: आनंद जी आपने मुझे बताया नहीं कि आप इतना अच्छा एफएम मुरादाबाद 89.6 MSZ, इतना बड़ा नाम है आपके एफएम का।
0: ये मैं आपको बताता हूँ मिस्टर, सॉरी मिसेस सलाया, आप जो भी है मिसेस हैं या अभी नहीं है, आई हैव नो आइडिया, ये एफएम मुरादाबाद 89.6 ये एक फ्रिक्वेंसी है और ये एक मेगाहर्ज होता है, मतलब बेसिकली एक फ्रिक्वेंसी के साथ ही टाई वर्ड होता है, तो ये हमारा बेसिकली जब आप उसको गाड़ी में ट्यून इन करोगे तो आपको ये नंबर चाहिए होंगे, जब आप जहाँ पैसा रखते हो ना उधर आप तिजोरी लॉक करते हो तो उधर कुछ कोड भी डालने पड़ते हैं, याद है शनाया जी? तो वो नंबर जब तक आपके पास नहीं होंगे ना तो आपका लॉक खुले नहीं, जैसे ये नंबर है जब तक आप ये नंबर डालोगे नहीं ना गाड़ी पे हमें आप सुन नहीं पाओगे।
2: सो ये आपकी प्रोटेक्शन है,
0: एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन, आजकल उसके बिना कोई गुजारा ही नहीं है, हर जगह पे आपको जो है प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है, अपनी सेफ्टी अपनी सावधानी अपने रख के चलनी है।
2: आप भी अंधेरा के साथ रह रहे डार्क होते जा रहे हो,
0: एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है। अब मैं चाहूंगा कि शनाया जी आप अपने ओरिजिनल अवतार में आ जाओ, मैं नहीं तो भाग जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। वेल टू बी ऑनर, बहुत अच्छा आपने बोला, एंड आई थिंक उस टाइम पे कुछ ज्यादा अच्छी आवाज थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई है, ये कह सकते हैं कि तुमने बहुत टाइम की बटर
1: लेकिन
0: तुम अभी हल्के के हल्के हो, वो बात अलग है। सो आगे बढ़ते हुए गाइज मैं आपको फिर से बता दूं, मिस्टर अंधेरा हमारे साथ हैं, ये एक कॉमेडियन है, बेसिकली ये डार्क कॉमेडी करती है, आई थिंक इनका एक
1: बहुत बहुत
0: है ना, अच्छा सारी कर लेते हो, वेरी नाइस वेरी नाइस। किसी की मिमिक्री वगैरह भी करते हो क्या यार?
1: नहीं नहीं, मिमिक्री तो नहीं करता।
0: ऑल राइट। अच्छा जो कॉमेडियन होते हैं ना मोस्टली मैंने देखा है किसी ने किसी को पकड़ के उस पर जोक बनाते हैं या फिर उसकी मिमिक्री करके ही पूरा सेशन एंड कर देते हैं।
1: हाँ।
0: तो आपका क्या रहता है जब आप ऐसा कुछ करते हो, तो अभी कुछ सुना रहे हो?
1: नहीं मैं मतलब बेसिकली मिमिक्री वगैरह करके तो नहीं करता हूँ,
0: लेकिन आप जब आपके शोज में जाते हो तो आप कौन कौन से टॉपिक पे बात करते हो जरा बताओ?
1: लाइक गर्लफ्रेंड, इंडिया के बारे में, सिटीजंस के बारे में, और पेरेंट्स हो गए।
0: चलो पेरेंट्स के ऊपर कुछ हो जाए यार, अच्छा से मतलब अच्छा वाला होना चाहिए, मतलब अच्छा तो अच्छा ये जो तेरे को अच्छा लगता है, मतलब जैसे तेरे को अच्छा लगे व्हाटएवर वो तू सुना सकता है मेरे लिसनर्स के लिए।
1: लाइक आपने अभी देखा होगा कि एक ट्रेंड आया था, ये गिबली ट्रेंड, एआई ट्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं, ब्लू ड्रम ट्रेंड।
0: ओके ये कौन सा ट्रेंड आ गया भाई, ये मेरे को नहीं पता।
1: अच्छा आपकी शादी हो गई?
0: नहीं भाई अभी तो मैं सिंगल हूँ।
1: सिंगल हो तभी तो?
0: हाँ इसीलिए ना मेरे को पता नहीं है, कुछ चीजें ना पता हो तो ही अच्छा रहता है यार। मैं तुमको सच बता रहा हूँ। वेल आगे बढ़ते हैं, हाँ प्लीज बी कंटिन्यू यार बताओ।
1: शादी करो आप, आपको नीले ड्रम के बारे में पता लगेगा।
0: यार ऐसा है मुझे नीला ड्रम से मुझे याद आया, मेरे घर में एक बहुत बड़ा नीला ड्रम है, उसके अंदर हम हमेशा पानी भर के रखते हैं, जब भी ज्यादा गर्मी होती है तो उस पानी को यूज करते हैं, बिकॉज उसके अंदर वाटर ठंडा रहता है हमारा, आजकल गर्मियां इतनी है ना, टैंक के ऊपर जो पानी वो पूरा पक जाता है, गजब है यार गजब है। हाँ जी, तो मिस्टर अंधेरा ने जो नीले ड्रम की कहानी शॉर्टली मेरे को बताई ना, मेरे को समझ में आ गया भाई चाहे जो हो जाए शादी तो मैं करके रहूंगा यार, कहीं ना कहीं तो होगी मेरे सपनों की रानी जो कर रही होगी मेरी प्रेम कहानी का इंतजार। इंतजार से मुझे याद आया कि ये कुछ सुनाने वाला है मेरा यार, क्योंकि ये मिस्टर अंधेरा ना गर्लफ्रेंड को लेकर बड़ी सारी कुछ ना कुछ करता रहता है खुराफातीज, और आजकल का प्यार यार प्यार नहीं हो गया, मतलब ऐसे लगता है मतलब जादू टोना बेबी टोना सब एक साथ में हो रहा है यार आजकल तो ना, समझ ही नहीं आ रहा है भाई साहब, कभी कोई भी ब्लॉक कर दे रहा है, कभी कोई भी दिल तोड़ के भाग जा रहा है, मतलब पता नहीं रुमाल हो गया रोटी हो गया क्या हो गया, प्यार हो गया, समझ नहीं आ रहा है भाई। इसमें कुछ है यार तेरे पास तो भाई सुना दे भाई।
1: मैं अपना ब्रेकअप की थोड़ी कहानी सुना सकता हूँ।
0: हाँ भाई,
1: ब्रेकअप कैसे होता है एक्चुअली?
0: ठीक है,
1: ब्रेकअप जब किसी का होता है तो लोग शायर बन जाते हैं। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया, मेरा तो खुल गया एकदम कि हाँ चलो कही पत्ता कटाई। वो मेरा एक्चुअली ब्रेकअप जो हुआ था वो हुआ था, वो मुझसे कहती रहती थी कि तुम मुझे समझते नहीं हो, मुझे समझते नहीं हो, हर लड़की कहती है। मैंने उस एक दिन गुस्से में कह दी कि मैं तुम्हें कैसे नहीं समझता, तुम मुझसे आज कुछ भी पूछ लो मैं उस चीज का जवाब तुम्हें दे दूंगा।
0: ठीक है,
1: उसने मुझसे कहा अगर तुमने नहीं दिया ना तो ब्रेकअप। वो भाई उस दिन ब्रेकअप बनाने का मूड से आई थी, उसने मुझसे कहा तुम इसका जवाब दे के बताओ। बिल्लू बग्गे बिल्ले यहाँ तक की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ तक की करेंगी, इसका मतलब क्या है?
0: उसने तेरे से पूछा? अच्छा तो तूने इसका मतलब बता दिया?
1: नहीं भाई।
0: या फिर सीधा काके को पकड़ के लिए आया था?
1: भाई क्या करता है, की करेंगी भाई बगलो।
0: यार ये तो आज तक खैर हमें भी नहीं पता, लेकिन गाना हमने बहुत बार सुना है यार ये वाला। अच्छा वेल, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया तेरा?
1: दैट्स व्हाई मैं जवाब समझ नहीं पाया ना उसे।
0: अच्छा ओके, मतलब वो मूड में आई थी फिर तेरी गर्लफ्रेंड। ऑल राइट, उसने सवाल ही ऐसा पूछा उसका जवाब नहीं था।
1: yeah.
0: तो फिर तुझे समझ आ गई कहानी अब खत्म हो गई है।
1: yes.
0: भाई साहब बड़ा तगड़ा था लेकिन इसका स्टोरी। एनीवे गाइस, मजेदार बातें चलती रहेंगी इसके साथ हमारी, आप कहीं मत जाइए। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद जल्दी से लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि बातचीत के साथ साथ गीत संगीत अगर हो जाए तो फिर प्रोग्राम और भी जबरदस्त हो जाता है। एक बढ़िया सा गाना, उसके बाद लौट कर आ रहा हूँ, कहीं मत जाना। सुन रही है FM मुरादाबाद 89.6 आपकी शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: वेलकम बैक। इस गाने के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं आनंद को और मेरे साथ है मिस्टर अंधेरा। अंधेरा यहाँ पर आया, अकेला नहीं आया, एक अपने साथ उजाला भी लेकर आया है, अंधेरा प्लस उजाला। भाई इसका नाम क्या है? ये बंदा बड़ा अच्छा लग रहा है। जब ये आया तो मेरे को लगा पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है, बट पता चला वो इंडिया का ही है। मैं मतलब अलग ही दुनिया में खो गया था, बट ही इज वेरी नाइस पर्सन। क्या नाम है भाई का?
1: भाई का नेम है केडीप।
0: केडीप,
1: या ही इज अ रैपर।
0: अरे वाह, क्या बात है, ही इज अ रैपर। तो हम सोच रहे हैं रैपर भाई को थोड़ा मौका दें, उनसे कुछ अच्छा सा रैप सुने। तो भाई हम रैपर को बुलाता है और उससे कुछ अच्छा सा सुन के आता है। तो मिस्टर अंधेरा थोड़ा हमको टाइम देगा तू? चलो जी, अभी हम लौट कर आता है तो हम रैपर को साथ में लाता है। तो अभी मेरे साथ में केडीप आ गया स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत करती मैं। वेलकम टू एफएम मुरादाबाद, जोरदार ताली बजाता मैं। तो कैसे हैं आप केडीप इन द हाउस? हाय, हाउ आर यू ब्रो?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे।
0: थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी आप कितने बड़े हो? मतलब वैसे तो बहुत बड़े
2: हैं। अभी 22 का हूँ।
0: 22?
2: या आई हैव बीन इन दिस फ्रॉम 10 इयर्स।
0: अरे वाह, वेरी नाइस। अभी आप मुरादाबाद में कहाँ रहते हो, क्या करते हो?
2: डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मगर मैं करता तो अंधेरा के अंडर काम करता हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है। अंधेरे में जो कोई काम करता है ना, उसका काम बहुत सफल होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब आप स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट यू डू?
2: राइट नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन हिस्ट्री एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड रिप्रेजेंटिंग माय धारचूला।
0: मैंने पहले कहा था ना, ये लड़का मुझे दूसरी दुनिया से लग रहा है गाइस, तो ये उत्तराखंडी लड़का है। तो आप उत्तराखंड में मतलब कौन कौन है आप? पहाड़ी है, गढ़वाली है, कुमाऊं है?
2: बेसिकली उत्तराखंड को तुम डिवाइड करो, गढ़वाल कुमाऊं, हम सारे उत्तराखंडी हैं।
0: आई नो सारे उत्तराखंडी है, लेकिन एक सबका एक जोनर होता है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कुमाऊं में हैं, कुछ जौनसारी हैं, कुछ पहाड़ी हैं, कुछ उत्तराखंडी में, तो अलग अलग लोग आते हैं। उत्तराखंडी तो पूरा है ही है, तो समावेश है उत्तराखंड का, लेकिन उसमें अलग अलग लोग रहते हैं ना।
2: हाँ ऑब्वियसली हर जगह पे, जैसे हम यूपी में ही देख रहे हैं, अलग अलग जगह है। अब उनको डिवाइड करके बोलेंगे तो कितनी चीजें बन जाएंगी, बट एज वी स्टैंड यूनाइटेड तो ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए।
0: ओके ओके, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया और मेरे को वो कर दिया, जागो प्यारे जागो। ठीक है, सो मैं तेरे को उत्तराखंडी बोलूं?
2: जो बोलना है बोलो, केदीप बोलो, केदीप
0: केदीप केदीप, ठीक है ठीक है। सो अभी तुम इधर स्टडी कर रहे हो या पूरी फैमिली के साथ रहते हो? साथ
2: या मैं बचपन से इधर ही रहता हूँ।
0: अच्छा, इधर ही रहते हो, ऑल राइट, चलो बहुत ही बढ़िया। तो अभी तुम क्या सुनाने वाले हो? तुम वैसे रैप वैप जो करते हो, अभी मैंने सुना मिस्टर अंधेरा से कि ये आपका मतलब पार्ट टाइम रहता है या आपका हॉबीज है, कैसे इसको आप मतलब यू नो करते हो? सैटिस्फैक्शन मिलता है जब करते हो तो।
2: हाँ
0: ऐसा ना, वेरी नाइस। कभी पापा वगैरह के सामने किया है?
2: हाँ करा था, जस्ट अभी तो मतलब लास्ट मंथ
0: किया था। तो उन्होंने क्या अप्रिशिएट किया?
2: नहीं, जीरो रिएक्शन। जब कुछ कर लूंगा तभी होगा।
0: हाँ वही होता है यार, हर इंडियन फादर्स का ये रहता है। कोई बात नहीं, पानी चाहिए आपको? खांसी हो रही है?
2: नहीं नहीं, इट्स गुड।
0: ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्यों तो कुछ सुनाओ यार हमारे लिसनर को, आप कोई बढ़िया सी रैप सुनाओ।
2: तो रिसेंटली मैंने एक गाना अपलोड करा था, ब्लू बर्ड, इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीवन जो खुद को ब्लू बर्ड मानता है।
0: ठीक है,
2: ब्लू बर्ड इज बेसिकली अ पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर हिज ड्रीम, और वो दुनिया की भीड़ भाव में खो चुका है। तो फिर इट्स अ मैसेज टू हिम कि उस चीज से बाहर आना है, यू हैव टू कम फ्रॉम दैट बबल एंड कुछ करना है लाइफ में।
0: ओके,
2: सो इट बिगिंस लाइक, जब तक तुझ पे नहीं है सक्सेस तक देता नहीं है ध्यान कोई, बेटर मेकर राइट चॉइस, खुद के लिए फाइट बॉय, गो एंड गेट अ लाइफ बॉय, लाइफ बॉय तुझे देती जॉय बॉय, साउंड ऑफ लिबरेशन, गो एंड गेट अप, इट्स योर टाइम बॉय, ब्लू बर्ड ना ब्लू स्काई, धीरे मेक टाइज विद योर इसी का थिंग वाइज, कीप अ चिन हाई लिस्ट एंड गिव फाइट, जरूरत नहीं फर्स्ट आई या हार जाए, माय डैड बट डा लाइक माय डैड, प्ले लाइक माय गाइस, ओपन वाइड एट गेट, समन करो सारे भाई, असारे भाई है तब भाई मेरे साथ करे सारे वाइब, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ bluebird flying high away from the cruel world, it's the story of a bluebird flying high away from the cruel world. So yeah, that's it.
0: वेरी नाइस यार, दैट्स वेरी नाइस। देख के लगा नहीं था इतना अच्छा भी गाता होगा यार, ये तो बड़ा मतलब छोटे वैक्यूम में बड़ा धमाका वाला कमाल कर दिया यार भाई तूने, वेरी नाइस। अच्छा अभी जो तुमने परफॉर्म किया, खुद से किया है क्रिएट?
2: या
0: ये किसी का सुना हुआ है? ये किसी ने किया हुआ है?
2: खुद का है,
0: खुद का है। अरे वाह, इसको थोड़ा सा बता सकते हो इसका जो आपने परफॉर्म किया है? बहुत सारी ऑडियंस को अगर नहीं समझ आ रहा तो क्या कहना चाह रहा है ये रैप बेसिकली?
2: ओके, लाइक स्टार्टिंग लिरिक्स है, जब तक तुझ पे नहीं है सक्सेस तब तक देता नहीं है ध्यान कोई, बेटर मेकर राइट चॉइस, खुद के लिए फाइट बॉय, इट्स अ प्लेन मैसेज टू a person who is fighting, who wanna fight for his dream. तो भाई कर भाई, जब तक तेरे पे नहीं है कुछ तो सामने वाला बोलते रहेगा, और जब तेरे पे कुछ हो जाएगा तो वो शान तेरी तारीफ करेगा,
0: तालियां भी बजाएगा पीछे बैठ के.
2: That's a straight meaning कि जब तक तुझ पे नहीं है सक्सेस तब तक देता नहीं है ध्यान कोई. Better make a right choice, खुद के लिए fight boy, go and get a live boy, live boy, तुझे देती joy boy, sound of liberation, go and get up, it's your time boy, blue bird in a blue sky, धीरे make ties with your isika, think wise, keep a chin high, let's stand and give fight, जरूरत नहीं first try या हार जाए, might die.
0: क्या थे? Very nice sir, बहुत ही बढ़िया. Once again मजा आ गया मुझे. Guys भाई का rap सुन के मैं एक पानी की bottle इसको देता हूँ, गले में खिचखिच दूर हो जाएगी, और आप ये गाना सुनो, इसको सुनते ही वापस आते हैं.

0: हमारे साथ स्टूडियो में केदीप है. वेलकम बैक. वंस अगेन यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर भाई को हल्की हल्की खांसी हो रही है. शायद बारिश का असर है, या फिर कह सकते हैं मिस्टर अंधेरा के साथ रहने का असर है. आई डोंट नो, ये तो इससे पता चलेगा. वेल, हाउ आर यू ब्रो? मजा आ रहा है तुम्हें स्टूडियो में आके? पहली बार आए हो?
1: यस सर, बहुत क्रेजी वाइब है.
0: पहली बार आए हो?
1: यस सर.
0: जो रैपर्स लोग होते हैं उनको इस तरह की वाइब चाहिए होती है. आपको कैसी लग रही है? टेलेस.
1: बहुत बढ़िया है, कभी आऊंगा रिकॉर्ड करने कुछ.
0: हाय हाय हाय, वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम. अच्छा, मैं अभी माइक के पीछे बात कर रहा था तो ये मेरे को बता रहा था कि पिथौरागढ़ करके इसने मुझे जिक्र किया, वहाँ पे कोई एरिया बता रहे थे ना भैया.
1: yeah.
0: वहाँ पे तो आपने बताया आपकी लैंग्वेज खुद की है बेसिकली.
1: yeah.
0: ऐसा तो मतलब ये कहाँ पर, आप पिथौरागढ़ में कौन सा एरिया है जो आप बता रहे थे अभी?
1: बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड. उसके अंडर जो है हल्द्वानी के ऊपर जाते रहेंगे तो पिथौरागढ़ आता है.
0: पिथौरागढ़ सबको पता है.
1: पिथौरागढ़ के अंडर फिर आता है मुनस्यार, सबसे ज्यादा लोग जानते हैं. और उसके बाद आता है धारचूला.
0: धारचूला, ऑलराइट. हाँ, तो मतलब धारचूला में अलग लैंग्वेज है.
1: हाँ,
0: बेसिकली
1: धारचूला में हमारे लोग रहते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं. बेसिकली आई एम अ ट्राइबल.
0: ओके,
1: तो हमारी कम्युनिटी को बोला जाता है RUNG, रंग.
0: ऑल राइट.
1: तो हमारी एक खुद की लैंग्वेज है, उसे भी रंग ही बोला जाता है.
0: अरे वाह, वेरी नाइस. और आपने जो स्टूडियो में रंग भरे हैं उसके लिए मैं भी आपको रंगीन ही बोलूंगा. मजा आ गया है भाई, थैंक यू सो मच. अच्छा, तो अभी तुम और कुछ भी सुना रहे हो यहाँ पे?
1: हाँ, क्यों नहीं.
0: ठीक है, एक और बढ़िया सा सुना दो यार, कुछ ऐसा. तो गाइज आप भी तैयार हो जाइए.
1: देंगे धोती खोलियां लौंडे बावे मस्ती खोर, तेरे जैसे 32 और हमसे ना तू बातें छोड़. अकेले में करता हूँ खोज, गएंगे साथ तो होती है मौज. बोझ को कलश में डाल के दिया है घोलो, लेता हूँ इसी की डोस. लिखू मैं स्ट्रीट ना लिखू मैं सॉस, कॉर्ड टाइड ये दे देती मौत. लिखता मैं घाटी और इसी की बोल, पूछता देवता बजा के टोल. बदलाव संगीत लाएंगे दौर, आएंगे वापस जो गए थे छोड़. तोड़ूंगा सारे स्टीरियो थॉट, ये गुजे आवाज पिंजे थे तोड़. छोटा मैं घर का लड़का, ध्वनि को सुन के मारता तड़का. भाई से चढ़ा था रैप का चस्का, तब से तलब न लड़का थमता. पापा के पैसों से खर्च चल का, मन के खुद का करता धरता. कितने साथ फर्क नहीं पड़ता, लांगू मैं दूरी बना दू जो रास्ता. ऑल माइट मेरी कलम चले करे वॉर क्राय, कितने संकी घोड़े करे स्मूथ राइड. वाइड विजन मेरा करूँ वादी गाइड, मैं बंदा पहाड़ी फ्रॉम रंग ट्राइब. यो,
0: क्या बात है यार, क्या बात है. वेरी वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया, गजब यार. आप लोग इतने एक सांस में बोलते हो, आपको गले में दर्द नहीं होता यार? कभी कभी हमें भी दर्द होने लगता है बोलते हैं तो.
1: होता है
0: बट वो प्रैक्टिस हो जाती है ना. वेरी नाइस यार, आप तो, आपको तो मुझे लगता है करना चाहिए. आप अच्छा कर रहे हो, आपका फ्लो बहुत अच्छा है. एंड ऑल द वे बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आई होप आप अच्छा करो और अगली बार जब रिकॉर्ड करो तो पापा बोले वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया. वाह वाह वाह, वेरी नाइस. वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार ब्रो, अच्छा लगा. एंड जाते जाते अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हो अपने जैसे भाइयों से, तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे?
1: मैं जस्ट एक मैसेज देना चाहूंगा.
0: प्लीज श्योर.
1: इफ यू आर परसुइंग एनीथिंग और तुम्हारा कोई ड्रीम है तो मैं चाहूंगा कि वो तुम करो भाई. किसी का वेट मत करो कि कोई आके तुम्हारी हेल्प करेगा या फिर वो करेगा तो मैं करूंगा. जस्ट गो विद द फ्लो, करो जो मन की है. और इससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मुरादाबाद के अंडर तो मेरे से आके कांटेक्ट करें.
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मेरे को भी चाहिए सर. मैं आपसे कांटेक्ट जल्दी करूंगा, चिंता ना करें. वेरी वेरी सून. सो थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा. एंड ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोगों की हमें तलाश होती है. आप भी अपना कोई भी टैलेंट है तो हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या तो आप RJ आनंद को कर सकते हो, ऑफिशियल पेज पे कर सकते हो. हमारा इंस्टाग्राम है FM मुरादाबाद 89.6 और मेरा इंस्टाग्राम ID है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से. वहां पर आपको ये कॉन्वर्सेशन देखने को भी मिलेगी वेरी वेरी सून. एक काम करते हैं, मिस्टर अंधेरा को वापस बुलाते हैं. हेलो मिस्टर अंधेरा, वेलकम बैक यू वंस अगेन. आपको डर तो नहीं लग रहा ना? वैसे आपका नाम ही अंधेरा है, मुझे डर लगना चाहिए. अरे यार क्या बात है, बहुत अच्छा लगा तुमने ये बात बोल दी. लेकिन तुम्हारे साथ जो छोटे बैगी में बड़ा धमाका था, बहुत ही कमाल का था, सुपर फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा लगा. एंड आई एम श्योर अब जो है मेरा और आपका जाने का समय हो रहा है, लेकिन जाते जाते आप कुछ बढ़िया सा सुना दो. और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा था आज, क्योंकि तुम हमेशा जब परफॉर्म करते हो यार तो तुम्हारे सामने ढेर सारी ऑडियंस होती है, लेकिन यहाँ तुम परफॉर्म कर रहे हो तो कोई नहीं, लेकिन इसके माइक के बाहर इतने लोग तुम्हें सुन रहे हैं, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो.
2: ओके, बाय द वे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था आज का. आई नो कि यहाँ पे ऑडियंस नहीं थी, लेकिन ऑडियंस मेरे को बाहर बहुत ज्यादा सुन रही है. सो थैंक यू सो मच जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं. एंड आई होप आप लोगों को जो भी मैंने आज किया वो आपको पसंद आए.
0: ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट.
2: थैंक यू सो मच RJ आनंद को मेरे को यहाँ बुलाने के लिए.
0: यार ये बड़ा रैंडम था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मतलब रात को मेरे दिमाग में एक थॉट आया, सुबह मैंने इसको मैसेज किया और ये दोपहर में यहाँ आ गया.
2: रात को अंधेरे में आया.
0: एग्जैक्टली यार, मतलब तेरा नाम अंधेरा है तो अब ये टैलेंट भी अंधेरे में निकलना चाहिए भाई. वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट मिस्टर अंधेरा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टॉक करके. गाइज आपको थोड़ी सी हंसी आ रही होगी कि इसका नाम बड़ा डिफरेंट है. एंड आई डोंट नो क्यों अपना नाम रिवील नहीं कर रहा है. मैं जल्दी इसके पापा से बात करके आपको बताऊंगा इसका नाम है क्या. ये तो यही नहीं बता सकता है, दिक्कत ये है ना, पापा का पता भी तो पता हो, वो भी नहीं पता चलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा. वेल अगर आप मिस्टर अंधेरा को जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप कैसे जान सकते हैं वो ये आपको जरूर बताएगा. मंडे होते हैं ना, मंडे मंडे ब्लूज होते हैं, मंडे का दिन होता है हेडेक होता है थोड़ा सा, लोग ऑफिस से घर आ रहे हैं इस टाइम पे, रात का समय लोग ऑफिस से घर जा रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ में समय बिताएंगे, बहुत हेडेक रहा आज के दिन, मैं समझ सकता हूँ गाइस आपका, मेरी जैसा हाल होगा, उनके लिए कुछ कहना चाहते हो, कुछ कुछ दो लाइनें जो वो हंस जाएं?
2: कुछ नहीं भाई, अपना करते रहो जो कर रहे हो, और क्या मतलब
0: कोई जोक है आपके पास इसमें उनको हंसाने के लिए?
2: बीवी से लड़ाई कर लो और क्या है, सबसे बढ़िया मूड बन जाएगा तुम्हारा।
0: मतलब कहना क्या चाहते हो, एक तो ऑफिस में इतनी ज्यादा सुन ली, अब घर पे ही वो यही सुने यार,
2: और क्या बहुत भाई खत्म करो किस्सा।
0: भाई देखो ऐसी बात है ना, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसकी शादी होने दो, उसके बाद ये पूरा अच्छा हो जाएगा, मैं आपको रिटर्न में बता रहा हूँ। वेल गाइस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, आपके ब्रदर आपके, थैंक यू वेरी मच। और एक लड़की बहुत शांत होकर उसने हमारा पूरा शो सुना है, वेरी वेरी शाई गर्ल चुपचाप होकर सुन रही है शांति के साथ और मुस्कुरा रही हमारी प्यारी ऑडियंस बनके। कौन है ये, इसका नाम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट टाइम जरूर आपको मिलवाएंगे। फिलहाल अंधेरा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू वेरी मच। बट अगर कोई ऑडियंस आपके साथ आना चाहती है, आपके सेशन में आना चाहती है, तो कैसे वो आपसे कनेक्ट हो सकती है, थोड़ा बताओ क्या सोशल मीडिया आपके पेजेस हैं?
2: हमारे दो सोशल मीडिया है बाय द वे, मेरा पर्सनल मिस्टर डॉट अंधेरा करके इंस्टाग्राम, एंड हमारा यूट्यूब पे द हैप्पी क्लब करके है, और इंस्टा पे भी द हैप्पी क्लब डॉट एमबीडी करके है, जहाँ पे किसी भी कोई भी टैलेंटेड परफॉर्मर है जिन्हें परफॉर्म करना है, अपना टैलेंट आगे बढ़ाना है अहमदाबाद में, सो
0: वो आपसे कोऑर्डिनेट कर सकता है ना। तो आपके सेशन कब होते हैं, संडे मंडे?
2: संडे
0: संडे, एवरी संडे, एवरी संडे। कल था मतलब तुम्हारा?
2: या, कल था हमारा।
0: ऑलराइट, वेरी नाइस यार, तो हर संडे लोग आते हैं?
2: यस सर, रोज हर संडे हमारे शोज होते हैं, और इसमें काफी अच्छी ऑडियंस आती है, लगभग हमारे पास 50 प्लस गैदरिंग का एरिया है, वहाँ 50 ऑडियंस आती है।
0: वेरी गुड यार, वेरी गुड, अच्छा इतनी कम एज में इतना अच्छा यू नो इनिशिएटिव लेके उस पर काम करना, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहो और एक अच्छा नाम और एक अच्छा काम हासिल करो, काम तो ऑफकोर्स आप कर ही रहे हो, एंड फ्यूचर में दोबारा भी आप मुरादाबाद में जरूर आओगे, मतलब मेरे रेडियो पर जरूर आओगे, मुरादाबाद से तो है ही ये इंसान। अच्छा मिस्टर अंधेरा, एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, अभी स्टडी चल रही है ना?
2: हाँ जी, अभी स्टडी चल रही है।
0: क्या चल रहा है तुम्हारा?
2: सीएस।
0: देखो यार, ये पढ़ाई के साथ साथ अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कर रहा है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज़ कर रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि टैलेंट हर किसी में होता है, ज़रूरत है उसे सही समय पर पहचानने की और उसे तराशने की और उस पर काम करने की। अगर आपके
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ। प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
9: कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
10: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
11: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
9: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
11: I am confident that this comprehensive agreement
12: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
11: Of our shared future.
9: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड

0: शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में

0: निर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
7: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपके शहर का सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप, और प्रोग्राम का नाम
8: चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
7: क्या बात है।
8: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंगल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
7: जी जी प्लीज।
8: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से। फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से। उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
7: क्या बात है।
8: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या।
7: जी।
8: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
7: हाँ जी।
8: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 इयर्स।
7: हाँ जी।
8: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
7: Alright.
8: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। Okay. So, समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
7: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है?
8: जब बेबी डिलीवर होता है एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है हेल्दी है तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं, कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा, ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए, ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीज़ों का ध्यान दें।
7: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
8: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
7: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
8: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
7: ऑलराइट,
8: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं। ठीक है, इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
7: जी।
8: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
7: ओके।
8: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, तो
7: जी जी।
8: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
7: ओके,
8: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
7: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
8: बेबी को 2-3 आवर्ली, इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं उनको नहीं पता होता है। वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
7: जी।
8: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
7: Okay.
8: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
7: हाँ जी,
8: उसमें
7: हाँ
8: हमारे
7: जी।
8: फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद ज़रूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
7: बहुत ही बढ़िया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
8: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
7: बिल्कुल बिल्कुल,
8: है ना,
7: बिल्कुल।
8: वो कॉमन कॉमन चीजें होती हैं। सबसे पहले
7: कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
8: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं। हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ, तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट, सब में किसी न किसी को नोस ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है, तो वो इजीली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डाइपर तो वेट नहीं है। कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डाइपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
7: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
8: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है। मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
7: ठीक है, बहुत
8: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
7: जी,
8: है
7: जी, जी,
8: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो। डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है। हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहनाने हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
7: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
8: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
7: जी,
8: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
7: हाँ जी, हाँ जी,
8: ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
7: हाँ जी, हाँ जी,
8: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
7: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
8: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूँगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
7: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंगल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
8: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यू बॉर्न प्री टर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेरेंट्स पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले हैं तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कत करते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफ़ी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद ज़रूरत होती है, यहाँ पर हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
7: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश जाते जाते।
8: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
7: हाँ जी।
8: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
7: हाँ जी हाँ,
8: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलपे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखें। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
7: बिल्कुल सही कहा,
8: कि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें,
7: बिल्कुल,
8: और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
7: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू, और FM मुरादाबाद RJ आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
4: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
9: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
10: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री,
9: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
11: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ और मेरे साथ अखिल जी हैं, जो आप सभी के लिए लेके आते हैं यानी कि शेर और शायरिया, यानी कि दिल की बात दिल तक। तो आप भी चाहते हैं कि दिल की बात दिल तक पहुंचाना है तो हमें प्यारा सा मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज करके अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सन जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, ऑल गुड।
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज की शाम होगी हमारी कुछ खास, कुछ पुराने किस्से, कुछ मीठी यादें, कुछ दोस्तों की बातें और कुछ दिल को छू लेने वाली शायरियाँ। कहते हैं कुछ यादें किताबों में नहीं मिलती, वो दिल के किसी कोने में बस जाती हैं।
0: क्या बात है।
1: वक्त गुजर जाता है लेकिन वो यादें हमेशा मुस्कुराती हैं।
0: क्या बात है जी।
1: तो आपके साथ भी कई सारी ऐसी यादें होंगी जो मुस्कुराती होंगी धीमे धीमे करके।
0: हाँ, बहुत सारी है मेरे पास। तो कभी कभी मैं बैठी रहती हूँ तो मेरे को अचानक याद आ जाता है तो मैं हंसने लग जाती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं क्या पागलपन हो गया, इसके अंदर क्या पागलपन चढ़ गया है। मैंने कहा तुम नहीं समझोगे, ये गहराई वाली बातें हैं।
1: तो हम अपने श्रोताओं से भी कहेंगे कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप मंद मंद मुस्कुरा जाते हैं तो शेयर करें हमारे साथ, और क्या पता उस मुस्कुराहट में हम भी हों आपके साथ।
0: बिल्कुल, अगर देखिए बात हो दिल की तो वो कनेक्शन तो भिड़ ही जाता है ना।
1: बिल्कुल सही बात।
0: तो चलिए श्रोताओं, अभी मैसेज करते रहिए। फिलहाल के लिए बहुत ही प्यारा गाना, चल तेरे इश्क में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, गदर टू मूवी से गाना हम इंजॉय करते हैं। सो अगर आप ट्रैफिक में हैं तो हौले हौले गाड़ी चलाइए और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि यह गाना बहुत प्यारा है।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: हाँ जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ और अखिल जी मेरे साथ है। समय की बात करूँ तो 9:27 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 1 जून, और आपने बहुत ही प्यारा गाना सुनना है कि चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, गदर 2 मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। तो सच बताओ, कुछ गाने ना अपने जिंदगी से रिलेट करते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, क्यों अखिल जी? सही बोला ना मैंने?
8: बिल्कुल सही, पुरानी यादें जो होती है ना
7: तरोताजा हो जाते हैं
8: दोस्तों के साथ जो होती है ना, वो पुरानी यादों का अलग ही बात होता है। क्या आपको अपने स्कूल टाइम याद है?
7: अरे किसको याद नहीं रहेगा ये बताओ आप।
8: वो लास्ट बेंच पे बैठना, वो लंच।
7: मैं कभी लास्ट में नहीं बैठी।
8: मैं तो लास्ट बेंच।
7: हाँ, मैं
8: बैक बेंचर। वो बिना वजह हंसना। और आज हम सब बड़े हो गए मगर तब भी वो जो पुरानी बात है ना, वो बहुत ही दिल के करीब रहती है।
7: आपने स्कूल के बात करी तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? एग्जाम के टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत से बच्चे पर्चे बना के ले जाते हैं ना नकल करने के लिए, तो मैंने देखा पहले दिन तो मैं कुछ भी लेके नहीं गई। मैं कह यार ये नकल कर रहे हैं, सर इनको कुछ बोल नहीं रहे। अगले दिन मैं भी पूरी लंबी चिट्ठी लिख के ले गई।
8: सर ने तुम्हें ही पकड़ लिया होगा।
7: और मैं अरे नकल करने के लिए कहते हैं अकल की जरूरत होती है,
8: वो तो है नहीं,
7: वो थी नहीं। और घर घोर गंगोर बेइज्जती। तो वो क्या हुआ, मैंने कहा यार जब सब कर रहे हैं कुछ बोलते नहीं, मेरे को भी नहीं कुछ बोलेंगे। मैंने सीधा बेंच पे सामने रखे पर्चा, मैं एग्जाम कर रहे हूँ। मेरे सर आते पीछे से, मेरी चोटी बना के जाती, चोटी वगैरह कह रहे बेटा नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है, वो आप में नहीं है, तो चलो यहाँ से अब घस को पर्चा दो पहले तो मुझे।
8: बिल्कुल सही भी। ये एक मीना जी का मैसेज आया है MDA से, कहती है शायरी लिखी है इन्होंने, बचपन की गलियों में आज भी दिल घूम आता है, पुरानी तस्वीरों को देखकर चेहरा मुस्कुराता है, जिंदगी की भागदौड़ में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, दिल तो आज भी उसी बचपन में लौट जाना चाहता है।
7: क्या बात है जी।
8: मीना जी ने बहुत ही मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना दिल की गहराई से लिखी हुई बात बोल दी।
7: बिल्कुल बिल्कुल सही।
8: और अच्छा, आप अगर मैं बोलूं रीना जी, अगर आपको एक टाइम मशीन मिल जाए तो आप किस याद में वापस जाना चाहेंगे?
7: बचपन।
8: कौन सी?
7: जिसमें कोई टेंशन नहीं।
8: बचपन की कैसी कोई याद है आपके पास?
7: अरे याद ही याद है,
8: बताइए कोई एक ऐसी याद।
7: मैं पहले नानी के घर के बता देती हूँ, वैसे मेरे बचपन की यादें बहुत है कि जब मैं नानी के घर जाती थी ना, मतलब नानी के घर जाने के लिए मैं लड़ती थी मम्मी से, स्कूल भेजती थी मम्मी, मैं क्या पहले मैं नानी के घर जाऊंगी
8: छुट्टियों में।
7: हाँ, क्योंकि नानी के घर जाने के बाद ना एक तो सुकून बहुत ज्यादा मिलता है, ऊपर से अगर डांट दिया तो नानी के आगे किसी की चलती नहीं थी। और ऊपर से नानी को बोलो कि कुछ खाना है, वो जब भी बोलती थी चल बाहर चलते हैं आइसक्रीम खा कर आते हैं, कुछ खा कर आते हैं। लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी बीमार हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, तो मेरी नानी बोलती तू कौन सी कम थी बचपन में। तो मुझे मेरी नानी के घर वाला जो बचपन है ना, मतलब मैं हमेशा याद रहेगा वो तो मेरे को।
8: एक मतलब एक मेरे को तो एक जोक याद आ गया।
7: क्या?
8: एक वो कहता है बेटा अपने पापा से कि जब आपकी मम्मी के आगे नहीं चलती तो मम्मी के आगे कैसे चलेगी।
7: करेक्ट है, करेक्ट, सही कहा आपने।
8: आपकी नानी के आगे किसी की नहीं चलती।
7: नहीं नहीं, एक बार नानी ने आंख दिख, वो डांटती भी नहीं थी, सीधा ऐसे आंख दिखाया बस, ये कोई नहीं बोलता था उनके आगे।
8: चलिए सब आप लोग अपनी अपनी नानियों को याद कीजिए।
7: अब तो समर वेकेशन चल रहा है, वैसे भी बच्चे अपने नानियों के घर चले गए, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, बहुत से हैं जो पहाड़ों की वादियों में घूमने चले गए हैं। अब तो पहाड़ की वादियां भी यही कह रही है अरे भैया थम जाओ, थोड़ा सांस लेने की फुर्सत है मुझे भी। क्योंकि गर्मी के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रैफिक अगर देखा जाए तो इस टाइम पहाड़ों में।
8: आप लोग भी अपने कोई किस्सा सुनाइए नानी के घर से रिलेटेड और हमें मैसेज करिए 9837896896 पर।
7: जी श्रोताओ, और ये गाना बहुत ही प्यारा खूबसूरत गाना, इसको एंजॉय करते हैं।

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एंड अखिल जी मेरे साथ है। समय की बात करूँ तो 9:36 हो चुके हैं। अच्छा अखिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप शेरो शायरी तो बहुत अच्छे कर लेते हैं ना, साथ में आप कुछ खा कर आए हैं या फिर पेट में चूहे कूद रहे हैं?
1: पेट में बता, मतलब खा तो कुछ भी लो मगर पेट में जो चूहे हैं ना, इनका कभी भी कुछ भरोसा नहीं रहता कि कब कूदा फांदी मचा दे। अगर कोई भी अगर
0: मुझे लगता है ये पेट नहीं है, कुआ है, कितना भरो पर भरता नहीं।
1: जब भी कोई ऐसी आसपास खुशबू जो है ना आपके पास से गुजर जाती
0: बस।
1: है, बस अरे सोच भूल जाते हैं कि अब ये तो 2 रोटी खाई थी,
0: वही खत्म। बस यार आने दे, बस आन दे।
1: इसका कुछ तो चक, मतलब कुछ तो टेस्ट आने दे।
0: अब क्या आप कुछ क्या लेकर आए हो?
1: मैं तो अभी आज जैसे मैंने आपको बताया, हम दोस्ती, शायरी,
0: बचपन की बातें,
1: उनके ऊपर आज हम बातें कर रहे हैं। तो दोस्त ना जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो परिवार तो नहीं होता लेकिन परिवार से कम भी नहीं होता है, और दोस्त वो जो आपकी खुशी में खुश

0: हो जाए और दुख में बिना बुलाए आपके साथ खड़ा हो जाए। असली पहचान दोस्त की वही होती है।
1: क्या बात है। एक मैसेज भी आता है।
0: हाँ हाँ।
1: हेलो रीना मैम, आप कैसे हो? आई होप ठीक होगी आप। हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसी है। मैं बचपन में ना अपनी फ्रेंड के साथ बहुत खेलती थी, और जो छोटे बर्तन होते थे ना वो सजा कर हम खेलते थे, बहुत मज़ा आता है। ठीक है। और उनके बाद कहती है कि गुड्डे गुड़िया पर कहानियाँ बनाते थे। ये तो बिल्कुल सही बात है, गुड्डे गुड़िया वाली जो बात कही है ना, मैं और मेरी बहन बहुत लड़ाई करते थे। हम कहते थे तेरी तू बारात लेकर आएगी, वो बोलती थी मैं तेरे घर आऊंगी, मैं बोलती मैं तेरे घर आऊंगी।
0: तो बारात किसी के घर नहीं आई।
1: बारात नहीं जाती थी, लड़ाई हो जाती थी बीच में।
0: मैं अपने दोस्तों
1: और ये कनेक्ट होती है हमारे साथ। आई एम सबीना खान, रहमत नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होती है। क्या बात है जी, अपने अपने बचपन की कहानियां हमारे साथ साझा करी है
0: आपने। और रीना मैम से आपने पूछा है कि आप कैसी हो, और ये भी कह दिया आप ठीक ही होंगी।
1: आई होप कि आप ठीक होंगी।
0: रीना जी, ये तो बहुत अच्छी है। इस समय नींद में घूम रही हूँ, नींद में ऐसे झोंके मार रही है ना कि बस।
1: अच्छा गाइस, आप बताओ मेरी आवाज से आपको क्या लग रहा है, कि मुझे नींद आ रही है या फिर मैं बिल्कुल तरो ताजगी के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। आप प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए। नंबर है 9837896896। इसके लिए तो आपको मैसेज करना ही पड़ेगा, इतनी सी इज्जत रखनी पड़ेगी आपको।
0: मैं जाने मतलब एक इस गाने से पहले दोस्ती के लिए एक शायरी में कुछ बोलना चाहूंगा।
1: जाने से पहले कहाँ जाना है आपको? अरे कहीं नहीं जाने दे रहे हूँ। हाँ सुना सुना।
0: दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का। ये कोई पल भर की जान पहचान नहीं।
1: क्या बात है।
0: दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का।
1: अरे अरे,
0: तो जो दो दोस्त गाड़ी में बैठ के एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं।
1: ये तो है।
0: बहुत ही बहुत जो है, तू कभी मेरे साथ इधर, मेरे को तेरा साथ चाहिए, तू तब भी वहां नहीं खड़ा था, अरे तू यहाँ पे था, तू वहां पे था, जिनकी आपस में बात बहस चल रही है ना, तो ये वही दोस्ती है जो एक दूसरे के लिए आग बंद करके एकदम जहाँ भी जरूरत होती है एकदम तैयार खड़े मिलते हैं।
1: नहीं मतलब दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। आपके लाइफ में है ऐसी कोई है ऐसा कोई दोस्त तो बताओ ना जरा।
0: हैं, दोस्त हैं मेरे पास भी, तो वो अच्छा है कि जब अगर मैं फोन पे हेलो बोलता हूँ तो वहाँ से रिप्लाई आता है हाँ हाँ तो तू बहुत खुश है तूने हेलो बोल दिया।
1: मतलब मेरी फ्रेंड है बट उसकी शादी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो पहले बातें थी ना, मतलब ऐसा था कि वो जब भी मेरा इंस्टाग्राम बोलती थी कि मुझे चलाना है, तो मैं कभी ये नहीं पूछती थी हाँ क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होता था हम दोनों के बीच में। वो फेसबुक चलाती थी बट मैं फेसबुक नहीं चलाती थी, जब मुझे चलाना होता था मैं पूछ लेती थी पासवर्ड बता दे, वो फटाक से बता देती थी, मतलब बीच में कोई क्वेश्चन ना आए ना, वो है आपकी अच्छी दोस्ती।
0: बिल्कुल सही बात कही
1: है ना।
0: मैं अभी अपने सभी लिसनर से कहूंगा कि आज आप भी अपने एक प्यारे दोस्त को एक मैसेज जरूर भेजिए और उस पर लिखिए यार तू है ना तो जिंदगी आसान है।
1: और मेरी फ्रेंड का नाम बता, बहुत प्यारा नाम है, पूजा।
0: पूजा तो मेरा बहुत कॉमन नाम है।
1: अरे यार वो सच में पूजा के लायक थी वो,
0: मगर नाम सच में बहुत अच्छा है। हाँ। कोई ना कोई किसी ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई पूजा है ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए फिलहाल हम एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोता आप सभी के बीच। और आप भी अपना दिल की बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, शायरी भेजना चाहते हैं, तो डेफिनेटली भेजिए। बहुत प्यारा म्यूजिकल आप अखिल जी बता दीजिए।
0: 9837896896।
1: चलिए इसी के साथ ये गाना खूबसूरत।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ और अखिल जी मेरे साथ है। समय की बात करूँ तो 9:48 हो चुके हैं श्रोताओं, और जैसे जैसे समय बीतता है यानी कि शाम ढलती है ना, वैसे वैसे दिल की जो धड़कने हैं और तेज़ हो जाती है, क्योंकि जो शाम है बड़ा सुकून भरा होता है। और इस शाम में बस हम याद करते हैं तो क्या, बस छत, ठंडी हवाएं और कुछ प्यार की बातें और कुछ अपने जो आपके हमेशा के लिए करीब रहे, है ना।
1: सही बात कही, प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। और जरूरत जरूरी भी नहीं है कि प्यार मुकम्मल हो,
0: बिल्कुल
1: कुछ प्यार अधूरे होकर भी जिंदगी भर साथ रहते हैं।
0: अरे क्या बात है, सही में
1: बिल्कुल भी ऐसा। देखिए हमारी इन्होंने क्या कहते हैं, इनका नाम है निशा चौधरी।
0: चौधरी, ओके।
1: निशा चौधरी जी ने एक शायरी भेजी है, कह रही हैं, तुम्हें चाहा तो एहसास हुआ,
0: क्या बात है,
1: इश्क क्या होता है, दिल की हर धड़कन ने बताया, किसी का इंतजार क्यों होता है। क्या बात कही है निशा जी ने।
0: देखिए इंतजार ना, मतलब जो दिल से प्यार करते हैं ना, इंतजार भी वही कर सकते हैं आपका, क्योंकि आजकल का जो प्यार है वो डिजिटल है, यानी कि सेकंडों के अंदर लड़ाई हो जाती है।
1: मिली सेकंड।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्यार तो भैया लॉन्ग डिस्टेंस वाला वो होता है, जो ट्रस्ट हो, आप किसी के लिए इंतजार कर सको, वो प्यार लॉन्ग टर्म तक चलता है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही
0: है ना।
1: आज जो है सारी जितने भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं,
0: हाँ।
1: सारे जितने भी हैं, सारे जो हैं महिला शायर आ रही है निकल निकल के।
0: हाँ।
1: अंजुमन जी का मैसेज आया है अभी।
0: तो अरे सुनो, जब महिला के मैसेज आ रहे हैं तो हम इनके लिए एक वाउचर रख देते हैं, यानी कि अगर आप प्यारा मैसेज करेंगे तो आपको मिलेगा गिफ्ट हम पर।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: क्या बात है रीना जी, हमने तो एकदम जो है धमाका कर दिया।
0: अरे यार बताऊं, लेडीज घर से बहुत कम निकलती है।
1: अच्छा।
0: और वो निकले तो मैं ये चाहती हूँ कि वो ऐसी जगह जाए जहाँ पर अपनी पसंद की चीजें खा कर आए।
1: चलिए अंजुमन जी का है ना,
0: अंजुमन जी
1: का ये शायरी पढ़ता हूँ अभी। उससे पहले आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोग भी अपनी शायरी हमें मैसेज करिए, और जो भी शायरी हमें मैसेज करी आएंगे उसके बदले रीना जी जो हैं आपको एक फूड वाउचर
0: देने वाली
1: हैं, और वो आप यहीं से कलेक्ट कर लेंगे।
0: हाँ, हमारा रेडियो आना पड़ेगा, रेडियो स्टेशन आना पड़ेगा आपको
1: वाउचर
0: लेने के लिए।
1: एक बार जरा, पहली मोहब्बत की खुशबू आज भी बाकी है, दिल के किसी कोने में वो कहानी आज भी बाकी है, वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया लेकिन वो एहसास आज भी बाकी है।
0: क्या बात है, जो बहुत ही खूबसूरत।
1: अंजुमन जी आपने और... बताया नहीं आप कहाँ से हैं, मुरादाबाद से, बस आपने नाम लिख दिया, मगर जो भी आपने लिखी है शायरी बहुत ही बढ़िया लिखी है, अच्छी लिखी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये खुशबू वाली जब बात कही ना, मेरे दिमाग में पता क्या आया, कल बारिश आई थी बहुत तेज, करीब 3 बजे के समथिंग, 3 से 5 है ना, 2 घंटे, तो सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू जो आ रही थी ना, मैं सो रही थी, पूरी गहरी नींद में थी, लेकिन जो जैसे जैसे सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू आई, मेरी आंखें ऑटोमेटिक खुल गई।
1: क्या बात है, ऑटोमेटिक खुल गई आपकी।
0: हाँ।
1: मतलब आप ऑटोमेटिक ड्राइव मोड पे हो।
0: हाँ।
1: यहाँ हम सब लोग मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं, कोई भाई से पहला गियर बदल रहा है, कोई दूसरा गियर बदल रहा है।
0: लेकिन एक मेरे साथ बहुत बुरा हुआ।
1: क्या
0: यार, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। आज सुबह उनको फिर से धोना पड़ा, जो संडे को मैं इतना मेहनत करती हूँ ना, पूरे वीक का जो कपड़े धोती हूँ मैं संडे में, मतलब सच बताऊं मेरे जिंदगी में हर काम मैं आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन कोई ये ना बोले कपड़े धो दे। और वो डबल मेहनत पड़ गई आज सुबह मेरे लिए।
1: चलो भाई साहब, कहीं ना कहीं कोई आपको उसका ऑटोमेटिक होने का फायदा हुआ।
0: चलिए श्रोताओं, मिलते हैं और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत भी, लेकिन एक बहुत खूबसूरत गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। अगर आप गाड़ी में हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और इंजॉय करिए। तो यही बोलते हैं, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी।
1: अपनी 9837896896
0: और एक फूड वाउचर।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है कृष्ण मूवी से। और समय की बात करूँ तो 9:57 हो चुके हैं। और चलिए श्रोताओं, अगले यानी कि टॉपिक पे बात करते हैं और लेते हैं यहाँ से जाने की इजाज़त, यानी कि यादों की डायरी। और बात करूँ तो दिल की बातें दिल तक होती हैं और साथ ही इसमें डायरी भी आ जाती है, जो कि हम खूबसूरत से इसको सजा कर रखते हैं ताकि हमेशा के लिए हमारे पास रहे, यानी कि यादों का एक तिजोरी है ये, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। जैसे आज हमने बोला था कि आज हम कुछ पुराने किस्से, कुछ मीठी यादें और कुछ दोस्तों की बातें करेंगे, तो ये सब होता क्या है? ये होती तो सब आपकी डायरी ही है ना।
0: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल,
1: होती है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: लोगों को डायरी लिखने की आदत भी होती है, वो लिखते हैं कि अपने दिन का पूरा दिन आज कैसा गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अपनी कुछ बातें जब जब उन्हें याद आती है वो भी अपनी डायरी में लिखते हैं। बहुत ही अच्छी आदत है ये, अगर है तो थोड़ा सा आप लिखते हैं ना तो थोड़ा अपना मन को भी आप हल्का कर लेते हैं उससे।
0: बिल्कुल।
1: कभी कभी जब हम पुरानी तस्वीरें देखते हैं और अचानक चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, वो एक अलग ही, वो भी एक कहते हैं ना, एक अलग थोड़ा सा मीठापन होता है अपने पास कि यार कुछ ऐसी वो तस्वीर देख के याद आया था यार ये उस समय क्या हरकत की थी हमने।
0: फिर हंसी आती है ना उन चीज। अगर बात करूं बचपन की फोटो देख लो ना और अब की,
1: मैं अभी अपना ही बताऊंगा, मेरे ही मैं अपने बचपन के स्कूल का फोटो देख रहा था, तो अब कहते हैं ना कुछ जो दोस्त हैं उसमें सिर्फ रहे नहीं।

0: मतलब चले गए, मगर वो लोग जिंदगी से तो चले गए मेरी, वो यादों से नहीं है। मतलब ऐसी उनके साथ यादें हैं जुड़ी हुई कि जैसी वो फोटो देखा मैंने तो एकदम वो पल, वो कुछ ना कुछ ऐसा उसके साथ याद आ गया। साइकिल पे शेयर करना, हम साइकिल पे पीछे स्टैंड लगवा लेते थे कि कोई अच्छा। एक बंदा या तो बैग रख लेंगे जब बैठे, और अगर बैग नहीं हुआ, अगर अपने अपने पिट्ठू बैग अपने कंधों पे लगा लिया तो कोई दोस्त हमारा पीछे स्टैंड पे बैठ जाएगा।
1: हाँ, ये होता था।
0: तो ये सब चीजें है ना, वही ऐसी चीजें, ये सब याद आ जाती
1: है। अच्छा अखिल जी, एक बात बोलूं, अपने भी डायरी, यादों की डायरी की बात करिए, तो मेरे कॉलेज में ना, मतलब स्कूल के टाइम एक लड़की थी, मतलब उनके घर में जो भी कुछ होता वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करती थी, वो अभी तक वो डायरी लिखती है। गलती से वो डायरी एक बार मेरे हाथ आ गई थी। मतलब उसके घर में कौन कब पैदा हुआ, मतलब वो पूरा डिटेल लिखती थी।
0: अच्छा जी।
1: यहाँ तक उनके घर में गाय भैंस थे, उनके बच्चे कब पैदा हो रहे वो भी नाम लिखती थी, और उनका नाम मेंशन करती थी कि ये इसके बच्चे का ये नाम है, ये नाम है। तो मतलब देख के ना बड़ा मतलब लगा इंसान को कि कुछ होए ना होए, लेकिन आपके जिंदगी में यादों की डायरी जरूर होनी
0: भाई
1: चाहिए।
0: भाई साहब, उनकी वजह से एक बुक डिपो वाले की दुकान चल रही थी। इतना सब कुछ जो लिख रही थी, जल्दी जल्दी डायरी भर जाती होगी।
1: मतलब और साथ ही साथ पिक्चर तो बनाती थी ना, मतलब पूछो मत। आज भी मुझे उसका एक, उसने गाय की जो छोटी बच्चे होते हैं ना उसकी पिक्चर बनाई थी। मतलब क्या पेंटिंग करती हो लड़की, सच बताऊं।
0: अमन जी का एक मैसेज आया हुआ है, उन्होंने अभी शायरी लिखी है। मुझे लग रहा है फूड वाउचर देना ही पड़ेगा अब जो तुमने बोल दिया उन्हें तो।
1: अरे उनके साथ साथ अच्छा लगेगा ना, फूड वाउचर देखिए किसको नहीं चाहिए।
0: तो उन्होंने लिखा है, यादें कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ और गहरी हो जाती हैं।
1: क्या बात है।
0: कुछ लोग दूर जरूर हो जाते हैं मगर दिल से कभी दूरी नहीं जाती है।
1: अरे वाह वाह, क्या बात है।
0: मतलब अमन जी आप कितने दूर हैं आप हमें बताएं। आपने भी अपना एड्रेस नहीं लिखा है कि मैं कहाँ पे हूँ, मगर आप कल कभी भी 5 बजे से 7 बजे के बीच में अपना एफएम स्टेशन पे आके अपना फूड वाउचर आप कलेक्ट कर सकते हैं।
1: हाँ, ये मिले ना मिले, रीना जरूर मिलेगी आपको। बिल्कुल। ऑलरेडी मेरा 5 से 7 शो होता है। हाँ। तो मैं तो कहीं भी नहीं जाती हूँ, मतलब यही रहती हूँ। ये एक टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं काम से, लेकिन मैं यही रहती हूँ, श्रोता हूँ, तो आप मुझसे आगे मिल सकते हैं। मजा आएगा वाउचर देने में, फूड वाउचर वो भी।
0: चलते चलते आप कुछ कहेंगी रीना जी?
1: चलते चलते बस आपने जो लास्ट में यादों की डायरी कही है ना, वो मेरे मतलब मुझे लगता है कि हर किसी को लिखना चाहिए, और मैं भी स्टार्ट कर दूंगी जो कि मैंने बंद कर दी थी।
0: चलिए हम भी देखेंगे आपकी डायरी कहाँ।
1: नहीं,
0: देखेंगे।
1: गलती से मैंने अपने फ्रेंड की चेक कर ली थी, उसने जो मुझे खड़ी खोटी सुनाई थी ना।
0: मैं खड़ी खोटी नहीं सुनूंगा, चुपचाप देख के चुपचाप ही रख दूंगा भैया, मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैंने अपनी डायरी देख ली।
1: मेरी डायरी कभी आपको हाथ लगेगी जभी तो बोलेंगे आप।
0: तो चलते चलते एक शायरी में अपने सभी श्रोताओं के लिए, अपने जितने भी लिसनर्स हैं जो इस समय बैठे हुए हैं, जो घर पहुँचने वाले हैं या घर में इस समय मौजूद हैं अपने अपने, उनके लिए कहना चाहूंगा, रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: अगर कोई मोती गिर भी जाए,
1: हाँ हाँ।
0: अगर कोई मोती गिर भी जाए तो उसे झुककर उठा लेना चाहिए।
1: क्या बात है।
0: क्योंकि दोबारा पिरोना
1: हाँ हाँ।
0: आसान नहीं होता।
1: अरे अरे क्या बात है।
0: तो अभी भी आप भी, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त जो आज सुबह आपने गुस्से में उसे कुछ कह दिया हो, या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसे आपने थोड़े दिनों पहले कुछ सुना दिया हो, तो एक बार तो उसको मैसेज या फोन करना तो बनता है। कोई
1: क्या
0: नहीं
1: बात?
0: हो गया जो कह दिया, जो सुना दिया, तो ये तो सब आगे पीछे होता रहता है।
1: हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ये तो होता रहता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस हमें नाराजगी।
0: ना आप हमें मैसेज करके उनका नाम बताइए, हम
1: हाँ, आपका मैसेज उनके तक हम ड्रॉप करेंगे, पहुंचाएंगे,
0: हम पहुंचाते हैं आपका मैसेज।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिंदगी में ना मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए, बातें करो 4 दिन की जिंदगी, और 4 दिन की जिंदगी में बस 4 दिन नाराज नहीं रहने चाहिए कोई भी।
0: आपकी छत कहीं ना कहीं मिली हुई है दूसरे की छत से। आप लोग हमें मैसेज कीजिए 9837896896, और हमारी एप्लीकेशन भी है मुरादाबाद FM 89.6।
1: अच्छा, आपने बोल तो दिया है मैसेज करो, ऊपर से बोल रहे कि मैं जा रहा हूँ, देखा श्रोता हो
0: नहीं अभी है वहाँ, आप मैसेज करिए आज नहीं तो कल दोबारा बताएंगे ना ये बात है, हम तो कहीं नहीं जा रहे।
1: हाँ बिल्कुल, देखो जा कहीं नहीं रहे, कल सेम टाइम एंड सेम जगह मिलने वाले हैं।
0: सेम टाइम एंड सेम जगह
1: सेम टाइम मतलब इन द सेंस कि हम 9 बजे आ जाते हैं और सेम टाइम अभी ये जो कि हम जाने वाले तो हम इस टाइम आपको मिलेंगे, अपनी दिल की बातें जो भी कुछ है आपके दिल के अंदर शेर और शायरिया तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अभी के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है श्रोताओं। और अभी के लिए बाय,
0: अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ मुरादाबाद।
1: क्या बात है जी, बाय।
2: सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
4: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।
5: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
4: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत,
5: कनेक्टिविटी से समृद्ध। यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।
3: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
6: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
7: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
6: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है। तो यही कहने वाली थी।
7: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
6: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे। रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
7: बिल्कुल सही।
6: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपके शब्द हैं।
1: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
0: जी।
1: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
0: जिसका नाम है सोच बदलो।
1: जिसका नाम है

0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद,
1: नहीं जा रही होती है।
0: करेक्ट।
1: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं, तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं। उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
0: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं। जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग,
1: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है। वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
0: एडवाइस
1: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारी हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें खुद की खुद ही भूल जाते हैं। और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की ज़रूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है। जब हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। मुद्दे की बात यह है क्योंकि उनको कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
2: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
0: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
3: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोग की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज़ हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालों के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: को मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ, कुछ...

ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाज़ों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज़ में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पर लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: आज से नहीं, मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ, जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम? जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा हाँ, आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं,
2: चार लोग केवल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव ही चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
2: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा।
3: और क्या, हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी। अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
2: अच्छा
3: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
2: अरे वाह,
3: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
2: शुक्र है, डबल इंजन सरकार है।

इसे सफल बनाए, हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा।
1: और क्या, हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी। अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
0: अच्छा
1: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
0: अरे वाह,
1: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
0: शुक्र है, डबल इंजन सरकार है।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।